मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि तदनुसार 20 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 और 34 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये नजीब बात केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुरमई सुबह के साथ आप सभी प्यारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की जादुई आवाज में डूबे इस पावन भजन के साथ।

लाख तूफान आए पर मेरा भरोसा डगमगाए ना, तेरा हाथ सर पर हो तो कोई गम पास आए ना। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में ये पावन प्रार्थना।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस वक्त भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, जब दिल में अकीदत हो और लफ्जों में दुआ, तो रूह अपने आप मुकद्दस हो जाती है। आइए कव्वाली की दुनिया के बेताज बादशाह शंकर शंभू की पुर असर आवाज में सुनते हैं ये रूहानी नातिया कलाम। नात इस तरफ भी करम।

श्रोताओं, मुस्कुराते हुए चेहरे और सकारात्मक सोच के साथ आज के प्रोग्राम वंदना के हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। विदा लेने से पहले आइए

विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की वंदना करें ताकि हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएं। अनुराधा पौडवाल और उनके साथियों के सुरों में सजाई गई ये अंतिम प्रस्तुति हाजिर है। अपना ख्याल रखिएगा और सुनिएगा ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन।
1: अहिंसा सत्य का प्राण है, स्वर्ग का द्वार है, जगत की माता है, आनंद का अजरस स्रोत है, उत्तम गति है, शाश्वत श्री है और है मानव मात्र के लिए परम धर्म। शतपथ ब्राह्मण के वचन तथा अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह मानस का उद्घोष परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा योग दर्शन की उक्ति सर्वत्र सर्वदा सर्वभूतानाम नाभिद्रोह अहिंसा पुराणों का सार पापाय पर शीर्णनम वैदिक युग की अहिंसा परमो धर्म अहिंसा के महत्व को व्यक्त करते हैं। प्राचीन ग्रंथों और महर्षियों के उद्घोष सर्व कल्याणेषु भूतेषु आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु कल्याणेषु वसुधैव कुटुंबकम तमसो मां ज्योतिर्गमः सभी अहिंसा के प्रेरक हैं। अहिंसा क्या है? तीर्थकर महावीर ने कहा है कि जब आत्मा रागी द्वेषी या मूढ़ हो जाती है तो हिंसा करती है। शब्द रूप गंध रस स्पर्श और भाव की तृष्णा के पीछे चलने वाला अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ के कारण विभिन्न प्रकार के नश्वर तथा स्थावर जीवों को हिंसा करता है। उन्होंने कहा है क्योंकि हिंसा पाप है और दया का संबंध धर्म से है, अतः देव या गुरु के निमित्त हिंसा करना उचित नहीं है। महावीर ने 18 धर्म स्थानों में प्रथम स्थान अहिंसा को प्रदत्त किया है। इसका उन्होंने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। उनके मतानुसार सब जीवों के प्रति संयम रखना ही अहिंसा है। शत्रु अथवा मित्र सभी प्राणियों में समभाव की दृष्टि रखना ही अहिंसा है। अहिंसा त्रस अथवा स्थावर सभी प्राणियों को कुशल क्षेम मंगल करने वाली है। आत्मा ही हिंसा है और आत्मा ही अहिंसा है। महावीर ने बताया कि हिंसा की जड़ विचारों की उत्पत्ति है। वैचारिक असमन्वय से मानसिक उत्तेजना बढ़ती है और वो फिर वाचिक और कायिक हिंसा के रूप में अभिव्यक्त होती है। शरीर जड़ है, वाणी भी जड़ है। जड़ में हिंसा अहिंसा के भाव नहीं होते हैं। इनके उद्भव भूमि मानसिक चेतना होती है, दूसरों के प्रति ही नहीं किंतु उनके विचारों के प्रति भी अन्याय मत करो। अपने को समझने के साथ साथ दूसरों को भी समझने की चेष्टा करो। इसे महावीर ने बौद्धिक अहिंसा बताया है। अहिंसा के विषय में संत ज्ञानेश्वर ने विस्तृत सुस्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है, संसार को सुखी करने के एकमात्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी गया प्रतीक शारीरिक वाचिक मानसिक कार्य ही अहिंसा कहलाता है।
0: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। कार्यक्रम काव्यधारा में लीजिए सुनिए सुनीता सैनी का काव्य पाठ।
2: लोकगीत का शीर्षक है माझी नाव में बिठा ले रे।

काव्यधारा में अभी आप सुन रहे थे सुनीता सैनी का काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः की 6

कर 55 मिनट होने को है। कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयकः 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसदः सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73,00,079,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः

0: राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं सार्धसप्तवादने कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
2: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ऑस्लो, नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित

0: 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार तीसरे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं जानकारी। विषय है पौष्टिक दही।
2: जीवन भगवान की सर्वोत्तम भेंट है और निरोग रहना सबसे बड़ा वरदान। निरोग रहने के लिए आवश्यक है पोषक भोजन, यानी हमें अपने भोजन में उन तत्वों को शामिल करना है जिससे न केवल उदर पूर्ति ही हो बल्कि दवा की तरह प्रभाव डालता हुआ वो हमें स्वस्थ रखे। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे दही की। दही में प्रोटीन बहुतायत से पाया जाता है। दही जमने की प्रक्रिया में भी विटामिनों विशेषकर थायमिन, रिबोफ्लेविन और निकोटिनामाइड की मात्रा दोगुनी हो जाती है। दूध की अपेक्षा दही सरलता से पचता है। अपच होने पर दही में सेंका हुआ पिसा जीरा, नमक और काली मिर्च डालकर नित्य खाने से अपच ठीक हो जाता है और भोजन शीघ्र पचता है। बुल्गारिया के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन फिकप के अनुसार दही माँ के दूध के पश्चात बालक का सर्वश्रेष्ठ आहार है। बुल्गारिया के ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रोफेसर ताशो ताशिव के अनुसार एंटीबायोटिक्स देने के पश्चात आंतों के बैक्टीरियल फ्लोरा पर पड़े कुप्रभाव को दही से बचाया जा सकता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मोटापा तथा गुर्दे की बीमारियों में भी दही अत्यधिक लाभप्रद बताया गया है। दही हृदय रोग की रोकथाम के लिए एक उत्तम वस्तु है। रक्त में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल नामक घातक पदार्थ को मिटाने की क्षमता रखता है दही। आवश्यकता से अधिक भावनात्मक दबाव से बाल अधिक गिरते हैं। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से बाल अधिक गिरते हैं। भोजन में लौह तत्व, विटामिन बी तथा आयोडीन की कमी से बाल असमय में ही अधिक गिरते हैं। बालों को गिरने से रोकने के लिए दही से सिर धोएं। दही में वो सभी तत्व हैं जिनकी स्वस्थ बालों को आवश्यकता रहती है। दही को बालों की जड़ों में लगाइए और 20 मिनट बाद सिर धोइए। ऐसा करने से बहुत लाभ होगा। आधा कप दही में एक नींबू निचोड़कर मिला लें। इसे बालों पर मलें और 20 मिनट रहने दें, फिर सिर धोएं। ऐसा करने से बाल मुलायम और काले हो जाएंगे। फोड़े में सूजन, जलन या दर्द हो तो पानी निकाला हुआ दही बांधें। इसके लिए एक कपड़े में दही डालकर पोटली बांधकर लटका दें। इससे दही का पानी टपक जाएगा। फिर इसे फोड़े पर लगाकर पट्टी बांध लें। दिन में 3 बार पट्टी बदलें। ऐसा करने से फोड़े में सूजन, दर्द और जलन में बहुत लाभ होगा। यदि नींद ठीक से ना आती हो ऐसे में दही में पिसी हुई काली मिर्च, सौंफ तथा चीनी मिलाकर खाने से आपको अच्छी नींद आएगी। शरीर से दुर्गंध आने पर दही और बेसन मिलाकर शरीर पर मलें। दमा, श्वास, खांसी, कफ, शोथ, रक्त पित्त, ज्वर में दही ना खाएं। दही में शक्कर, शहद डालकर मीठा करके खाने से इसके गुणों में वृद्धि होती है। जो सिरदर्द सूर्य के साथ बढ़ता और घटता है, इस तरह के सिरदर्द को आधा सीसी कहते हैं। ऐसे में एक उपाय करके देखें। प्रातः सूर्योदय के समय सिरदर्द आरंभ होने से पहले नित्य दही में चावल मिलाकर खाएं, अवश्य लाभ होगा। दही कई प्रकार के कैंसर की संभावना को समाप्त कर देता है। दही का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। यूं दही दूध को जमाने से बनता है, परंतु दूध दही के रूप में बदलने पर अपने गुणों में वृद्धि कर लेता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दही खाने के 1 घंटा बाद ही उसके 81% अंश को शरीर आत्मसात कर देता है, जबकि दूध सेवन के 1 घंटे बाद केवल 32% अंश ही आत्मसात

0: कर पाता है। दही से शरीर की फालतू चर्बी कम होती है। मोटापा कम करने के लिए दही का सेवन बहुत उपयोगी है।
1: पौष्टिक दही, इस विषय पर अभी आप सुन रही थी जानकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय है पशुओं के लिए साइलेज बनाना।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं साइलेज बनाने के बारे में। किसान भाइयों, साइलेज हरे चारे को संरक्षित करने की एक विधि है, जिसमें चारे को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और अपने दुधारू पशुओं को एक अच्छा सुपाच्य और पौष्टिक चारा उपलब्ध करवा सकते हैं। साइलेज दुधारू पशुओं के लिए सारभर पौष्टिक और हरा व सुपाच्य चारा उपलब्ध करवाने का एक उत्तम तरीका है, जिससे दुग्ध उत्पादन भी बढ़ता है। और साइलेज के माध्यम से हम जिस समय पर हरा चारा हमारे पास में उपलब्ध नहीं होता है, उस समय भी हम हरा चारा उपलब्ध करवा सकते हैं। हरे चारे वाले जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं, वो हम अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं किसान भाइयों कि हम किस तरीके से साइलेज हम तैयार कर सकते हैं अपने पशुओं के लिए। जो हमारे पास में हरा चारा उपलब्ध होता है, उसे हम संरक्षित कर सकते हैं। साइलेज बनाने के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा और जई जैसी फसलें सबसे अच्छी होती हैं। इसमें मक्का सबसे उत्तम मानी गई है, यानी कि मक्का का साइलेज सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे उत्तम इसको माना जाता है। साइलेज तैयार करने के लिए हम जिस फसल में साइलेज तैयार कर रहे हैं, फसल में 60-70% दाना आ जाए या भुट्टे दूधिया अवस्था में हों, तब कटाई करनी चाहिए। इस अवस्था में फसल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अच्छी होती है। कटी हुई फसल को चारा काटने वाली मशीन यानी कुट्टी मशीन से आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, यानी कि उसकी पहले कुट्टी काट लें। दानों का क्रश होना बहुत ही जरूरी है ताकि पशुओं के पेट में वो आसानी से पच सकें। साइलेज को सुरक्षित रखने के लिए हम एक जमीन में गड्ढा, साइलोपिट या सतह पर हम बंकर तैयार करते हैं। इस बंकर को जमीन से थोड़ा ऊंचे स्थान पर बनाए ताकि बारिश का पानी अंदर ना जा सके। गड्ढे की क्षमता पशुओं की संख्या के हिसाब से तय होती है, यानी कि एक घन मीटर में लगभग 400 किलोग्राम साइलेज आता है। आइए बात करते हैं कि हमें किस तरीके से साइलेज को तैयार करना है। गड्ढे में सबसे पहले हम नीचे मोटी पॉलिथीन बिछाते हैं। अब जो हमने हरे चारे की कुट्टी काटी है, उस चारे को 1 से 1.5 फीट की परत में डाल दें। हर परत को किसी भारी चीज से अच्छी तरह से दबाएं ताकि चारे के अंदर की हवा पूरी तरह से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर हवा अंदर रहेगी तो चारे के सड़ने का अंदेशा रहता है, चारे के खराब होने का अंदेशा रहता है। यदि चारा सूखा है तो किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन को तेज करने के लिए उसमें 1-2% नमक और गुड़ का पानी हम छिड़क सकते हैं। चारे को गड्ढे में दबाने के बाद उसे पूरी तरह से हवा बंद यानी कि एयर टाइट हमें करना है, ताकि किसी भी तरीके से हवा गड्ढे के अंदर नहीं जानी चाहिए। इसे ऊपर से मोटी पॉलिथीन से ढक दें। पॉलिथीन के ऊपर मिट्टी की मोटी परत 30-40 सेंटीमीटर या रेत की बोरियां, हवा बिल्कुल अंदर ना जा सके। तो इस तरीके से हमें इस गड्ढे को पूरी तरीके से सील करना है और ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी हवा गड्ढे के अंदर नहीं जानी चाहिए, जिससे कि जो हमारी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, जो किण्वन की प्रक्रिया है, वो अच्छी तरह से पूरी हो सके और हरे चारे के माध्यम से जो हम साइलेज बना रहे हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो सके। गर्मी के मौसम में 45-50 दिनों में और सर्दियों के मौसम में 60-70 दिनों में साइलेज बनकर तैयार हो जाता है। एक बार गड्ढा खोलने के बाद आवश्यकता अनुसार साइलेज निकालें और बचे हुए हिस्से को तुरंत फिर से ढक दें ताकि हवा अंदर न जाने पाए। इसे खिलाने की शुरुआत कम मात्रा में रोजाना 4-5 किलो से करें ताकि पशु इसके स्वाद के आदि हो जाएं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमें ये साइलेज तैयार करना है और अपने पशुओं को खिलाना है। तो किसान भाइयों, अगर हम साइलेज तैयार करते हैं तो इस तरीके से हम जो हमारे पास में हरा चारा रहता है उसको हम संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय हमारे पास में ऐसा आता है कि उस समय हमारे पास में हरे चारे की उपलब्धता बहुत ज़्यादा रहती है और उसका प्रयोग ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो जो अतिरिक्त हरा चारा हमारे पास में उपलब्ध होता है, तो अतिरिक्त हरे चारे को हम संरक्षित कर सकते हैं और साइलेज के रूप में हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी पहले आपको बताया है कि साइलेज जो है सबसे ज़्यादा मक्का, ज्वार, बाजरा और जई जैसी हरे

दिव्य प्राण। श्रोताओं, दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम। चर्चा का विषय है रात्रि 9:30 पर, और लखनऊ केंद्र से रिले की जाएगी कानून की बात शाम 7:32 पर।

श्रोताओं, आप सुनेंगे आकाशवाणी से रिटायर्ड वरिष्ठ उद्घोषक श्री सुलेंद्र कुमार नौटियाल की रेडियो प्रसारण से जुड़ी यादें। आज रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा में।

विविधा में शाम 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे नेहा बंसल की वार्ता, जिसका विषय रहेगा राष्ट्र के विकास में विभिन्न संस्कृतियों की भूमिका।

शास्त्रीय संगीत में दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन।

बहनें सुनेंगी कार्यक्रम घर संसार दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत आपको सुनवाई जाएगी लघु नाटिका, शीर्षक है बदलती तस्वीर। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा भी दिन में 1:45 पर आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों के गाए ब्रिज लोकगीत। और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com का समय रहेगा श्रोताओं दिन में 2:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से। आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:18 होने को हैं। कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन कल्याण, सुशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष तौर से चर्चा की गई। बैठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इसे सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला मंच बताया। श्री योगी ने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपए प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 98.73 रुपए से लेकर 92.21 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। एक रिपोर्ट।
1: यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इस समय राज्य में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी सहित कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार देश में किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन

0: 15 हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। श्री गांधी ने रायबरेली में PSC के 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद आज भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।
0: भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और संबंधित सभी राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में हुए मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। कल शाम को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 19 ओवर और 1 गेंद पर 3 विकेट खोकर 225 रन हासिल कर अपनी जीत दर्ज कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। जी हाँ, जिसने इस नश्वर संसार के सारे आकर्षणों को छोड़कर प्रकृति की गोद को अपनी कविता का संसार बना लिया, आज सुबह की पहली किरण के साथ उन्हीं की यादों की महक आपके आंगन तक पहुंचाने आ गई हूँ मैं, आपकी दोस्त शिवा शुक्ला। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका चहेता शो सूरज के साथ साथ। एक ऐसी सुबह जहां विचार सूरज की तरह चमकते हैं और यादें ओस की बूंदों की तरह मन को भिगो देती हैं। श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य के उस दैदीप्यमान नक्षत्र की, जिन्हें इतिहास प्रकृति का सुकुमार कवि कहता है। जी हाँ, युग प्रवर्तक कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। क्या आप जानते हैं कि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है? जरा कल्पना कीजिए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा का वो खूबसूरत कौसानी गांव, जहां चारों तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां हों, ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ हों और झरनों का संगीत गूंज रहा हो। पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 में इसी जन्नत जैसी जगह पर हुआ था। बचपन से ही श्रोताओं, प्रकृति की इस असीम सुंदरता ने उनके मन को ऐसा छुआ कि उन्होंने प्रकृति को केवल एक नजारा नहीं माना, बल्कि उसे अपनी सहचरी, अपनी माँ और एक सजीव सत्ता के रूप में देखा। उनकी लेखनी से जब शब्द निकलते थे तो ऐसा लगता था मानो खुद मलयज समीर बह रही हो। उनकी उपमाएं, उनके शब्द इतने कोमल और सुकुमार होते थे कि पढ़ते ही मन शांत हो जाता था। लेकिन श्रोताओं, हमारे पंत जी सिर्फ वादियों और पहाड़ों के ही कवि नहीं थे। उनका साहित्य एक बहती हुई नदी की तरह था, जिसने समय के साथ अपनी धारा बदली। शुरुआत में छायावाद के रंग में रंगे पंत जी आगे चलकर समाज के यथार्थ से भी जुड़े। जब उन्होंने समाज का दर्द देखा तो उनकी लेखनी प्रगतिवाद की ओर मुड़ गई। उन्होंने युगांत और ग्रामिया जैसी रचनाओं के जरिए गरीब किसानों, शोषितों और मजदूरों की आवाज को बुलंद किया। और जानते हैं, पंत जी का चिंतन यही नहीं रुका। जीवन के उत्तरार्ध में वे महर्षि अरविंद के विचारों से प्रभावित हुए और उनकी कविताओं में अध्यात्म और मानवतावाद का एक बेहद खूबसूरत संगम देखने को मिला। यही वजह है श्रोताओं की उनकी अमर साहित्यिक सेवा के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, जो उन्हें उनकी महान कृति चितंबरा के लिए मिला था। इसके अलावा वे पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। और श्रोताओं, आज जब हम कंक्रीट के जंगलों में बंद हैं, जहां हर तरफ गाड़ियों का शोर और प्रदूषण है, ऐसे में पंत जी की रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा वजूद इस प्रकृति से ही है। अगर हमें मानसिक सुकून चाहिए तो हमें इस प्रकृति को सहेजना होगा, इसे प्यार करना होगा। पंत जी को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस प्यारे से गीत के बाद आइए श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको उन घटनाओं के बारे में जो आज की तारीख यानी आज की तिथि 20 मई को बनाती हैं खास। श्रोताओं, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने साल 1891 में 20 मई को किनेटोस्कोप का पहला प्रोटोटाइप पेश किया था। ये दुनिया का पहला मोशन पिक्चर व्यूअर था। इसे आधुनिक फिल्म प्रोजेक्टर का पूर्वज माना जाता है, जो कि एक पीप शो मशीन थी। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति ऊपर बने छेद से फिल्म देख सकता था। एडिसन ने नेशनल फेडरेशन ऑफ

0: इंस क्लब के सामने इसका पहला सफल प्रदर्शन किया। दर्शकों ने इसमें एक व्यक्ति को झुकते और मुस्कुराते हुए देखा। इस छोटे से झलक ने इंसानी इतिहास में मनोरंजन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और श्रोताओं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तथा अर्थतज्ञ मनमोहन सिंह जी को देश में अर्थव्यवस्था में किए गए व्यापक सुधार के लिए साल 1996 में आज ही के दिन यानी 20 मई को ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुने जाने संबंधित घोषणा हुई थी। साल 2000 में आज के दिन ही पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एमसी बालयोगी जी की संसद के राष्ट्रकुल संगठन के एशियाई अध्यक्ष पद पर सर्वदलों के द्वारा समर्थन द्वारा नियुक्ति की गई थी। और श्रोताओं, 20 मई को ही झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने सन 2011 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा था। आपको बता दें कि प्रेमलता जी दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में 35 साल की उम्र से पहले कभी कोई पहाड़ नहीं चढ़ा था। वो एक साधारण गृहिणी और 2 बच्चों की मां थी जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर पहाड़ों का रुख किया। उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया। और श्रोताओं, रिमोट कंट्रोल के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले संशोधक यूजीन पॉली का साल 2010 में 20 मई की तारीख में ही आज ही की तिथि में निधन हुआ था। और भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल जी ने भी सन 1932 में 20 मई को ही इस दुनिया को अलविदा किया था। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ घटनाएं जो बनाती हैं आज की तिथि को विशेष। और आइए अब सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। और हम आपको बता दें कि आज है विश्व मधुमक्खी दिवस। श्रोताओं, जब भी हम मधुमक्खी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मीठा मीठा शहद आता है या फिर मधुमक्खी का डंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये छोटी सी मधुमक्खियां इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएं तो क्या होगा? चलिए आज इसी बात से हम पर्दा उठाते हैं। श्रोताओं, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गईं, तो इंसान के पास जीने के लिए सिर्फ 4 साल बचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी जान और इतना बड़ा दावा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं बनाती, बल्कि वे हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला की रीढ़ की हड्डी हैं। हम जो भी फल, सब्जियां या अनाज खाते हैं, उनमें से हर तीसरा निवाला मधुमक्खियों की बदौलत हमारी थाली

तक पहुंचता है। वे पॉलिनेशन यानी परागण का काम करती हैं, जिससे पौधों में फल और बीज बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर ये गायब हो गई तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी। जी हाँ श्रोताओं, जितने भी ये सुपरमार्केट है ना, सब खाली हो जाएंगे। जो हमारी पसंद की चीज़ें वहाँ वहाँ खरीदने जाते हैं, नहीं मिल पाएंगी हमें। भुखमरी का संकट हो जाएगा। जो शाकाहारी जानवर हैं वो भूखे मरने लगेंगे, जिससे पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्रोताओं, आप जो सूती कपड़े पहनते हैं ना, वो कपास भी मधुमक्खियों के परागण पर ही निर्भर करता है। यानी खाने के साथ साथ पहनने के लाले भी पड़ जाएंगे। या यूं कहें कि मधुमक्खियों के बिना इंसानी सभ्यता का टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा। श्रोताओं, आज की तारीख में हम बात करें कि प्रदूषण, कीटनाशकों का ज़्यादा इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन के कारण मधुमक्खियों की आबादी तेजी से घट रही है। उन्हें बचाना किसी और की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस विश्व मधुमक्खी दिवस पर आइए एक छोटा सा संकल्प लें, अपने घरों की बालकनी या छतों पर पौधे लगाएं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करें और गर्मियों में उनके पीने के लिए एक छोटे बर्तन में पानी और थोड़े से पत्थर जरूर रखें, ताकि वे उसमें डूबे नहीं। याद रखिए श्रोताओं, अगर मधुमक्खी है तो ही हमारा कल है।

0: श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में अगले सेगमेंट की ओर और नजर डालते हैं आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। श्रोताओं, हिंदुस्तान की खबर है, यूपी के 15 जिलों में मंगलवार को आसमान से आग बरसी। बांदा में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सूबे के ज्यादातर शहरों में दो दिन भीषण तपिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में गर्म पछुआ हवाओं के सक्रिय होने से मौसम पूरी तरह शुष्क हो गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम जनरल खंडूरी नहीं रहे। श्रोताओं, पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया है। मंगलवार सुबह मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। खंडूरी लंबे समय से बीमार थे और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। जनरल खंडूरी दो बार मुख्यमंत्री और लंबे समय तक गढ़वाल से सांसद रहे। इसके अलावा वाजपेयी सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स में भी सेवाएं दी। हिंदुस्तान की एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों से मानव जीवन को होने वाले खतरे को देखते हुए दी अनुमति, खूंखार कुत्तों को दी जाएगी सजाए मौत। श्रोताओं, ये खबर हर एक अखबार की मुख्य पृष्ठ की पहली खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में पहली बार रेबीज से पीड़ित, लाइलाज बीमारी या स्पष्ट रूप से खतरनाक लावारिस और पागल कुत्तों को मारने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने लावारिस कुत्तों से मानव जीवन को होने वाले खतरों को कम करने के लिए ये आदेश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ ने अपने फैसले में कहा कि लावारिस कुत्तों को मारने की अनुमति देना सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है जो वह नगर निगमों निकायों के अधिकारियों को जारी कर रही है। और श्रोताओं, पश्चिम एशिया संकट से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। मंगलवार को पेट्रोल में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दैनिक जागरण लिखता है कि कोरोना काल की तरह पश्चिम एशिया संकट को भी अवसर में बदलने की तैयारी में सरकार जुट गई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की तरह सरकार इस बार भी 2 दर्जन से अधिक उत्पादों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम ला सकती है। और नागरिकों के चुराए गए डाटा की सुरक्षा पर कोर्ट सख्त। श्रोताओं, सुप्रीम कोर्ट ने देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा और विदेशी सर्वरों पर कथित रूप से संग्रहित भारतीयों के चोरी हुए व्यक्तिगत डाटा को वापस पाने या नष्ट करने के मामले में एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर गंभीरता से विचार करें। साइबर सुरक्षा सलाहकार नीतीश कुमार द्वारा दायर इस याचिका की मांग की गई थी। और श्रोताओं, अमर उजाला लिखता है कि घातक चीनी मांझे पर रोक के लिए बनेगा सख्त कानून, पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को बताया कि कांच के कणों से युक्त घातक चीनी मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए जल्द ही सख्त कानून लाया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि नए कानून में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान भी किया जाएगा। प्रस्तावित कानून का नाम उत्तर प्रदेश घातक मांझा रखा गया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी के फिर से आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इसके सुरक्षित, सुचारू और त्रुटि रहित आयोजन का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान ने इस पर जोर दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी खामियों को व्यापक रूप से दूर किया जाना चाहिए ताकि परीक्षा के आयोजन में पूर्ण शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। और श्रोताओं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है जिनका कार्यकाल उस दिन से पहले तक समाप्त होने वाला था ताकि न्यायाधिकरणों का निर्बाध संचालन हो सके। तो श्रोताओं, ये तो थी आज के समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियां और आइए सुनते हैं अब ये संदेश।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक।
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: और श्रोताओं, आप चलते चलते हम आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेट्रोलॉजी क्या बला है, कहीं ये मौसम विभाग तो नहीं? जी नहीं, ये मौसम नहीं बल्कि माप तौल का विज्ञान है। जी हाँ, सुई की नोक से लेकर स्पेस रॉकेट तक हर चीज को नापने का विज्ञान। जरा सोचिए, अगर दुनिया से नापने का सिस्टम ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? आप दुकान पर जाकर कहेंगे थोड़ा दूध दे दो, दुकानदार पूछेगा कितना, और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप टेलर से कहेंगे कपड़ा सिल दो, वो बिना नाप तोल के कैसे सिलेगा? आज ही के दिन श्रोताओं, यानी 20 मई सन 1875 को फ्रांस में मीट्रिक कन्वेंशन पर साइन हुए थे, जिससे पूरी दुनिया में किलोग्राम, मीटर और लीटर जैसे मानक तय हुए। अगर ये मानक न होते तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप हो जाता, साइंस की साइंस रिसर्च रुक जाती और दवाइयों का सही डोज बनाना भी नामुमकिन हो जाता। श्रोताओं, हर साल इस दिन की एक खास थीम होती है। इस बार की थीम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आधुनिक तकनीक से जुड़ी है। आज के डिजिटल दौर में सटीक माप और भी जरूरी हो गया है। तो श्रोताओं, मेट्रोलॉजी सिर्फ वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। ये सुबह उठकर दूध की थैली लेने से लेकर रात को अलार्म सेट करने तक हमारी जिंदगी के हर सेकंड में शामिल है। ये विज्ञान हमें निष्पक्षता, सुरक्षा और प्रगति देता है। अगली बार जब आप तराजू, घड़ी या थर्मामीटर देखें तो इस छोटे से लेकिन महान विज्ञान को धन्यवाद जरूर कहें।

0: जाने आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
5: India is accelerating towards universal health coverage.
6: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
5: Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
9: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
6: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
10: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
11: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई

प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की

0: सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्ते को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra

अभी आपने सुना किशोर कुमार की स्वर में फिल्म मुनीम जी का ये गीत। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार एस टी बर्मन। आइए अब सुनवाते हैं आपको ये अगला गीत फिल्म कोरा कागज से। स्वर है लता मंगेशकर का, बोल हैं एम जी हशमत के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए श्रोताओं, सुनवाते हैं आपको ये अगली पेशकश फिल्म कश्मीर की कली से। गीत को आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने, सुरों से सजाया है ओपी नैयर ने और बोल हैं SH बिहारी के।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
0: हाँ
4: आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: बाजू बाबू।

चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गायक कलाकार थे किशोर कुमार और मन्ना डे। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म इम्तिहान से, किशोर कुमार की आवाज़ में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी गीत के साथ गोल्डन हिट्स कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 होने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का।
1: महोबा जिलाधिकारी गजल भरद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा आगामी कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियंत्रण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कार्यों में किसी भी

0: सांसद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने दावा किया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और एआई तकनीक के जरिए उनके शब्दों से छेड़छाड़ कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। महोबा जनपद के प्रसिद्ध देसावरी पान को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने राठ रोड स्थित एपीओ जैविक बाजार का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विशेष रूप से देसावरी पान से जुड़े नवाचारों को सराहा और पान उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने पर जोर दिया। डीएम ने मयंकता चौरसिया द्वारा स्थापित अच्युतम ऑर्गेनिक एंड हर्बल्स पान प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठान में देसावरी पान से निर्मित मुखवास, पान लड्डू, पान शरबत, पान चॉकलेट सहित कई आकर्षक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। डीएम ने नवचारों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए बाजार में नई पहचान दी जा सकती है। उन्होंने जैविक सब्जियों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद यहां विक्रय करेंगे तथा जिनके उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण नहीं हुआ है वे शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करा लें। महोबा के इस जैविक बाजार में अब तक कुल 12 एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूहों को दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। यह बाजार नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उद्यान विभाग द्वारा स्थापित हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक नर्सरी में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले तरबूज और खरबूज के पौधे लगाकर किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। महोबा के जैतपुर में स्थापित यह हाईटेक नर्सरी किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं और किसानों को होने वाले फायदे इस प्रकार हैं। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले तरबूज और खरबूज की बागवानी में कम समय में प्रति एकड़ लाखों रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों और आधुनिक तापमान नियंत्रण प्रणाली से यहाँ हाईब्रिड और रोग मुक्त पौधे तैयार किए गए थे जिससे किसानों को अब अच्छा मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा
1: तरबूज की और खरबूजे की खेती लगभग 1400 हेक्टेयर की जाती है। एक हेक्टेयर में आराम से 3-4 लाख रुपए किसानों को 3-4 महीने मिल जाती है। कुछ किसान ने बताया 8-10 किलो के तरबूज तैयार है और किसान बड़े खुश हैं कि यहाँ का जो पौधा है अच्छा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। महोबा जिले में कुल 4,25,310 आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष अब तक 2,79,612 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने शेष पात्र लाभार्थियों से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र लोग जिला अस्पताल के महिला एवं पुरुष आयुष्मान कक्ष सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर आयुष्मान मित्र की सहायता से निशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में CHO ANM एवं आशा संगिनी द्वारा भी यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आयुष्मान कार्ड बन जाने से जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में इसी महान नुमाइश ग्राउंड के मैदान में एक रोजगार मेले का उद्घाटन किया जिसमें लगभग 200 कंपनियों ने भाग लिया और भारी संख्या में युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सांकेतिक रूप से लगभग 10 युवक युवतियों को मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल रहे। श्री चौधरी ने मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराए जा रहे देश हित और प्रदेश हित के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को नगर निगम का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने गन्ना किसान, गन्ने का भुगतान, शुगर मिल के साथ साथ किसानों की जमकर तारीफ की। चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। श्री योगी ने कहा कि वह कभी जातिवाद के पक्षधर नहीं रहे। मुजफ्फरनगर जिले में बीते एक माह से लगातार आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण कई पेड़ उखड़ कर गिर गए। वहीं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विद्युत आपूर्ति भी जनपद में आंधी तूफान से लगातार बाधित रही। उत्तर भारत की पौराणिक तीर्थस्थली मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ स्थित हनुमत धाम के पीठाधीश्वर स्वामी केशवानंद जी महाराज का बीमारी के चलते निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। उनके निधन से तीर्थ के साधु संतों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वामी केशवानंद जी महाराज को हनुमत धाम के प्रांगण में भू समाधि दी गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु संतों के

0: बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मुजफ्फरनगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भाजपा शासित सभी राज्यों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। रेलवे के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यकरण और विद्युत आपूर्ति में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2029 में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं की राजनीति में अधिक भागीदारी देने के लिए महिला आरक्षण से जुड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को 50% से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 22,000 से अधिक वाद प्रकरणों को निस्तारण किया गया। इस दौरान जिला जज ने कहा कि लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का बड़ा माध्यम है। यह त्वरित न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इस दौरान मोटर दुर्घटना के 56 वादों का निस्तारण कर 6,11,00,000 रुपए प्रतिकर प्रदान किया गया। विभिन्न न्यायालयों के 6,190 सामान्य फौजदारी वादों का निस्तारण कर 7,27,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। 33 दीवानी वादों का निस्तारण किया गया। 138 NIA एक्ट के 31 वादों के निस्तारण में 2,97,00,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। राजस्व के 15,876 मामलों का निस्तारण कर 4,54,00,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। विभिन्न बैंकों के द्वारा 384 बैंक ऋण मसलों का निस्तारण कराकर लगभग 5,62,00,000 रुपए का सेटलमेंट किया गया। पारिवारिक न्यायालयों के द्वारा 64 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुजफ्फरनगर जिले में इस समय स्व जनगणना का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि 7 मई से प्रारंभ होकर 21 मई 2026 तक होने वाली स्व जनगणना में जनपद के सभी नागरिक स्वयं की जनगणना पोर्टल पर अपनी सूचनाएं दर्ज कराने का कार्य करें। मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विशाल शक्ति प्रदर्शन किया गया। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले जुटी हजारों महिलाओं ने पैदल मार्च निकालकर संदेश दे दिया कि अब देश की आधी आबादी अपने हक के लिए जाग चुकी है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारे लगाती ये महिलाएं प्रकाश चौक पहुंची, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं राष्ट्रहित में किए गए आह्वान के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने निजी गाड़ी के स्थान पर मेट्रो का उपयोग किया। कपिल देव ने गोरखपुर से लौटते समय निजी वाहन का उपयोग न करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे से मोदीपुरम तक मेट्रो एवं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के माध्यम से यात्रा कर जनमानस को ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का प्रेरणादायी संदेश दिया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रह्मदेव आर्या की गाई रागिनी।

ಹವ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है, इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से ब्रह्मदेव आर्या की गाई रागिनी।

धरती गाती है लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मदेव आर्या की गाई रागिनी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन है अंकुर चौधरी का।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नचियाबाद का कार्यक्रम बात आसपास की। मैं अंकुर चौधरी। शिक्षा वह रोशनी है जो जीवन की हर कठिनाई को आसान बनाने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन कई बार आर्थिक अभाव प्रतिभाओं की राह रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसे में NMMS योजना उन मेधावी विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आती है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हमारे साथ है एक ऐसी प्रतिभाशाली छात्रा जिन्होंने अपने परिश्रम, आत्मविश्वास और लगन के बल पर NMMS परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है। आइए बात करते हैं।
1: मेरा नाम गीतिका है।
0: NMMS योजना के बारे में आपको पहली बार कब और कैसे जानकारी मिली और इस योजना ने आपके मन में आगे बढ़ने की कैसे प्रेरणा जगाई?
1: मुझे NMMS योजना के बारे में विद्यालय से जानकारी मिली, जिसमें शिक्षकों ने मुझे बताया कि इसमें आय छात्रवृत्ति योजना है, इससे वहाँ से जानकारी मिली।
0: आपने NMMS परीक्षा की तैयारी के दौरान किन किन विषयों और हिस्सों पर विशेष ध्यान दिया?
1: मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग और

0: एसएसटी के हिस्सों पर अधिकतर ध्यान दिया और अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित रखने के लिए मैंने थोड़ी और पढ़ने की क्षमता बढ़ा दी। मुझे इसके लिए शिक्षकों ने बहुत ही सहयोग दिया और जब मुझे पढ़ाई में कोई भी परेशानी आती थी तो मैं अपने शिक्षकों से पूछती थी और वे मुझे अच्छे से बताते भी थे।
1: जब आपने परीक्षा की तैयारी शुरू की तब आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें किस प्रकार से दूर किया?
0: जब मैंने परीक्षा की तैयारी शुरू की तो जब मुझे बहुत सी कठिनाइयां मिली, जैसे मेरे पास बुक नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि आखिर क्या आएगा उसमें, तो फिर शिक्षकों ने मेरी मदद की और उन्होंने कुछ सवाल मुझे रीजनिंग पे दिए तो जिनसे मैं तैयारी करती और फिर यहाँ पे आके उन्हें सुना गया। सर मेरा टेस्ट भी लेते थे डेली, तो मैं उसमें बहुत अच्छे नंबर लाई तो मुझे और भी बहुत सारे क्वेश्चन देते थे।
1: आइए बात करते हैं जो इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है उनसे बात करते हैं। आपका नाम?
2: माई नेम इज रिया रानी, माई फादर नेम इज अमित कुमार, हमारे स्कूल नेम इज कम्पोजिट स्कूल फजलपुर खास।
1: आप इस प्रतियोगिता की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हो?
2: हमारे विद्यालय में रोज सभी टीचर्स हमें उसके संबंधित सवाल करवाते हैं और घर के लिए होमवर्क भी देते हैं। जो भी हमें घर पर समस्या रहती है उसे हम अगले दिन आकर सर से पूछते हैं।
1: आपको इस प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए कैसे और किस प्रकार प्रेरणा मिली?
2: हमें इस पेपर की तैयारी करने के लिए यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अगर हमारा इसमें नंबर आ जाएगा तो हमें 4 साल तक 12,000 रुपए स्कॉलरशिप आएगी और हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे, हम अपनी पढ़ाई खुद स्वयं कर सकते हैं।
1: आप आने वाले छात्रों को और आपके साथ में जो इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे?
2: मैं सभी से यह कहना चाहूंगी कि सब मन लगा के पढ़ाई करें और इस पेपर में नंबर लाए और अपने विद्यालय का और गाँव का नाम रोशन करें।
1: सच्ची लगन और निरंतर प्रयास ही सफलता की सबसे बड़ी पहचान होती है। आज की मेहनत ही आने वाली कल की सफलता का आधार बनती है। एक शिक्षक केवल शिक्षा नहीं देता बल्कि वह बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, साहस और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी जगाता है। NMMS जैसी परीक्षाओं में शिक्षकों का मार्गदर्शन विद्यार्थियों की सफलता की सबसे मजबूत कड़ी बन जाता है। आइए बात करते हैं शिक्षकों से।
3: मेरा नाम मोहम्मद अफराज।
1: आपके विद्यालय में NMMS योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं?
4: हमारे विद्यालय में जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है इसको लागू करने के लिए समय समय पर हमारे विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो पूरा प्रयास करते हैं। हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इस चीज की तैयारी के लिए हमारे विद्यालय में एक्स्ट्रा पीरियड लगाए जाते हैं और सभी बच्चों को समय समय पर इसकी तैयारी कराई जाती है और बच्चों के गार्जियनों से भी संपर्क किया जाता है। जब से हमारे विद्यालय की 2 बच्चों का नंबर इसमें आया है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में, तब से सभी बच्चे पूरी तरीके से इसमें प्रयत्नशील है।
1: इस योजना के माध्यम से विद्यालय के शैक्षिक वातावरण और परिणामों में किस प्रकार का सुधार देखने को मिला है?
4: सभी बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं, जैसे पिछले कुछ समय में हमारे विद्यालय के अंदर ये रहा कि बच्चों की उपस्थिति भी कम रही, लेकिन तब से हमारे विद्यालय के छात्रों का नंबर इसके अंदर आया है तो हमारे विद्यालय के सभी छात्र बढ़ चढ़ करके इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं और वो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो पीरियड को मिस करना चाहता, सभी बच्चे पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं।
5: मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं स्कूल फैलपुर खास में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत।
1: NMMS योजना का विद्यालय में ड्रॉप आउट दर को कम करने में क्या योगदान रहा है?
5: देखिए, ड्रॉप आउट दर कम अपने आप ही हो गई है। पहले क्या होता था कि अभिभावक जो है आर्थिक रूप से इतने मजबूत तो है नहीं कि वो बच्चों का एडमिशन करा सके, लेकिन जब इस योजना के थ्रू बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी तो अभिभावक को भी ये लगेगा कि हाँ बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, तो इससे अभिभावक जागरूक होकर बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे और ड्रॉप आउट दर अपना आप ही कम हो जाएगी।
1: भविष्य में इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय स्तर पर क्या सुधार किए जा सकते हैं?
5: देखिए, विद्यालय स्तर पर और सुधार किए जा सकते हैं। ऐसे क्या है, एक पीरियड रोज ऐसा लगाया जा सकता है जो इन परीक्षाओं की तैयारी करा जा सके, तो यही मैं कहना चाहूंगा कि विद्यालय स्तर पर एक पीरियड इसका जरूर होना चाहिए प्रतिदिन।
1: हर माता पिता की सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चों को सफल होते देखने में होती है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी अभिभावक अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं गीतिका की मम्मी से। आपका नाम?
6: मेरा नाम सुदेश है।
1: आपके बच्चे की पढ़ाई में इस योजना से किस प्रकार की सहायता मिलने की संभावना है?
6: जैसे कि हमें सर ने बताया था, हमारे बच्चे को 4 साल के लिए 48,000 रुपए मिलने की संभावना।
1: पहले और अब की स्थिति में आपके बच्चे की पढ़ाई और भविष्य को लेकर आपकी सोच में क्या बदलाव आया है?
6: पहले हम सोचते थे कि हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे और जब से हमारे बच्चे परीक्षा पास करी है तो उसके लिए हमें काफी मदद मिलने वाली, इसलिए हमारी समस्या का समाधान हो।
1: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ऐसी योजना कितनी महत्वपूर्ण है?
6: ये महत्वपूर्ण ऐसी होती है, जैसे ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई कक्षा 8 के बाद छूट जाती है तो उसके लिए

0: है कि हमें परीक्षा के बाद हमारे बच्चे पास हुए तो हमें सहायता मिलने की संभावना मिली है, तो इसलिए हमारे बच्चों की पढ़ाई आगे अच्छे से हो सकती है।
1: माता पिता का विश्वास और बच्चों की मेहनत मिलकर सफलता की नई कहानी लिखते हैं। विद्यालय वह स्थान है जहां बच्चों के सपनों को नई दिशा और नई पहचान मिलती है। एक सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता है। आइए बात करते हैं विद्यालय के प्रधान अध्यापक से।
2: मेरा नाम भीम सिंह है।
3: NMS योजना को आप शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तनकारी पहल मानते हैं और इसका छात्रों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: ये बहुत ही क्रांतिकारी पहल है। इससे चूंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो अधिकांशतः के लगभग सारे के सारे बच्चे जो हैं आर्थिक संसाधनों से वंचित हैं, और चूंकि आर्थिक संसाधन ना होने की वजह से बच्चे कई बार अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाते, शिक्षा बीच में ही उनकी बाधित हो जाती थी अर्थात छूट जाती थी। लेकिन NMS के माध्यम से जो बच्चों को बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत मिला है, चूंकि इससे बच्चों को 4 साल की आगे की शिक्षा पूरी करने में सहायता मिलती, सरकार उसमें लगभग 48,000 रुपये देती है, उससे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेरित जागरूक हो रहे हैं और माँ बाप को भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है कि यार चलो हमारे बच्चों की जो 4 साल की शिक्षा है वो सरकार के माध्यम से पूरी हो जाएगी, चूंकि सहायता मिल जाएगी, इससे बहुत जन जागरूकता भी आ रही है।
3: आप अपने विद्यालय में NMS परीक्षा की तैयारी के लिए किस प्रकार की शैक्षणिक रणनीति अपनाते हैं?
2: जी, जैसे मैं लगभग लगभग रोज ही 5 मिनट का मेरा मोटिवेशन क्लास होता है, जिसमें कक्षा में जाता हूँ 5वें प्लान से पहले उन्हें मोटिवेट करता हूँ। चूंकि हमारे गुरु थे, उनकी बात मुझे याद रहती है, बोलते थे कि बच्चों में आग लगा दो, आग इन द सेंस यानी बच्चों को मोटिवेट कर दो। उसके पश्चात मैं ये काम करता हूँ कि सुबह में 10 से 15 क्वेश्चन, चूंकि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रामीण परिवेश के हैं तो उतना अच्छा मैथमेटिक्स तो उनका नहीं रहता, बट सामान्य रूप से क्योंकि वो GK GS को थोड़ा सा रिवाइज करके अच्छा परफॉर्मेंस उसमें कर देते हैं, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन GK के आते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन पर डे कराता हूँ और बाकी मैथमेटिक्स और वो काम हमारा चलता रहता है। इसलिए बच्चे, हमें उम्मीद है कि इस बार हमारे बच्चे 2 की जगह 4 बच्चे सिलेक्शन होंगे।
3: NMS परीक्षा में मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट के बीच संतुलन बनाना छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: हाँ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से हमें पता चलता है कि अगर मेंटल एबिलिटी अच्छी होगी तो बच्चा मैथमेटिक्स में भी अच्छा करेगा और इस परीक्षा में भी बहुत अच्छा परिणाम आते हैं। वैसे भी गाँव में तो ये प्रवृत्ति और प्रचलन रहा कि भाई अगर गणित अच्छा तो सभी अच्छा है, सामान्य रूप से भी हमारी एक अवधारणा ही समाज में कि गणित में बच्चा अच्छा तो अच्छा है, तो मेंटल एबिलिटी के आगे गणित को भी इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ उसकी तार्किक क्षमता को भी विकसित करती है, जिससे बच्चा आने वाले भविष्य के बारे में ठीक से सोच सकता है।
3: एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इस योजना के लिए कैसे तैयार करते हैं?
2: हम ये प्रयास करते हैं कि देखते हैं कि कक्षा के कौन से 3-4 बच्चे अच्छे हैं या 4-5 बच्चे अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि उन पर फोकस रखते हैं, हाँ उन पर कुछ ज़्यादा फोकस रखते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा बताते हैं और प्रयास करते हैं कि कम से कम वो छुट्टी ना मारें, क्योंकि जो बच्चे हमारे नियमित आ रहे हैं उनके सुखद परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं।
1: NMS योजना केवल छात्रवृत्ति नहीं बल्कि यह उन सपनों की उड़ान है जो मेहनत, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन के सहारे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं प्रेरणादायक शब्दों के साथ मैं अंकुर चौधरी आपसे लेता हूं अनुमति। सुनते रहिए आकाशवाणी का कार्यक्रम बात आसपास की। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन था अंकुर चौधरी का। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: श्रोताओं नमस्कार। जीवन के गुजरे लम्हों को हम आपसे साझा करते हैं,
1: आओ मिलकर फिर से कुछ यादों को ताजा करते हैं।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, कुछ पुरानी यादों के साथ हम और आप मिलकर तय करेंगे ये आधे घंटे का सफर। इस सफर में आज मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो मित्र जसवंत सिंह,
1: और आज के इस सुहाने सफर में मैं भी हूँ आपके साथ शिवा शुक्ला। आज हम इस प्रोग्राम में बातें करेंगे वर्ष 2020 के विषय में। तो जसवंत, अब जल्दी से शुरू करते हैं वर्ष 2020 की बातें।
0: जी हाँ बिल्कुल, तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि वर्ष 2020 मुख्य रूप से तो कोविड-19 यानी कोरोना महामारी की त्रासदी के लिए याद किया जाता है। इस वैश्विक महामारी ने सारी दुनिया में हाहाकार मचाया, लोग घरों में कैद हो गए थे।
1: हाँ,

0: कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए विश्व स्तर पर लॉकडाउन लगाया गया था। इस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। श्रोताओं, वर्ष 2020 में कोरोना से बचने के उपायों का प्रचार प्रसार में भी आकाशवाणी सबसे आगे रही, लोगों को हौसला दे रही थी, हिम्मत दे रही थी और आम जन को इसके भय से दूर करने का काम पूरी तन्मयता से कर रही थी आकाशवाणी।
0: बिल्कुल जसवंत, न केवल मनोरंजन के कार्यक्रम ही प्रस्तुत किए गए बल्कि कोरोना के विषय में फैली भ्रांतियों को भी दूर किया आकाशवाणी ने। इतना ही नहीं श्रोताओं, आकाशवाणी देशवासियों को आपदा में अवसर तलाशने के लिए भी प्रेरित करती रही।
1: बिल्कुल श्रोताओं, एक और खास बात यह भी है कि जहां एक और कोरोना काल में मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी, तो वहीं आकाशवाणी भी पूरी तन्मयता के साथ आम जन को जागरूक करने में लगी थी और जानकारियों के माध्यम से और गीत संगीत के माध्यम से अपने श्रोताओं का मनोरंजन भी करा रही थी आकाशवाणी।
0: बिल्कुल जसवंत, जब आपने गीत संगीत का जिक्र छेड़ ही दिया है तो क्यों ना अपने श्रोताओं को हम भी सुनवाए कोई गीत।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा, हमारे श्रोता इंतजार कर रहे होंगे। तो आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं वर्ष 2020 की ही प्रदर्शित हुई फिल्म बागी 3 का ये प्यारा सा गीत। आवाजें हैं रोचक, शान और साथियों की।

0: के माध्यम को ही बदल दिया, क्योंकि 10+2 वाली परंपरागत शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और 5+3+3+4 पैटर्न के अनुसार एक नई शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया था।
1: श्रोताओं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी सकारात्मक बदलाव किए गए। केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि और भी एक परिवर्तन हुआ था जसवंत।
0: अरे वो क्या परिवर्तन था?
1: वो ये था कि इस नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया था।
0: और श्रोताओं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया गया, और ऐसा प्रशिक्षण जो नई तकनीकियों के ज्ञान पर आधारित था, ताकि शिक्षक नई तकनीकियों का ज्ञान अर्जित कर सकें और फिर वो ज्ञान अपने विद्यार्थियों में सरलता और सुगमता से पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल, और अनेक जानकारियों को प्रचारित और प्रसारित करने में अपनी आकाशवाणी तब भी अहम भूमिका निभा रही थी जसवंत,
0: और आज भी निभा रही है, और हमें लगता है कि भविष्य में भी
1: तत्पर रहेगी।
0: और शिवा, आकाशवाणी तो ज्ञान, जानकारी और मनोरंजन का सरल और सुगम माध्यम रहा ही है।
1: बिल्कुल, तो आइए अब सरलता से अपने श्रोताओं को हम भी लिए चलते हैं गीत संगीत की तरफ और सुनवाते हैं फिल्म मलंग का ये प्यारा सा गीत। आवाजें हैं मिथुन, अरिजीत सिंह और साथियों की, गीत के बोल हैं सईद कादरी का और संगीत है मिथुन का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर, और इस कार्यक्रम में हम आपसे बातें कर रहे हैं साल 2020 में घटित उन घटनाओं के बारे में जिनके प्रचार प्रसार में हमारे आकाशवाणी ने विशेष योगदान दिया।
1: बिल्कुल सही कहा शिवा, हमारा देश अध्यात्म और आस्था का केंद्र है। वर्ष 2020 में हमारी आस्था और भी पुष्ट हो गई थी जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था।
0: बिल्कुल बिल्कुल श्रोताओं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने पूरे विधि विधान के अनुसार श्री राम मंदिर की नींव में चांदी की 5 ईंटें रखी,
1: और इस भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जन जन तक पहुँचाने का काम किया था आकाशवाणी और दूरदर्शन ने।
0: श्रोताओं, साल 2020 वैसे तो दुनिया भर में भारी संकट के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस संकट के दौर में कुछ तकनीकियां भी विकसित की गईं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, 2020 में वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस को गति मिली थी।
0: और इतना ही नहीं श्रोताओं, वर्ष 2020 में पहली बार एक निजी कंपनी द्वारा नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुँचाया गया।
1: और शिवा, अब जानकारियों को देते हैं थोड़ा सा विराम और अपने श्रोताओं को लिए चलते हैं फिर से गीत संगीत की तरफ।
0: हाँ हाँ बिल्कुल जसवंत, तो आइए श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं वर्ष 2020 में ही रिलीज हुई फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का ये गीत। गीत को

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर।
1: आज इस अंक में हम बातें कर रहे हैं वर्ष 2020 के बारे में। वैसे तो साल 2020 भारत ही क्या सारे विश्व के लिए बड़ी चुनौती का साल था, लेकिन कुछ गतिविधियां वर्चुअल माध्यम से पूरी की गईं।
0: श्रोताओं, वर्ष 2020 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण वर्चुअल माध्यम से यानी डिजिटल माध्यम से किया गया था और इस वर्ष भारत के 74 खिलाड़ियों को इनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था।
1: जी हाँ श्रोताओं, वर्ष 2020 में ही फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था।
0: और एक और बात यहाँ है शिवा, इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में सर्वर और इंटरनेट की समस्याओं के कारण भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था, क्योंकि ये प्रतियोगिता पूरी नहीं हो पाई थी।
1: और श्रोताओं, बातें तो हमारी अभी और भी चलती रहेंगी, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे ये जसवंत जी ने कही ये बात, तो जितनी भी ये सूचनाएं थी, भले ये डिजिटल माध्यम से चल रही थी, लेकिन सूचनाओं को घर घर तक पहुंचा रही थी हमारी आकाशवाणी। और कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाएंगे और भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सुनवा देते हैं आपको पहले ये गीत जो हमने लिया है 2020 में ही रिलीज फिल्म अंग्रेजी मीडियम से।
0: और इस गीत में आवाज है तनिष्का बागची की,
1: तनिष्का सांगवी की।
0: जी क्षमा कीजिए, तनिष्का सांगवी।
1: जी आइए सुनते हैं गीत।

0: श्रोताओं, तनिष्का बाग सांघवी को अभी आपने सुना इस गीत में, और हम बात कर रहे हैं आज वर्ष 2020 की उपलब्धियों के बारे में। श्रोताओं, आकाशवाणी ने अपने 90 वर्षों की इस अथक यात्रा में अपनी विश्वसनीयता को निरंतर मजबूत किया है। आज भी भारत में रेडियो सूचनाओं, समाचारों और जानकारियों का एक सशक्त माध्यम है।
1: जसवंत, मनोरंजन का भी अनूठा और सुलभ माध्यम है आकाशवाणी, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा शिवा। तो एक बात इसकी ये भी है कि जब आकाशवाणी से जुड़े श्रोता किसी जानकारी को सुनते हैं तो वो अपने विश्वास को और भी गहरा करते हैं और उस जानकारी को इतना पुष्ट कर लेते हैं कि यदि किसी और माध्यम से कोई उस संबंध में जानकारी मिलती है तो वो उसे छोटा साबित कर देते हैं। और जानकारियों के साथ साथ गीत संगीत का तो कोई जवाब ही नहीं आकाशवाणी का। जब जब जैसी जरूरत पड़ी है वैसा गीत संगीत आकाशवाणी के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया गया। चूंकि वर्ष 2020 लोगों के टूटते हुए हौसलों का साल था और उस समय ऐसे गीत लिखे गए, ऐसी कहानियां प्रदर्शित की गईं, इस तरह की वार्ताएं प्रदर्शित की गईं आकाशवाणी से कि लोग घर में बैठे रहे और उन्हें आकाशवाणी के माध्यम से हिम्मत मिलती रही।
1: बिल्कुल जसवंत, तो आइए सुनवाते हैं वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ये गीत। तो अभी हमने सुना ही था, अब हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को फिल्म जान बन गए। ये गीत के बोल हैं, फिल्म है खुदा हाफिज़।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना विशाल मिश्रा और असीस कौर की आवाजों में एक फिल्म खुदा हाफिज का ये गीत। गीतकार और संगीतकार थे मिथुन। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुहाना सफर यहीं संपन्न करने की मुझे यानी शिवा शुक्ला और
1: मुझे यानी जसवंत सिंह को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष में कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे।
1: श्रोताओं, गीत तुम्हारे कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। हालांकि कुछ श्रोता हमारे पास पत्र भी लिखकर भेजते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारे कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो श्रोताओं, ये तो है वो पता जिस पर आप अपने पत्र भेजेंगे फरमाइशी गीतों के लिए। और अब आपको बता दें वो अपना नंबर जिस पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप अपनी पसंद का कोई फिल्मी गीत सुन सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9457078288। बिल्कुल सही सुना आपने, 9457078288। और देखिए, इधर हमने बताया है नंबर शिवा, और इधर हमारे श्रोताओं के मैसेज आने लगे हैं।
0: जी हाँ,
1: ये मैसेज हमारे पास आ गया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से।
0: मैसेज भेजने वाले हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप।
1: और श्रोताओं, ये क्रांति फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास लिख कर भेज रहे हैं एक और श्रोता,
0: टैगोर गार्डन नई दिल्ली से।
1: लिखने वाले हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। एक और मैसेज मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हमारे

0: पास आया है इसी गीत को सुनने के लिए, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का।
1: और ये अगला मैसेज हमें मिला है
0: जोधपुर राजस्थान से, सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड।
1: भेजने वाले हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी।
0: एक और मैसेज आ गया है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान का। ये लिख रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से।
1: तो आइए श्रोताओं सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म क्रांति का ये गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
0: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: गीत के बाद स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस वक्त पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। तो आइए श्रोताओं, देखते हैं हमें अगली फरमाइश किसकी मिली है।
7: ये फरमाइश लिखकर हमें भेजिए शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी, लिख रहे हैं जिला नांदेड़ एटाला महाराष्ट्र से। और ये फरमाइश लिखकर हमें भेजिए नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नुहाकर, निर्मला नुहाकर और विशाल नुहाकर ने।
6: और ये अगला मैसेज मिला है मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहरकर की तरफ से।
7: और ये मैसेज देख लेते हैं, गोविंदपुरा अहमदनगर से आया है जुनेद मुजावर, सुहिबा मुजावर और मिखाइल जैनब मुजावर का, कुमार सानू की आवाज में कोई गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं।
6: जी हाँ, ये सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म सनम का गीत।
7: जसपुर उत्तराखंड से ये मैसेज हमें लिखकर भेज रहे हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर।
6: और इसी गीत के लिए फरमाइश आई है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी की।
7: और ये फरमाइश मुंदी चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी जी भेज रहे हैं, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। तो देखते हैं, ये अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत भी हमें फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से।
6: तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म सनम का ये गीत।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। इसमें आप हमारे साथ जुड़ते हैं पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, और व्हाट्सएप मैसेज का सिलसिला अभी भी जारी है। मैसेज हमारे पास अनिल विनोचा जी का आया है नगीना जिला बिजनौर से। आपके साथ हैं कनिका और गीत अरोड़ा, और ये मैसेज है हमारे पास एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से।
1: नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी और परी खर्चे की ओर से।
0: और ये मैसेज हमारे पास आ रहा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। लिखने वाले हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी।
1: अगला मैसेज है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का, और ये सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म उम्मीद का गीत। गीत के बोल हैं शकील बदायूनी के और संगीत रवि का।
0: बिल्कुल सब इन्होंने लिखा है, और मोहम्मद रफी की ही आवाज का गीत सुनने की फरमाइश रेलवे रोड गंज डुंडवारा से कर रहे हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम। और मोहम्मद रफी की ही कोई आवाज़ का कोई गीत सुनवा दीजिए। लिख रहे हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव और आरव, और डाबकी रोड अकोला से। और ये मैसेज,
1: और इसी गीत के लिए ये मैसेज हमें मिला है भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू एकम दामन और अभिजोत की ओर से।
0: और ये पत्र जैसा ही एक मैसेज उन्होंने बनाकर हमें भेजा है दादरी गेट भिवानी से। लिखने वाले हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश दाऊद सराय सहारनपुर से भी हमारे पास भेज रहे हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी।
1: आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म उम्मीद का ये गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना उम्मीद फिल्म से। और आइए कार्यक्रम गीत तुम्हारे में अगला गीत शामिल कर रहे हैं हम, और गीत कौन सा शामिल करेंगे ये तय करेंगे हमारे श्रोता। आपने हमें मैसेज लिखना शुरू कर दिया है, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने ये फरमाइश लिखकर हमें भेजी है,
1: और ये सुनना चाहते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से गीत। और इसी गीत के लिए फरमाइश मिली है हमें कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले की ओर से।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है शाही मार्केट सिवारा जिला बिजनौर से, लिखने वाले हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी। ये मैसेज
1: श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से, अशोक कुमार अविका, जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार ने मैसेज किया है।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है तेलंगाना निजामाबाद से, लिख रहे हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। और एक और मैसेज जल्दी से शामिल कर लेते हैं, माबुलवाड़ी महाराष्ट्र से ये मैसेज आया है,
1: सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार का।
0: और ये मैसेज हमारे पास लिखकर भेज रहे हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक, ग्राम लोहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से।
1: तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ श्रोताओं पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।
1: श्रोताओं दिन के 11 बजे हैं और लीजिए अब पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं फिल्म बगावत। फिल्म का ये गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर को।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हीरो फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ में।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। कल्याण जी, आनंद जी ने इस गीत के लिए संगीत दिया है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है मेरे हमसफ़र।

मेरे हम सफ़र, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुना रहे हैं आदमी खिलौना है फिल्म का ये प्यारा सा गीत, अलका याग्निक और पंकज उधास की आवाज़ में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और पंकज उधास को अभी आपने सुना फिल्म आदमी खिलौना है के अंतर्गत। और श्रोताओं, चित्रपट संगीत का ये आखिरी गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पिघलता आसमान से। आवाजें हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की। गीत लिखा है माया गोविंद ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, पिघलता आसमान फिल्म के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी।

0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा,
1: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
1: जी
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
1: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी। बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
1: जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओ, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी,
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है, तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है, तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello. How are you all?
4: We are
3: थैंक यू सो मच वान्या. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू. आर यू रेडी?
4: यस मैम.
3: ऑलराइट, यू ऑल नो दैट pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, pets are so lovely.
3: Right, Soham.
5: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
5: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
6: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
7: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
8: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
9: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
10: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
11: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes.
12: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black. As you know. How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail. Then he found another. He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful. He danced and said. The other crows. Laughed at him.
13: Oh, what a fool you are.
14: You are beautiful in black.
13: We love you.
4: We love you.
3: So children, now listen to the same poem in a lovely song.
4: Okay.

0: on our toll-free number 8800440559. We may be contacted as well on our email address. Our email ID is audio@ciet.nic.in. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम दी क्रो और अब सुनते हैं कार्यक्रम एक पौधा राजू का।
1: इस कार्यक्रम में एक बच्चे के बारे में मनोरंजक ढंग से बताया गया है कि कैसे उसने एक पौधा लगाया, उसकी देखभाल की और अपने मित्रों को भी उसने पौधा लगाने के लिए किस प्रकार प्रेरणा दी।

0: एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो दीदी
1: दीदी
0: राजू स्कूल से आ गए तुम?
1: हाँ दीदी।
0: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
0: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
0: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।
0: लो माली काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ माली काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ
0: देखभाल, वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद माली काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी
0: चलिए दादाजी।

0: राजू सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का 1288वां भाग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आपको बता दें आज के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम कानून की बात आप सुनेंगे आज शाम 7:32 पर। यह प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा।

अब से थोड़ी ही देर के बाद दोपहर 12:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा संतूर पर बजाया राग पंचम से गारा, ताल कहरवा, और इनके साथ तबले पर संगत करेंगे पंडित अनिंदो चटर्जी। दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में आज चर्चा का विषय होगा नशा नाश की जड़ और विश्व मधुमक्खी दिवस। साथ ही आज के क्रम बात है चोखी के अंतर्गत आप सुनेंगे लघु नाटिका बदलती तस्वीर। इसमें आलेख और प्रस्तुति सहयोग रहेगा अंजना का, निर्देशक अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे विविध कलाकारों की आवाज में ब्रज लोकगीत।

आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे, रिश्ता ये खास है। इस कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे। शाम 5:15 पर युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी में आज क्रम होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट और कहानी के उस पार। कहानी के उस पार इस क्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सिक्का बदल गया कहानी का एपिसोड 3। किसान श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर चर्चा का विषय होगा सनई ढेंचा का मृदा स्वास्थ्य में योगदान। साथ ही किसान श्रोता सुनेंगे कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला। इसके पाठ 15 के अंतर्गत डॉक्टर नवीन चंद्रा से प्रमोद सिंह की बातचीत का विषय होगा फसल अवशेष प्रबंधन में बायोपेस्टिसाइड्स का महत्व।

शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नेहा बंसल की वार्ता। इस वार्ता का विषय होगा राष्ट्र के विकास में विभिन्न संस्कृतियों का योगदान। आज रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे हमारा विशेष कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे आकाशवाणी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक श्री सुलेंद्र नौटियाल के रेडियो प्रसारण से जुड़े कुछ संस्मरण, उनकी कुछ यादें। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रहेगा यशोधर डबराल का, प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा।

शाम 7:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे भाई हरजिंदर सिंह की आवाज में शबद। श्रोताओं, आज फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 12:30 पर कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में, 2:30 पर कार्यक्रम संदेश.com के अंतर्गत, शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में, रात 8:00 कार्यक्रम गीत संध्या में, रात 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत और रात 10:00 कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा संतूर पर बजाया राग पंचम से गारा, ताल कहरवा। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे हैं पंडित अनिंदो चटर्जी।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा के द्वारा संतूर पर बजाया राग पंचम से गारा ताल लहरवा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित अनिंदो चटर्जी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोपहर का समय है, गर्मी का मौसम, और उस समय जब हम बैठते हैं सुकून से कहीं छाया में, कहीं अपने घर के किसी ठंडे कोने में, उस समय गीत संगीत का मन करता है। और फिर ऐसे में बहुत कर्णप्रिय संगीत वाले गीत हमें पसंद आते हैं। आइए ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवाते हैं, अंदाज फिल्म का। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: मिड डे मेलोडी कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं संघर्ष फिल्म का ये गीत, सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है जतिन ललित ने।

मेलोडी कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशिकी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं तुम बिन फिल्म का ये प्यारा सा गीत चित्रा सिंह की आवाज में।

तुम बिन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था फैज अनवर ने और धुन तैयार की थी निखिल विनय ने। आवाज थी चित्रा सिंह की। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परदेश से। आवाज है कुमार सानू की और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। गीत के लिए संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, परदेस फिल्म के इसी गीत के साथ अब ये कार्यक्रम मिड डे मेलोडी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। दोपहर का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन क्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण

0: पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Earlier today, PM Modi said that he is looking forward to his meeting with

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को मारी राम राम और स्वागत तम सभी का। और आज का बहुत ही खास कार्यक्रम लेके आ गई है थारी बहन अंजना। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी सभी बहनें एकदम स्वस्थ होंगी और हमारा कार्यक्रम सुन रही होंगी, क्योंकि आज माह का तीसरा बुधवार और तीसरे बुधवार को क्रम रह वह है बात है चौकी। इसके अंतर्गत हम थारे को कोई ना कोई संदेश दिए हुए सुनवाते हैं नाटिका, साथ ही हमेशा की तरह मनोरंजन और किसी खास विषय पर चर्चा। तो बहनों, आज हम थारे से चर्चा करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस पर, क्योंकि आज हम इस दिवस को मना रहे हैं और मधुमक्खी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों और परागण का महत्व, जैव विविधता संरक्षण और हमारी खाद्य प्रणालियों में मक्खियों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। श्रोता बहनों, संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की मंजूरी दी थी और पहली बार यह दिवस 20 मई 2018 में मनाया गया। बहनों, मधुमक्खियां केवल शहद ही ना देवे बल्कि खेती और पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फूलों से परागण करती हैं, जिससे फूलों, सब्जियों और अनाज की पैदावार बढ़े। परंतु आज के समय प्रदूषण, कीटनाशकों का अधिक उपयोग और जंगलों की कटाई के कारण मधुमक्खियों की संख्या कम होती जा रही है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहनों खतरा है। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगावें, जंगलों की कटाई को रोकें और मधुमक्खियों का संरक्षण करें और साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, जिससे वो स्वस्थ रह सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक मात्रा में हमें पेड़ पौधे लगाने हैं और स्वस्थ वातावरण को तैयार करना है, तभी हम

बहनों, बात अचोखी कार्यक्रम के अंतर्गत आइए थारे को सुनवाते हैं नाटिका बदलती तस्वीर। प्रतिभागी हैं अक्षय त्यागी, रेणु राजपूत, सिमरन, सोहनलाल शर्मा, प्रमोद सिंह, अंजना, यूसुफा और सुवेंद्र सिंह। आलेख व प्रस्तुति सहयोग अंजना का, प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा, निर्देशक अंकित सैनी। तो आइए सुनते हैं नाटिका बात बदलती तस्वीर।

0: सीमा, ओ सीमा, जा आम के पेड़ से चार पांच आम भी तोड़ ला बिटिया। आम का पन्ना ही बना दूंगी और चटनी से रोटी खा लियो, चटनी भी बन जाएगी उसी आम की। और हाँ, आम का पन्ना दोपहरी में पी लेंगे, लू भी ना सतावेगी।
1: अम्मा, पन्ना तो पी लूंगी पर चटनी से रोटी ना खाऊंगी। आज तो उड़द की दाल चावल बनाओ, वो ही बड़ा खाने का मन कर रहा।
0: अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या बताऊं, कैसे मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाए रही हूँ। जब से तेरे पापा बीमार हुए उसी दिन से हर दिन सोचूं कैसे चलेगा घर का खर्च।
1: अम्मा दुखी तो बिल्कुल ना हो, तुम्हें आम की चटनी बनानी है ना तो चटनी ही बनाओ। पर अब देखियो हम क्या करती है, ऐसे थोड़ी परेशान होने देंगे थारे को। अब हंस भी दो अम्मा। अरे
0: क्या सीमा, तू भी ना।
2: क्या करेगी सीमा, कहीं आईएएस बनने का प्लान तो नहीं है तेरा?
1: मजाक मत कर, सच कुछ तो करना है।
3: अरे बहन, हम लड़कियां कर भी क्या सके हैं,
1: हम सब कुछ कर सके हैं।
4: ताई जी, ताई जी, सीमा जी जी, अरे सुन लो, गांव में कृषि अधिकारी आए हैं कुछ खेती बाड़ी से संबंधित बातें समझाने। अगर समझनी हो तो कन्या पाठशाला के पास पंचायत घर पे पहुंच जाओ, मुखिया जी ने कहलवाया। जल्दी।
1: ठीक है भैया, पहुंच जावेंगे।

0: अरे अरे अरे, पंचायत घर में आज
1: बड़े अधिकारी आ रहे हैं।
0: हाँ हाँ,
1: वो खुशी के बारे में बताने वाले हैं कुछ।
0: अच्छा, मैं तो जरूर जाऊंगी।
2: मैं भी
0: चलूंगी।
3: मैं भी जाऊंगी।
4: अरे अरे शिवा जी, पायल, राधा, तुम क्या करने आई हो सब यहाँ? अरे सुनो सुनो गांव वालों, ये लड़कियाँ करेंगी अब खेती बाड़ी, और वो भी मशरूम की।
0: मशरूम की?
4: हाँ हाँ, मशरूम की। कृषि अधिकारी आज मशरूम के बारे में ही बताने वाले हैं। अब जाओ ताई जी को भेजो, वो ही तो करती हैं खेतों में मेहनत मजदूरी। अब जाओ भी, क्यों खड़ी हो?
0: रमेश भैया, मशरूम की खेती लड़के ही कर सके? यो कहाँ लिखा? अब देखियो, हमने ना करके दिखाई तो मारा नाम बदल दियो।
5: राम राम राम राम राम राम काका, राम राम राम राम। तो चलिए सब चुपचाप बैठ जाइए। हाँ भाई बैठ जाओ। देखो आज हम बहुत काम की बात आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं, और आज एक ऐसे विषय पर हम आपको जानकारी देंगे जो बहुत ही कम जगह में आप एक ऐसा रोजगार कर सकते हैं जिससे अच्छी आमदनी आपको हो सकती है, और ये हमारा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ ही काम है। तो क्या आप सब लोग सुनने को तैयार हैं?
4: हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, हम सुनने को तैयार हैं।
5: हाँ बहुत अच्छी बात है। तो देखो, हम आपको जो बताने वाले हैं वो बड़ा ध्यान से सुनना।
6: बताओ बताओ ना।
5: मशरूम का नाम कभी सुना है आपने? भाई मशरूम की खेती आप कर सकते हैं, जो आज की बहुत जरूरी आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं ना? भाई देखो, कुछ युवा भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी सुन लें और नोट कर लें। तो देखो, इस मशरूम की खेती को अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक छोटे से कमरे में भी इस काम को आप कर सकते हैं।
6: कमरे में खेती?
5: बिल्कुल काका, कमरे में ही खेती होगी। ये बड़े जागरूक काका दिखाई दे रहे हैं। एक कमरे में, और वो भी बंद कमरे में ये खेती होगी, जिसमें 15 दिन तो बिल्कुल अंधेरा रहना चाहिए, और उसके बाद आप अगर सही तरीके से अपनी इस मशरूम की फसल की देखभाल कर लेंगे तो आपको एक अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। समझ रहे हो आप? भाई इसको करने के लिए आपको करना क्या है?
3: क्या करना
5: ये है कि देखो, एक कमरा अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात।
3: हाँ हाँ।
5: अगर कमरा भी नहीं है तो आप इसके लिए जो ये हमारी घास है या पुआल होती है

0: जो पूले होते हैं उससे भी आप एक झोपड़ी सी बना के उसमें भी ये खेती कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इस झोपड़ी में आपको जो हमारा गेहूं का भूसा है उस भूसे से ही आप इस काम को कर सकते हैं।
2: भूसा भर गया झोपड़ी में, बताओ क्या करना है।
0: भाई आप सब लोगों में सबसे ज्यादा जागरूक तो मुझे ये काका दिखाई दे रहे हैं। ये इस उम्र में भी अगर इतना जोश दिखा रहे हैं तो भाई आप सबको भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो देखो भूसे से ही आपको ये खेती करनी है, भूसा पुआल।

0: ट्रेनिंग कहाँ होगी?
1: ट्रेनिंग लेने के लिए आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पर जा सकते हैं,
0: अच्छा जी,
1: जो आपकी तहसील में भी एक उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी का एक कार्यालय है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं और जिला स्तर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बस आप जागरूक हो जाइए और मशरूम की खेती की तरफ ध्यान दीजिए। अब देखिए, मशरूम की खेती करने के लिए आप कहोगे कि कैसा मौसम होना चाहिए।
0: कैसा जी?
1: देखो जी, वैसे तो हर मौसम में मशरूम की खेती करी जा सके है। मशरूम, बस उसकी प्रजातियां अलग अलग होती हैं, चाहे वो ढींगरी मशरूम हो, बटन मशरूम हो, या जो मिल्की मशरूम होती है वो हो, इन सब का समय अलग अलग है। जब आप इसकी ट्रेनिंग लेंगे, आपको पूरी जानकारी बता दी जाएगी। आप इस काम को जरूर करें। आपने सबने नोट कर ली है ना ये सारी बातें?
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नोट कर लिया हमने।
1: बहुत अच्छा है।
0: कल ले
2: सर, ये काम क्या लड़कियां कर सके हैं?
1: बिल्कुल कर सकती हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सबसे अच्छा काम तो लड़कियां ही कर सकती हैं। फिर करिए ना आप।
2: तो सर, हम करेंगे मशरूम की खेती। सर, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, अगर कोई परेशानी पड़ी तो हम आपसे जानकारी ले लेंगे।
1: हाँ, जरूर। लो, ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। जब भी कुछ पूछना हो तो जरूर पूछना, मैं आपको जरूर बताऊंगा।
2: ठीक है सर।

0: जल्दी खाना दो अम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है आज तो।
1: अरे बड़ी खुश लग रही, क्या बात बिटिया?
0: अरे अम्मा बात ही ऐसी है, अब देखना हम ही महकेंगे अपने गांव में। पायल, राधा सुनो तुम दोनों भी, आज ही बाजार चलते हैं मशरूम के बीज लेने के लिए।
2: नहीं बहन, बीज तुम ही लाना, मैं गांव में ही गेहूं चावल के भूसे का इंतजाम करती हूँ।
3: हाँ ये ठीक रहेगा सीमा, चल हम दोनों चलते हैं शहर।
0: ठीक है बाबा ठीक है, पर पहले पेट पूजा तो कर लें।
3: सीमा तू चल इन बोरों में भूसा भर दे।
2: अरे सीमा सुन, पहले ये वाला भूसा भरना, इसे मैंने तैयार कर दिया है, मैंने इसमें खाद बीज सब कुछ मिला दिया अच्छे से, बस इसे बोरों में भरना बाकी है।
0: अरे वाह मेरी बहन, ये हुई ना बात।
3: मैं ताई को बुला कर लाती हूँ, वो भी थोड़ा हाथ बटा देगी काम में तेरा।
2: हाँ हाँ अम्मा के बिना कोई काम हुआ है क्या, जा बुला ला, उनकी डांट में भी तो आनंद है।
3: लो ताई जी आ गई, सब काम कर देंगी अब।
1: हे भगवान मेरी बच्चों का साथ देना, बस इनकी मेहनत रंग ले आवे। सीमा, अरे ओ सीमा पायल, मैं काम पे जा रही हूँ, ध्यान रखियो घर का, और हाँ खाना भी बना लियो और खा लियो, मैंने अपने लिए बांध लियो है।
2: ठीक है अम्मा। सीमा चल तू बर्तन साफ कर, मैं घर साफ कर देती हूँ।
0: ठीक है।
2: सीमा ये बदबू क्यों आ रही है?
3: अरे ये बदबू नहीं है, ये मेहनत की खुशबू है।
0: अरे राधा तू?
3: हाँ देखने आई हूँ मशरूम। अरे 20 दिन हो गए हैं मशरूम बोए हुए।
0: हाँ हाँ चल देख लेते हैं, ऐसे कुछ बदबू भी आ रही है मुझे भी, है ना? मैं दरवाजा खोलती हूँ, रुक जा।
2: हाय हाय कितनी बदबू है, ये तो कुछ ना होगा, ये क्या हो गया?
0: ये क्या हो गया, हमने तो सब कुछ अच्छे से किया था, पर ये क्या हो गया? राधा पायल देखो तुम दोनों, ये क्या हो गया?
2: अरे सीमा सही कह रहा था रमेश, हमसे ना हो पावेगी खेती।
0: अरे कैसे ना हो पावेगी खेती हमसे, क्या एक ही प्रयास में हिम्मत हार जावे हम? नहीं दोबारा से करेंगे सब कुछ, देखते हैं कब तक सफलता ना मिलेगी हमें।
3: सीमा सही कह रही है। पायल चल उदास ना हो, कल से दोबारा से करते हैं मेहनत।
2: कल से नहीं अभी से, मैं करती हूँ बात कृषि अधिकारी से, कहाँ कमी रह गई हमारे काम में, फिर बढ़ते हैं आगे।
0: हाँ पायल चल बात कर, और देख अम्मा से ना कहियो, कुछ भी हो जावे अम्मा से मत कहियो, हम ये काम अब अम्मा के पीछे ही करेंगे, और जब

0: मशरूम उगावेंगे ना, तब दिखावेंगे अम्मा को।
1: हाँ हाँ ये सही है, नहीं तो ताई जी बहुत परेशान हो जाएंगी।
2: हेलो, नमस्ते सर। सर हमने जो मशरूम लगाए थे वो, जी जी जी ठीक है सर, जी सर, जी जी जी जी। सीमा, राधा सुनो, चलो सबसे पहले यहाँ की सफाई करते हैं।
0: और फिर
2: क्या, चलते हैं बाजार, वहीं से लावेंगे सब कुछ।
1: सर से सब कुछ ठीक से पूछ तो लिया है ना तूने?
2: हाँ हाँ राधा, सब कुछ पूछ लिया है, और देखना अब तुम इस बार।
3: ले बहन, इस बार तो कोई कसर ना छोड़ी अपने काम में, चलो बाहर अब।
2: अरे दरवाजा तो बंद कर दे।
3: हाँ हाँ चलो।

0: सीमा, पायल, अरे बड़े दिन हो गए तुम्हारे मशरूम को। अरे जाके भी देखा है ना कमरे में?
1: देखा अम्मा, देखा है।
0: तो मुझे भी तो दिखाई दे, आज मैं भी तो देखूं कैसे उगे हैं मशरूम।
2: हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं, बस राधा को आने दो, वो आती ही होगी।
3: नमस्ते ताई जी।
0: नमस्ते राधा बिटिया, नमस्ते। लो तेरा नाम लिया और राधा हाजिर।
3: 100 साल जो जीऊंगी ताई जी।
0: चल आ जा, आज मशरूम देख ले सभी।
3: हाँ हाँ जरूर ताई जी।
2: हाँ हाँ चल राधा। पायल तू भी आ जा, चलो गांव वालों को दिखाते हैं।
4: आज हमें गर्व है कि हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं।
0: मेरी बेटियों ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। अरे वाह मेरे बच्चों वाह।
2: देखा रमेश भैया, हम लड़कियों को, अगर हम लड़कियां ठान लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता।
4: हाँ हाँ भाई, तुम सबने तो कमाल ही कर दिया।
2: हमें बस मौका चाहिए भैया।
1: तो चलो फिर, क्यों ना हम सब मिलके कहें, मेहनत की राह पर बड़ी सफलता को पाना है।
2: बेटियां पीछे नहीं, हर क्षेत्र में परचम लहराना है।
0: तो हुई ना बात चौकी।

0: बदलती तस्वीर। बहनों, अभी तम सभी ने सुनी ये नाटिका। प्रतिभागी थे अंजना, अक्षय त्यागी, सुवेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, सोहनलाल शर्मा, यूसुफा, और आलेख व प्रस्तुति सहयोग रहा अंजना का। प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा, निर्देशक अंकित सैनी। तो उम्मीद करें हैं बहनों कि हमारी बहनों को ये नाटिका पसंद आई होगी। तो बहनों, आज की नाटिका से हमें सीख मिली कि मेहनत, आत्मविश्वास और नई सोच से लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़े। मशरूम की खेती न केवल रोजगार का अच्छा साधन है, बल्कि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देवे है। तो आइए हम सब मिलके अपनी बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें और स्वरोजगार को अपना के अपने गाँव और समाज को मजबूत बनावे। इसी संदेश के साथ बात है चौकी कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: चौकी चौकी चौकी बात है चौकी, चौकी चौकी चौकी बात है चौकी।
0: और आइए अब करवाते हैं थारा मनोरंजन और सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत नयनतारा की आवाज में। लेकिन पहले कुछ जरूरी संदेश।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
4: और ये
5: मेरी गुड़िया के नाम।
6: पर दादी,
3: हाँ,
6: आपके नाम?
7: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
6: क्या
7: आरबीआई कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हमारे महके को होते आना बहनों, तम सभी ने सुना प्यारा सा लोकगीत और आनंद लिया सभी ने कि किस प्रकार से ढोलक की थाप है। हमारी ग्रामीण बहनें घर में बैठ करके आनंद करे हैं, मनोरंजन करे हैं और सभी विवाह उत्सव पर या फिर जन्मदिन उत्सव पर गीत को गावे बजावे हैं। और सच बहुत ही अच्छा लगा है उस समय जब हमारी बहनें एक साथ बैठकर ढोलक की थाप पे गावे बजावे हैं। और आइए अब बात करते हैं खास विषय पर, यानी नशा नाश की जड़। इस विषय पर सच बहनों, नशा वास्तव में हम सब को बर्बाद कर देवे है, चाहे कोई सा भी तरीका हम अपनाते हैं। जैसे वर्तमान की बात करें तो बहनों, नशा युवाओं, महिलाओं, पुरुषों सभी में बहुत अधिक बढ़े हैं। हमारे कुछ युवा अपने दोस्तों के दबाव या तनाव के कारण नशा शुरू कर देवे हैं और जो बाद में उनकी आदत बन जावे है, और ये नशा धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देवे है। साथ ही हमारी बहनें भी अब नशे की लत की ओर अधिक बढ़ रही हैं, तो ये भी अच्छा ना है। अगर वो खेतों पे काम कर रहे हैं तो कहने लगे हैं, अरे थोड़ा थकान हो गई है, थोड़ा बीड़ी सिगरेट सुलगा लें, थोड़ा सा थकान दूर हो जाएगी या फिर लगेंगे काम में, या फिर खाना खाया है उसके बाद बीड़ी सुलगा लेंगे और उसके बाद काम में लगेंगे। तो बहनों, ये धीरे धीरे लत पड़ जावे हैं जो ठीक ना है, क्योंकि शराब, तंबाकू, सिगरेट ये सब ही फेफड़ों की बीमारी, कैंसर, हृदय रोग और मानसिक तनाव को बढ़ावे हैं। और इन समस्याओं से छुटकारा अगर पाना है तो हमें सबसे पहले नशे को भगाना होगा, यानी नशे की लत को छोड़ना होगा, क्योंकि ये लंबे समय तक जब नशा इंसान को लग जाता है तो सोचने समझने की भी शक्ति कमजोर हो जावे है, और इस नशे की वजह से ही घरों में कलेश, झगड़ा बढ़े है और घर परिवार की आर्थिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जावे है। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से ना हो पावे है, क्योंकि नशे की वजह से जब लड़ाई झगड़ा घर में होवे है तो घर के अन्य व्यक्तियों का स्वास्थ्य तो प्रभावित होवेगा ही, साथ में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होवेगी। तो इसलिए बहनों, जब जागो तभी सवेरा, नशे की लत को हमें छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर परिवार में कलेश बढ़े हैं और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुआ है, उनका स्वास्थ्य भी खराब हुआ है। तो इसलिए अगर घर के आस पड़ोस में कोई नशे की लत है तो उसे तुरंत छुड़ाने का प्रयास करें। और देखो बहनों, इस समय गर्मी बहुत अधिक हो रही है, साथ में लू भी हमें सता रही है, तो ऐसे में बहनों खूब पानी पिए। अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो छाते का प्रयोग करें, हल्के ढीले सूती कपड़े पहने, घर को ठंडा रखें और हल्का पौष्टिक भोजन लें। बच्चों और बुजुर्गों को जरा कुछ ज्यादा ही हिदायत दी जावे है, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें लू सता सके है, इसलिए उनका जरा ज्यादा ध्यान रखें। और बहनों, इस गर्मी के मौसम में यदि तेज सिर दर्द, चक्कर आना, अत्यधिक पसीना, शरीर का तापमान यदि बढ़ रहा है, उल्टी आ रही है, थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, तो बहनों देर ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि घर में हालत बिगड़ सके है, क्योंकि ये सब लक्षण जब दिखाई देवे हैं तो समझ लो लू सता रही है। तो बहनों देखो, घड़ी की सुइयां अब कहवे कि बस और बात ना, लेकिन चलने से पहले थारे को बता दे अपना पता, तो पता नोट करें, कार्यक्रम घर संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2467-63। और अब अगले कार्यक्रम तक के लिए अपनी बहन अंजना को दे अनुमति। बहनों राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का 1:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा। श्रोताओं, लोकधारा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों की आवाज में ब्रज लोकगीत। जी हाँ, ब्रज की धरती में जो स्नेह है, जो अपनत्व है, जो भक्ति का रंग है, वो पूरे देश में सबसे अलग है। आइए, ब्रज की धरती में जो स्नेह की सुगंध है, उस सुगंध को इस गीत में प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे ये कलाकार। आप भी सुनिए ये ब्रज लोकगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों की आवाज में ब्रज लोक गीत।

समृद्धि और सुरक्षा, राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपाओलो टोमासिट्टी की

0: मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा

0: कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री

0: आया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का प्रोग्राम संदेश.com। श्रोताओं, संदेश.com कार्यक्रम जो व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित है, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। जल्दी से अपनी पसंद का कोई गीत लिखकर भेजिए, उसके बोल या फिल्म का नाम और हम आपको सुनवाएंगे उसी फिल्म का गीत। और हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 9457078288। तो इस नंबर पर आपको करना है मैसेज और लिखकर भेजना है अपनी पसंद का कोई गीत और हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद का वही गीत। देखिए, इधर हमने बताया है नंबर और उधर हमारे श्रोता जुड़ने शुरू हो गए हैं। ये पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत हमें मैसेज भेज रहे हैं और ये मैसेज हमारे पास आया है। गांव उदमा बाला, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। और इस मैसेज को लिखने वाले हैं पंकज शर्मा उर्फ निक्की, सुभाष शर्मा, गायत्री शर्मा, नीरज शर्मा, सरस्वती शर्मा और आपका पूरा परिवार। आप पत्थर के सनम फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। और देखिए, एक और मैसेज हमारे पास आ गया है। ये ग्राम दुल्हापुर से हमारे पास मैसेज आया है। राजपाल, पंकज, काजल, मानवी, तानवी, लक्ष्य, मोहिनी, रितिका और बलवीर सिंह, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से इन्होंने मैसेज किया है। मुकेश की आवाज़ का कोई गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं और ये मैसेज मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का है, जिला मुरादाबाद से ही। एक और मैसेज जल्दी से हमारे पास पहुँच रहा है, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार हैप्पी और दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय और रोशनी राय। आपके साथ हैं प्रांजल राय। और एक और मैसेज हमारे पास आया, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से लिखकर भेज रहे हैं, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और आपका पूरा परिवार आपके साथ हैं। राम देवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल जी। तो मुकेश की ही आवाज़ में कोई गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। ये एक और मैसेज हमारे पास आया है शेरकोट ज़िला बिजनौर से, तमन्ना परवीन और आयशा रानी शाहरुख फरीदी। तो आप सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं पत्थर के सनम फिल्म का ये प्यारा सा नगमा मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com और इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288 और इसी क्रम में जुड़ गए हैं हमारे साथ वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सनी भावसार। आपका पूरा परिवार कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र की आवाज़ का कोई गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हितल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन, आपने फरमाइश की है रफू चक्कर फिल्म का गीत सुनने की। और ये मैसेज हमारे पास कांट से मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी, रोशन जहां और विष्णु अग्रवाल, आपके पूरे साथी, आपके पूरे परिवार के सदस्य भी शैलेंद्र की आवाज़ का ही कोई गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी भी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद ज़िला बरेली से हमें मैसेज भेज रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है अमरोहा कनखेरा से, कुआखेड़ा से आया है। आस मोहम्मद, जीशान, जुनैद मलिक और शारिक मलिक ने हमें फरमाइश लिखकर भेजी है। तो लीजिए, आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं रफू चक्कर फिल्म का ये प्यारा सा नगमा कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा है गुलशन बाबरा ने और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288। तो इस नंबर पर जल्दी से आप हमें भेजिएगा मैसेज, लिखकर भेजिएगा किसी फिल्म का नाम और उस गीत के बोल जो आप सुनना चाहते हैं। और इसी क्रम में ये मैसेज हमारे पास ग्राम दुल्हापुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से आ गया है। सोनू, सुरेश, मानवी, तानवी, लक्ष्य, बलवीर और मुकेश शीतल कश्यप सुनना चाह रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ का कोई गीत। और ये मैसेज हमारे पास आया है कांट से, मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी और आपके साथियों का। और ये मैसेज हमारे पास पंजाबी में भी लिखा है इन्होंने और उसके साथ साथ हिंदी भाषा में भी लिखा है। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से लिखने वाले हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू स्माइल खुशदिल, हसमुख लाल, संजीव कंचन, सुनीता जिंदल और आपका पूरा परिवार। और आप सुनने की फरमाइश कर रहे हैं रोटी फिल्म का कोई गीत सुना दीजिए। ये आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी जिन्हें एक बार फिर से मैसेज भेज दिया है सियारा जिला बिजनौर से। और ये मैसेज हमारे पास आया है गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार जी का। फिल्म रोटी का कोई गीत सुना दीजिए, ये फरमाइश कर रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और आदलपुरा गुगामा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। तो लीजिए आप सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में रोटी फिल्म का ये गीत।

श्रुतो, रोटी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, और इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिखकर भेज रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है ग्राम पहाड़पुर चतर जिला बिजनौर से दीपक कुमार, सुमित कुमार, प्रमोद कुमार, दयाराम सिंह और मनोज कुमार। इसी गीत को सुनने की फरमाइश ग्राम पेदा जिला बिजनौर से ये मैसेज हमारे पास भेजा है नंदराम सिंह, संतराम सिंह, मुकेश कुमार, रतिराम सिंह, दिनेश कुमार और सतीश कुमार के द्वारा। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से, पुनः इन्होंने मैसेज किया है, नाम उसमें बदल दिए गए हैं, मुन्ना भाई, निशा परवीन और तमन्ना आशिक हुसैन अंसारी। मैसेज आपके द्वारा आया है और सुनने की फरमाइश कर रहे हैं कामचोर फिल्म का गीत। और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी का, किशोर कुमार की आवाज़ का कोई गीत सुनाने की कृपा करें। और ग्राम पीपर लोड सर गांव छत्तीसगढ़ से मैसेज हमारे पास भेज रहे हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। और ये मैसेज हमारे पास उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु खोरवाल, गीतिका खोरवाल और पूरा परिवार इस मैसेज को सुनने की फरमाइश कर रहा है। ये मैसेज हमारे पास आया है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का, ग्राम पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से इन्होंने ये मैसेज हमें किया है। और एक मैसेज हमारे पास ये पहुंच गया है मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से, अताउर रहमान, हबीबुर रहमान और जियाउर रहमान साहब ये मैसेज हमें भेज रहे हैं। तो लीजिए श्रोताओं, आप सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ का ये प्यारा सा गीत फिल्म कामचोर से।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम संदेश.com अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

शुभ संध्या श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं और सभा के आरंभ में अपने श्रोताओं को ले चलते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है की ओर। नमस्कार श्रोताओं, 8 जून 2026 भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 90 वर्षों की

0: यात्रा केवल ध्वनि यात्रा नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों, संस्कृति और विश्वास की यात्रा रही। आकाशवाणी ने देश को कई तरह से समृद्ध किया, समाचार दिए, गीत संगीत दिया, सूचना ज्ञान जागरूकता दी, और सबसे बड़ी बात, आकाशवाणी ने हर अकेले इंसान को एक साथी दिया, और इसीलिए आकाशवाणी और श्रोताओं का ये अटूट रिश्ता बेहद खास है। और इसी खास रिश्ते, यादों, एहसासों और अनुभवों को समेटते हुए आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जिला बिजनौर के थाना मंडावर के एक प्राइमरी स्कूल में कार्यरत शिक्षिका मानसी चौधरी, जहां रेडियो की समृद्ध यात्रा पर उनसे हुई एक भावपूर्ण बातचीत। तो सबसे पहले मानसी जी, स्वागत है आपका रिश्ता ये खास है कार्यक्रम के आज के संक में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी आपका और आकाशवाणी नजीबाबाद का भी कि मुझे आज आकाशवाणी से जुड़ने का मौका मिला और मेरे जीवन में आकाशवाणी और रेडियो की जो महत्ता और अनुभव रहे हैं उनको साझा करने का अवसर मिला।
0: तो मानसी जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में रेडियो और आकाशवाणी की क्या भूमिका रही।
1: देखिए, रेडियो केवल यंत्र नहीं था, हमारे समय में रेडियो घर का सदस्य हुआ करता था। सुबह समाचार, दोपहर में गीत संगीत, शाम को यूथ फोरम, संध्या में खेती किसानी और रात में सुगम संगीत और मधुर गीतों की धुन दिन भर की सारी थकान ही मिटा दिया करती थी। गांव से शहरों तक बिना खर्चे का एकमात्र साधन आकाशवाणी ही हुआ करता था। जब टीवी ज्यादातर घरों में नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तब रेडियो भी दुनिया को दुनिया से जोड़े रखने वाला एक खास और विश्वसनीय माध्यम था। मुझे आज भी याद है, 80 के दशक में जब बिजली चली जाती थी, पूरा परिवार लालटेन के पास बैठकर रेडियो पर विविध भारती और आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम सुना करता था। और जब आकाशवाणी से देशभक्ति के गीत बजते थे तो मानो लगता था जैसे पूरा भारत एक साथ धड़क रहा हो। तकनीक बदल सकती है, माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन आवाज की आत्मीयता कभी पुरानी नहीं होती। ओल्ड इज गोल्ड यू ही नहीं कहते हैं ना?
0: बिल्कुल मानसी जी, 90 वर्षों की ये यात्रा ही हमें बताती है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक सच्ची आवाज की गर्माहट कभी कम नहीं होती। रेडियो जो कभी गांव की चौपाल में बजा तो कभी शहरों की बालकनी में, कभी किसानों की उम्मीद बना तो कभी बच्चों का साथी, और आज मोबाइल इंटरनेट के इस दौर में भी ऑल इंडिया रेडियो अपनी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ हमारे बीच है। और इन्हीं भावनाओं और अनुभवों को सुनकर आज शायद हर श्रोता अपने बचपन की गलियों में लौट जाए।

0: तो मानसी जी, सबसे पहले आपके जीवन में रेडियो की शुरुआत कब और कैसे हुई?
1: सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन रेडियो की आवाजों में ही बीता है। जब मैं बहुत छोटी थी तब हमारे घर में एक बड़ा सा रेडियो हुआ करता था। सुबह उठते ही पिताजी रेडियो चला देते थे, कभी भजन, कभी समाचार, कभी सदाबहार गीत और खेती किसानी के कार्यक्रम, और हम बच्चे उसी आवाज के बीच बड़े हुए। मुझे आज भी याद है, बाल मंडल कार्यक्रम का इंतजार हम पूरे हफ्ते किया करते थे। उस समय पता ही नहीं था कि कैसे बच्चे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। मन बहुत होता था कि हम भी उस कार्यक्रम में जाएं

0: और जैसे ही रेडियो पर बच्चों की आवाज सुनाई देती थी, हम सब काम छोड़कर रेडियो के पास बैठ जाते थे। वो दौर, वो केवल कार्यक्रम नहीं थे, हमारा बचपन थे।
1: वाह, कितना सुंदर समय रहा होगा वो। क्या पढ़ाई के समय भी रेडियो आपके साथ रहता था?
0: जी बिल्कुल, मैं पढ़ाई भी रेडियो सुनते सुनते करती थी। धीमे स्वर में गीत बजते रहते थे और मैं किताबें पढ़ती रहती थी। युवा वाणी, यूथ फोरम, फिल्म संगीत, हेलो नजीबाबाद, खेल जगत की खबरें, इन कार्यक्रमों ने मेरे सोचने का दायरा बढ़ाया। रेडियो ने बोलना सिखाया और सबसे बड़ी बात, सही भाषा और सही जानकारी दी। आज भी मुझे याद है, जब कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी तो रेडियो सुनने की वजह से मेरे पास विषयों की अच्छी जानकारी होती थी। आकाशवाणी और रेडियो के साथ ने हर कदम पर मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मानसी जी। और कार्यक्रम में अभी आपने अपने पिताजी का जिक्र किया जो खेती किसानी से जुड़े हैं, क्या उस समय रेडियो उनके लिए कितना उपयोगी था?
0: बहुत ज्यादा। मेरे पिता खेती किसानी किया करते थे। परिवार में ताऊ जी, चाचा जी सब कहीं ना कहीं खेती से ही जुड़े हुए थे और अब भी हैं। और उस समय रेडियो पर ग्राम जगत और खेती से जुड़े कार्यक्रम उनके लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं थे।
1: और वो कैसे मानसी जी?
0: मैंने देखा है बचपन में पिताजी को रेडियो सुनते हुए, किस मौसम में कौन सी फसल बोनी है, बीज कैसे चुनना है, पशुओं की देखभाल कैसे करनी है, क्या क्या सावधानी उनकी देखभाल में बरतनी है, ये सारी ही जानकारी उन्हें रेडियो से ही मिला करती थी। मुझे याद है, जब एक बार हमारे पशु बीमार पड़ गए, तब आकाशवाणी रेडियो पर पशुपालन और FMD यानी मुंहपका खुरपका रोग से जुड़े कार्यक्रम आया करता था, जिसमें पशु डॉक्टर ने उपचार बताए थे। पिताजी वही उपाय अपनाए और सच में बहुत फायदा हुआ। उस समय रेडियो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि घर का सलाहकार हुआ करता था, परिवार का सदस्य था और जो आज भी है।
1: बिल्कुल मानसी जी, फिर समय बदला, आपकी शादी हुई, परिवार बड़ा, क्या तब भी रेडियो से जुड़ाव आपका बना रहा?
0: जी बिल्कुल, और शायद पहले से भी ज्यादा। ससुराल आने के बाद मैंने अपने परिवार में भी रेडियो सुनने का शौक जगा दिया। ससुर जी को आज भी लोकगीत रागनियां सुनना बेहद पसंद है। मैं घर संभालती थी, रसोई में होती थी, तब भी रेडियो चलता रहता था, तब भी रेडियो मेरा साथी था और आज भी है। महिला जगत जैसे कार्यक्रम सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा। नई नई रेसिपी, बच्चों की देखभाल, साफ सफाई, सौंदर्य और स्वास्थ्य से जुड़ी बातें। आज इंटरनेट पर जो चीजें लोग खोजते हैं, उनकी शुरुआत हमने आकाशवाणी से ही सीखी थी। घर के कामों के साथ साथ रेडियो सुनना अब तो आदत में शामिल है और मन भी कभी अकेला नहीं रहता।
1: और फिर आपने व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखा, टीचिंग लाइन चुनी, क्या उस समय भी रेडियो को समय दे पाना आपके लिए आसान था?
0: हाँ, थोड़ा कम समय दे पाती थी, लेकिन वो कहा है ना कि आदत में शामिल है, इसलिए
1: जी
0: जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, पर
1: बिल्कुल
0: मैंने आकाशवाणी से अपना रिश्ता कभी टूटने नहीं दिया और एक साइलेंट लिसनर की तरह हमेशा से आकाशवाणी से जुड़ी रही। और रविवार तो जैसे रेडियो के ही नाम होता था। हेलो नजीबाबाद पहले दिन में आया करता था, उसको सुनने की उत्सुकता इतनी रहती थी कि बस सारे काम बाद में पहले हेलो नजीबाबाद सुनते थे। घर के सभी सदस्य और आज भी सुबह सवेरे जब आकाशवाणी की सिग्नेचर धुन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा बचपन आंखों के सामने आ गया हो। श्वेता जी, रेडियो मेरे लिए केवल मनोरंजन माध्यम नहीं, एक भावनात्मक रिश्ता।
1: वाकई मानसी जी। और आज जैसे कि मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे आधुनिक समय में युवाओं, बच्चों और साथ ही हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: श्वेता जी, मोबाइल तो आज हर इंसान की जरूरत है।
1: जी
0: इसका इस्तेमाल कीजिए जरूरत के हिसाब से, तकनीक के साथ भी चलना चाहिए, लेकिन आकाशवाणी को अपने जीवन से दूर मत कीजिए। आज मोबाइल पर भी आकाशवाणी रेडियो बड़ी ही सुगमता के साथ सुना जा सकता है, कहीं भी, कभी भी। और मुझे लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो ही सबसे सच्चा और विश्वसनीय माध्यम है जानकारी, सूचना और मनोरंजन का। टीवी पर कई बार सनसनीखेज बनाकर न्यूज दिखाई जाती है, मोबाइल पर फेक न्यूज फैल जाती है। आकाशवाणी हमेशा से ही जिम्मेदारी के साथ सही जानकारी देता रहा है, समय की पाबंदता सिखाता है। और तो और श्वेता जी, आकाशवाणी के प्रसारण सुनने से भाषा भी सुधरती है, ज्ञान
1: बिल्कुल
0: सोच सकारात्मक होती है और एक अच्छा नागरिक बनने में भी सफलता मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आकाशवाणी रेडियो इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो या फिर हमारे बुजुर्ग हो, रेडियो सबको सुनना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए। रेडियो हर उम्र, हर घर का साथी और आने वाली पीढ़ियों को जोड़ता है, हर अकेले इंसान को अपनापन देता है। इसलिए जितना हो सके आकाशवाणी से जुड़े, इसे सुने और जीवन में उतारे।
1: बिल्कुल सही और बहुत ही अच्छी जानकारी मानसी जी आपने हमारे श्रोताओं को दी। और हम भी यही कहेंगे कि अपने भारत और रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने पर हम सबका यही प्रण होना चाहिए कि भारत की इस अमूल्य विरासत को हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मनोरंजन, सूचना, जानकारी और एक भावनात्मक अटूट इस रिश्ते को एक नया मुकाम दें। मानसी जी, आज आप हमारे साथ रिश्ता ये खासे कार्यक्रम में जुड़ी, अपने अनुभव आपने हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोता के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। समय शाम के 5:10 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें, हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। कानून की बात कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से आज संध्या 7:32 पर, आज रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आज रात्रि 10:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा का। आकाशवाणी से रिटायर्ड वरिष्ठ उद्घोषक श्री सुलेंद्र कुमार नौटियाल की रेडियो प्रसारण से जुड़ी यादें, प्रस्तुति सहयोग यशोदर डबराल का और प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का कम्पेट कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 10:00। गीत संध्या कार्यक्रम होगा आज शाम 8:00। साथ ही 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। भाई हरजिंदर सिंह की गाई शब्द पेश की जाएंगी सुगम संगीत के अंतर्गत आज संध्या 7:45 पर। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 6:45 पर सुनिएगा नेहा बंसल की पूर्व प्रसारित वार्ता राष्ट्र के विकास में विभिन्न संस्कृतियों की भूमिका। छाया गीत का आनंद लीजिएगा संध्या 6:55 पर और युववाणी कार्यक्रम रोज की ही तरह शाम 5:15 पर, जिसमें आज का क्रम रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज यूथ कनेक्ट कहानी के उस पार सिक्का बदल गया एपिसोड 3 बूस्टर्स, साथ ही साथ गीत संगीत भी।

कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला का पाठ 15 और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर। साथ ही होगी भेंटवार्ता फसल अवशेष प्रबंधन में बायो पेस्टिसाइड का महत्व विषय पर। डॉक्टर नवीन चंद्रा से बातचीत करेंगे प्रमोद सिंह। कल शाम 9:30 पर होगा कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट और कल शाम 5 सुनिएगा प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और कल रात्रि 10 सुनिएगा पूर्व प्रसारित नाटक कड़ी धूप घनी छांव जिसके लेखक हैं आफाक अहमद, निर्देशक मनोहर परोथी, प्रस्तुति सहायक मोतीलाल कुचेरू, प्रतिभागी कलाकार हैं विनय सूरी, जेसी भारती, महेश शर्मा, वीना गैण, रीता जितेंद्र, कुमारी कंचन केसरी, कुमारी डिंपल भसीन और मनोहर परोथी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम कल सवेरे 6:05 पर।

साकिब अक्कासी और साथियों की गाई चंद कव्वालियां पेश की जाएंगी कल संध्या 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित आज के प्रमुख और कुछ कल के कार्यक्रमों के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर शाम के 5:15 और लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग लिसनर्स,
1: स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में।
0: मैं हूं आपकी सगी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट नंदिनी माहेश्वरी, और मेरे साथ है एक साथी जो है चटपटी पटाखा।
1: स्टूडियो में नंदिनी के साथ हाजिर हूं मैं दोस्तों आपकी अपनी दोस्त अक्षी त्यागी, और पटाखे तो दोस्तों गर्मी के फूट रहे हैं,
0: इसीलिए अपना ध्यान रखिए, धूप में कम से कम निकलिए, हाइड्रेटेड रहिए, और वॉमिट, लूज मोशन और चक्कर जैसी परेशानियां हो
1: तो इग्नोर ना करें वरना भारी पड़ सकता है। सही इलाज ही बस आप लोगों की जान बचा सकता है।
0: एग्जैक्टली अक्षी, यही तो लाइफ की भी फिलॉसफी है ना, पूरे प्लान के साथ, सही स्टेप्स के साथ प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए तो बहुत आसानी से कम परेशानी से उस सोल्यूशन मिल भी जाएगा।
1: क्योंकि देखिए ना दोस्तों, आपके हाथ में ही है, आपके हाथ में नहीं है कि कब क्या होगा, पर ये जरूर है कि आपका एक्शन क्या होगा।
0: अब एक्शन की बात कर ही रही हो तो ऐसा करते हैं कि हम एक्शन ले लेते हैं।
1: या बिल्कुल ले लो।
0: और पूछ लेते हैं बूझो तो जाने का सवाल।
1: तो दोस्तों आज का हमारा आपसे सवाल रहेगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है?
0: और आपको सही जवाब देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर जाकर।
1: तब तक हम आपको सुनवाते हैं इतना प्यारा सा गीत।

0: वेलकम बैक दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं कुछ खास है आज के पिटारे में, जिसमें आज हम जानेंगे
1: हेल्दी रूटीन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सब अपने काम, पढ़ाई और मोबाइल में इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखना कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल नन्नी, लेकिन कहते हैं ना, अच्छी आदतें ही अच्छी जिंदगी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक हेल्दी रूटीन की, यानी स्वस्थ दिनचर्या की, जो हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है।
1: तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत आप डाल ही लीजिए कि सुबह जल्दी उठना, क्योंकि सुबह की ताजी हवा और शांत वातावरण हमारे मन को अपने आप ही पॉजिटिव ऊर्जा दे देता है।
0: और सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखने की बजाय ना, आप लोग एक ग्लास पानी पी लिया करिए। इससे शरीर एक्टिव होता है और दिन की शुरुआत अच्छी होती है।
1: लगता है अक्षय, तुमने पानी नहीं पिया, जो अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है।
0: लगता है मुझे भी
1: गर्मी लगी।
0: गर्मी लग
1: खैर,
0: गई।
1: हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप पानी तो पीजिए, साथ ही साथ थोड़ा योग, एक्सरसाइज या वॉक भी बहुत जरूरी है, उसे किया कीजिए। हर दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइजेज हमें फिर से तनाव मुक्त और एनर्जेटिक बना सकती हैं।
0: और दोस्तों, हेल्दी रूटीन का सबसे अहम हिस्सा जो है वो है हेल्दी फूड। जंक फूड जितना स्वादिष्ट लगता है ना, उतना ही वो हमें नुकसान भी देता है।
1: इसीलिए अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, दूध और वाटर बिल्कुल एफिशिएंट अमाउंट में रखिए, क्योंकि सही भोजन ही शरीर को सही ऊर्जा देता है।
0: तो नंदिनी, अब बात करते हैं दोस्तों से हम एक ऐसी आदत की जो आजकल ना सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, और वो है स्क्रीन टाइमिंग कम करना।
1: बिल्कुल भाई, घंटों मोबाइल चलाने से आंखों में या दिमाग पर दोनों पर असर आता है। कभी कभी अपने परिवार के साथ बैठकर समय बिताना, किताब पढ़ना, अपने शौक पूरे करने भी जरूरी हैं।
0: और दोस्तों, सिर्फ शरीर ही नहीं, मन का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, दूसरों की मदद करें और छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियां ढूंढें।
1: इसीलिए ये छोटी छोटी टिप्स से खुशी मिलती है और खुश रहने से आधी परेशानी अपने आप ही दूर हो जाती है।
0: तो दोस्तों, हेल्दी रूटीन कोई कठिन काम तो है नहीं, बस छोटी छोटी अच्छी आदतों को हर दिन अपनाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, बस कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इसीलिए दोस्तों, याद रखिए, स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ आप रहेंगे, स्वस्थ आपका मन रहेगा, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: आप अपना और अपने परिवार का दोस्तों रखिएगा ध्यान, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: अब चलते हैं हमारे थोड़े से ब्रेक की ओर।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
0: और भाई मिंकू, क्या हाल है भाई?
6: बस यार, चल रही है। तू बता, तेरा क्या हाल है?
0: देख, हाल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी लाइफ का ना एक ही फंडा है।
6: क्या? जो मिले उसे डंडा मारो?
0: अबे नहीं यार, डंडा क्यों मारूंगा मैं? जिंदगी चाहे कैसे भी कट रही हो, लेकिन ना ऊपर वाले ने स्क्रिप्ट बड़ी तगड़ी लिख के दी है भाई। भाई साहब, बोरी नहीं होने देती।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
1: मजा तो हमें उम्मीद है आ रहा होगा, लेकिन जोक्स के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ एक बहुत जरूरी चीज होती है म्यूजिक, जो कि आकाशवाणी की पहचान है
0: और हम लोगों का जो माइंड है वो फ्रेश भी करती है।
1: बिल्कुल, चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: हेलो हेलो दोस्तों, अब मैं और नंदनी आ पहुंचे हैं अपने स्टूडियो से बाहर। अब आप सोचेंगे क्यों, तो वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है वो है यूथ कनेक्ट।
1: जी, और कनेक्ट करने के लिए हम चलेंगे हमारे साथियों के पास। लेकिन आपको हम रिकॉल करवा देते हैं कि हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं वो है समय की सैर, हूबहू गलत है तो सही है, और अरे दीवानो मुझे पहचानो। तो हम चलेंगे पहचानने के लिए हमारे साथियों को, उनसे करेंगे गपशप और आपसे भी करवाएंगे कुछ मजेदार बातें उनकी। चलें अक्षी।
0: हाँ बिल्कुल नंदनी, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारे जो दोस्त है ना वो भी हमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं।
1: ओके देन, तो अक्षी देखो हमारी साथी मिल गई है, हम इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम।
2: मेरा नाम अनुकृति।
1: हाय अनुकृति, कैसी हैं आप पहले बताइए।
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं?
1: हम तो बहुत अच्छे हैं। ये इतनी धूप में आप अपने आप को मेंटेन कैसे करती हैं?
2: द ओजी गोंद कटीरा हेल्प्स मी अ लॉट।
1: चलिए, तो एक प्रो टिप हो गई हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए। अब हम आपसे पूछते हैं हमारे यूथ कनेक्ट में समय की सैर के अंतर्गत एक सवाल। मतलब बेसिकली आपसे हम पूछेंगे, अगर आपको अपनी लाइफ में पास्ट में फ्यूचर में जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? ओके
2: ओके,
1: अपने पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप क्या चीज है वो ऐसी जो सही करके आप प्रेजेंट में आना चाहेंगे?
2: अगर मैं पास्ट में जाने का मौका मिलता तो शायद मैं थोड़ी और नीट की तैयारी करके एक डॉक्टर बनना प्रेफर करती। बट अभी कुछ दिन पहले मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि मैं 4 साल के एक एग्रीकल्चर प्रोग्राम में हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और वो विद इन 1 वीक इट विल ऑल कम टू एन एंड। सो अभी 4 दिन पहले मुझे शायद एक रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि मैं पन्नागर कभी नहीं आना चाहती थी। बट अब जब 4 साल वो बीत गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, लेट्स लीव द पास्ट। जो हुआ मैं उसको ठीक भी नहीं करना चाहूंगी आज की डेट पे, क्योंकि आई गेस आई एम द हैप्पीएस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ।
1: देखा, लाइफ में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।
2: हाँ, जो होता है हमें उसको एक अच्छे साइन के जैसे लेके उससे आगे बढ़ जाना चाहिए
1: और सारी चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए जो भी प्रेजेंट में हो रहा हो।
2: हाँ, एंड देयर इज अ कोट लाइक आई स्टॉप विशिंग टू रीराइट माय पास्ट व्हेन आई रियलाइज इट लेट मी टू अ लाइफ दैट फील्स राइट टुडे। सो ठीक है, विद टाइम बीइंग सब कुछ हो जाता है, एंड जो हम चीजों को सीख जाते हैं करना। और अगर मैं फ्यूचर में जाने का मुझे मौका मिले तो I'll definitely see myself as a businesswoman.
1: Okay.
2: Yeah, and that too.
1: It's so empowering.
2: Yeah, that is way too important at present times.
1: ओके, थैंक यू, आपने हमसे बात की और हम आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देंगे। आपने जैसे हमारे लिसनर्स को टिप्स दिए, एक तो इतनी पॉजिटिव टिप्स दिए आपके ओजी गोंद कटीरा की और लाइफ को एक्सेप्ट करने की, तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए।
2: थैंक यू मैम।
0: तो नंदनी चलते हैं आगे और देखते हैं हमारी एक और साथी वहाँ पे खड़ी हुई है।
1: हाँ,
0: और
1: प्यारी सी दिख रही है
0: और धूप भी काफी हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो हमसे बात करने के लिए एक्साइटेड हैं।
1: इनसे पूछ लेते हैं, क्या ये बात करना चाहती है हमसे?
0: क्या आप बात करना चाहती है हमसे?
3: ऑफ कोर्स।
0: तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं आपका नाम। आपका नाम?
3: मेरा नाम अस्का है।
0: अस्का, क्या करती है आप?

0: मैं फिलहाल CSIR की तैयारी कर रही हूँ।
1: ओके दैट्स नाइस। तो उसका आपकी तैयारियों में हम थोड़ा सा बाधा डालेंगे और आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगी?
0: जी कोई बात नहीं।
1: चलिए, तो आपसे हम हमारे सेगमेंट हूबहू के अंतर्गत ये पूछना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा शख्स है जिससे आप इंस्पायर हैं, जिससे अपनी लाइफ एक्सचेंज करना चाहती हैं, कोई टीचर, आपके पेरेंट्स या कोई सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, एनीवन?
0: हाँ, एक लेक्सी अल्फ्रॉड नाम की एक लड़की है। मैं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनकी लाइफ जरूर जीना चाहूंगी,
1: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है। मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए।
1: तो जब भी आप घूमने जाया करें, आप समझ लिया कीजिए कि आप वही लड़की हैं, उसको और एंजॉय किया कीजिए।
0: जी
1: ओके, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक
0: ओके, थैंक यू।
1: यू। तो नंदनी, चलते हैं अब आगे। और धूप तो देखो बहुत तेज हो रही है, और हमारे एक और साथी आगे खड़े हुए मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। या तो वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, या वो कहीं जाने वाले हैं।
0: अक्षी पूछ लेते हैं इनके जाने से पहले, शायद हमारे इंतजार कर रहे हो। हेलो
2: हेलो मैम,
0: हेलो जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम दिव्यांक है।
0: दिव्यांग जी, क्या करते हैं आप?
2: मैं अभी जॉब कर रहा हूँ।
0: ओके, तो जॉब पे ही जाने वाले हैं आप?
2: जी, थोड़ा सा लेट हो गया,
0: कोई
2: गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है।
0: बात नहीं, 2 मिनट हम आपके लेंगे। आज हम आपसे सवाल करेंगे हमारे सेगमेंट हूबहू में, यानी कि आपको बताना है कि अगर आपको अपनी लाइफ किसी से एक्सचेंज करने का मौका मिले, शायद आपके टीचर या आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग, कोई एक्टर, पॉलिटिशियन, कोई भी जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, जिसकी आप फैंटेसाइज करते हो उसकी लाइफ, तो वो कौन होगा?
2: मैम, मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों के, जितने भी यूथ है ना, सभी के आइकन मुझे लगता है, जितने भी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, तो मेरे जो आइकन है अक्षय कुमार सर है। तो
0: जी
2: उनका जो
0: बिल्कुल
2: जीवन है ना, बहुत ही
0: जी
2: डिसिप्लिन, बहुत ही अनुशासित जीवन जीते हैं वो। सबसे अच्छी चीज मुझे उनकी क्या लगती है, वो एक तो सुबह जल्दी उठते हैं
0: जी तो
2: और बहुत ही संतुलित भोजन करते हैं,
0: हम
2: और
0: एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप साबूदाने की खिचड़ी बगैर चाय के खाते होंगे, पीते होंगे।
2: नहीं, मतलब हर चीज में एक डिसिप्लिन होना चाहिए ना खाने में, हमें जल्दी खाना
0: जी,
2: चाहिए,
0: क्योंकि
2: सुबह
0: जनरली
2: जल्दी
0: वो
2: उठना
0: खाते
2: चाहिए।
0: हैं ये सब, तो हमने कहा शायद आपने खाए हो।
2: हाँ, मैं करता हूँ ट्राई, उनको मैं कॉपी कर रहा हूँ काफी समय से, और कोशिश करता हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ। सबसे बड़ी चीज उनकी मुझे वो लगती है कि वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं,
0: जी
2: वो
0: बिल्कुल
2: उगता हुआ सूरज देखते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि ये सुबह उठना मतलब बहुत
0: पूरा
2: टफ
0: रूटीन
2: होता है।
0: सेट हो जाता है, आपके शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक भी ठीक रहती है, लेकिन
2: बिल्कुल
0: बहुत
2: बिल्कुल
0: टिपिकल होता है। चलिए,
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छी
2: मैम।
0: बात है आप कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी आपकी बातों से शायद मोटिवेट हो जाए और अक्षय कुमार जी को देखकर जल्दी उठने लगे, हेल्दी हैबिट्स अपना लें।
2: बिल्कुल मैम, धन्यवाद।
1: तो बहुत अच्छा लगा दिव्यांक आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे एक और साथी हमें मिल चुके हैं, और हमारा जो सब सेगमेंट है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, तो चलो चलते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे वो अपने आप को मतलब दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, तो बताइए सबसे पहले आपका नाम?
3: मेरा नाम आदेश है। हाँ
0: आदेश। आप आदेश देंगे तो हम सवाल करना शुरू करेंगे आपसे।
3: जी,
0: अच्छा, तो आदेश, हमारे सेगमेंट अरे दीवानो मुझे पहचानो में हम आपसे पूछेंगे कि आपकी कौन सी वो एक क्वालिटी है जो सब कहते हैं कि इस लड़के में बेस्ट है, और कौन सी एक क्वालिटी है जो आप कहते हैं कि हाय इससे दूर क्यों नहीं जाती?
3: बेस्ट क्वालिटी जो मेरे को मेरी लोगों ने अब तक बताई है, वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है। कि लाइक अगर मैं कहीं भी किसी मीटिंग में किसी से बात कर रहा हूँ, तो जो लोग आसपास रहते हैं वो मेरे को बहुत ही पोलाइटली या बहुत ही अटेंटिवली मेरी बातें सुनते हैं। मैं
0: आपका
3: लोगों को
0: नाम
3: कन्वेंस,
0: आदेश है ना, आपके नाम का असर होगा।
3: हाँ जी, तो लोग कन्वेंस बहुत इजिली हो जाते हैं मेरी बातों से। एंड मेरी बैड हैबिट ये है कि मैं खुद का ध्यान नहीं रखता, कभी भी काम को ज्यादा प्रायोरिटी करता हूँ एज कम्पेयर टू माई सेल्फ।
0: लेकिन आदेश, यहाँ पे एक मैं बात बोलूँ, अभी हमने आपको कन्विंस किया है हमारे सेगमेंट के लिए, तो आपको वो कन्विंस अच्छा लगा या नहीं?
3: अच्छा
0: अच्छा, अब आप जुड़ गए हैं, तो कोई टिप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे हेल्थ के ऊपर या कोई भी चीज?
3: हेल्थ के ऊपर सिर्फ मेरे को एक ही चीज बोलनी है कि अगर आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद को दो।
0: आप ये
3: जो
0: बात अपने
3: गलती
0: आप
3: मैं
0: से
3: कर
0: भी
3: रहा
0: अप्लाई
3: हूँ
0: करना सीखिए।
3: वो ना करें।
0: ओके, थैंक यू आदेश, आपसे बात करके अच्छा लगा।
3: थैंक यू मैम।
1: नंदनी, मुझे ना हमारे एक और साथी दिखाई दे रहे हैं, और हमारा एक सेगमेंट भी रह गया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो सेगमेंट करना चाहिए?
0: इन्हीं से पूछ लेते हैं कि हमारे साथी तैयार हैं।
4: जी बिल्कुल तैयार है।
0: तो अगर आप तैयार हैं तो हम आपको बता देते हैं कि हमारा एक सेगमेंट है, गलत है तो सही है, जिसमें हम आपसे पूछेंगे सही सवाल, लेकिन आपको ये फ्रीडम है कि आप गलत जवाब दे सकते हैं।
1: और अगर आपने सही जवाब दिया तो आप गलत हो जाएंगे।

0: ये पूछ सकते हैं आप।
1: ठीक है, तो चलिए आपसे हम पूछना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनसे हम पूछते हैं इनका नाम। आपका नाम?
0: अनूप अंथवाल।
1: अनूप जी, अब हम आपके साथ शुरू करेंगे। हमारा सेगमेंट गलत है तो सही है, जिसमें हम सही सवाल पूछेंगे, आपको गलत जवाब देने। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपका नाम क्या है?
0: मेरा नाम मोहम्मद आमिर है।
1: अच्छा, पंखा क्या करता है?
0: पंखा पसीना फेंकता है।
1: रेड लाइट रेड क्यों होती है?
0: क्योंकि वो ग्रीन नहीं होती।
1: अच्छा, SO2 का जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है?
0: अभी मेरे माइंड में आ रही थी, अब मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा।
1: ये भी ठीक है। अच्छा ये बताइए, फलों का राजा कौन होता है?
0: फलों का राजा जो सस्ता मिल जाए वो आजकल के डेट में राजा।
2: ये तो बहुत ही फनी है।
1: अच्छा एक बात बताइए, मैं हूँ नाम है, हीरो कौन था?
0: मैं तो नहीं था, बाकी बताओ।
1: 2+2×3×0 कितना होगा?
0: ये तो मैं ट्यूशन में भी नहीं कर पाया।
1: ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। अनु,
0: थैंक यू सो मच।
1: तो दोस्तों, ये तो था हमारा सेगमेंट यूथ कनेक्ट, जिसमें आई एम श्योर आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा हमारे ढेर सारे वैरायटी के साथियों से, ढेर सारे वैरायटी के हमारे बात करने वाले हमारे टॉकर से। तो आपने एंजॉय किया होगा हमारे प्रोग्राम को, और अगले हफ्ते ऐसे ही मजेदार कुछ नए साथियों से आपकी बात करवाएंगे हम यूथ कनेक्ट में। फिलहाल बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे।
2: और दोस्तों, प्रोग्राम जो है बिना म्यूजिक के तो वाकई में अधूरा रहता है, तो क्यों ना हो जाए ये चटपटा सा एक गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: जी, कोई भी टोन हो तो एक छोटा सा ब्रेक तो जरूरी होता है, चाहे म्यूजिकल हो चाहे इंफॉर्मेशन हो। खैर, हमारी बात हो रही थी भरोसे पे। तो जिंदगी में भरोसा ही सब कुछ होता है, लेकिन जब वही भरोसा एक गलती बन जाए तो बहुत तकलीफ होती है, जिस पर कोई जोर नहीं। तो ऐसी ही एक कहानी है जो आप सुन रहे हैं, सिक्का बदल गया, उसकी कड़ी तीसरी यानी एपिसोड 3 आप सुनेंगे आज। प्रस्तुति है अक्षी त्यागी की।
2: तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा शेरा का दिल बदले और एहसान के बीच टूट रहा था। हालात बेकाबू हो चुके थे और गांव में शाहनी की हवेली को लेकर साजिशें शुरू हो चुकी थीं। लेकिन शाहनी अब भी इंसानियत पर भरोसा किए बैठी थी। हेलो दोस्तों, मैं अक्षी त्यागी लेकर हाजिर हूँ कहानी के उस पार में, एपिसोड 3 राज पलट गया। आइए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। हवेली आ गई, शाहनी ने शून्य मन से डयोड़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई, हवेली खुली पड़ी है, आज शाहनी नहीं उठ पा रही। जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। शाहनी, ए शाहनी, सुनो, ट्रके आती हैं लेने। ट्रके? हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। लहा बीबी ने कहा, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया गजब। अंधेर पड़ गया। नवाब बीबी ने उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी ना सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा, मशीन की तरह नीचे उतरी पर डयोरी ना लांग सकी। कौन कौन है वहां? आज पूरा गांव खड़ा था। बेगू पटवारी धीरे से बोला, शाहनी, रब को यही मंजूर था। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। और तभी बेगो के मन में एक ही बात गुजरी,

0: सिक्का बदल गया है। तो दोस्तों, जिस हवेली पर कभी शाहनी का राज था, क्या आज वही हवेली उससे हमेशा के लिए छिनने वाली थी? शाहनी समझ चुकी थी दोस्तों, अब उससे उसका घर छिनने वाला है। लेकिन क्या वो बिना टूटे इस दर्द को सह पाएगी? शाहनी की जिंदगी में सबसे कठिन पल देखिए अगले एपिसोड में।
1: तो दोस्तों, आप मत गलती कीजिएगा, और कोई अपना आपसे रूठा है, नाराज है, तो उसे जरूर मना लीजिएगा, और आप हमसे ना रूठें इसका इंतजाम भी है हमारे पास।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: हाँ भाई, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है?
2: बस यार, दुखी हो गया हूँ मैं।
3: दुखी क्यों?
2: जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी किस्म की आजादी नहीं। पता नहीं भगवान ने क्या सोच के मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखी है।
3: देख, भगवान ने दुनिया में ना हर आदमी को आजाद और समझदार बनाकर भेजा है।
2: था तो मैं भी,
3: था तो तू भी। आजादी तूने अपनी खुद छीनी है। तूने शादी कर ली तो इसमें भगवान की थोड़ी ना गलती है।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: मजा तो आ रहा होगा। साथ ही दोस्तों, आपको याद दिला दें, हमने आपसे सवाल पूछा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, जिसका सही जवाब है हेरोड डोमर मॉडल। और जो सही जवाब देने वाले हमारे साथी हैं
5: वो है दिग्दर्शन गौर, मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय ढींगिया, राजवीर सिंह यादव, बबलेश पवार।
4: जी, और आप लोग हमारे प्रोग्राम को इतना सुनते हैं, इतना प्यार करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमारा जो प्रोग्राम है न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए सुन सकते हैं। आप हमें लेटर लिख सकते हैं, खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, 246763 हमारा पिन कोड है। और साथ ही हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं।
5: आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं।
4: आप ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और इसी के साथ दीजिए अपनी साथी नंदिनी
5: और मुझे अक्षी त्यागी को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: युवा श्रोता अभी सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय संध्या के 6 बजे हैं, 6:05 हुए हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन
1: और आलोक कुमार गंगाराम की
0: राम राम।
1: और किसान भाइयों क्या हो रहा भैया?
0: बस सब ठीक हैं हमारे किसान भाई। और तम बताओ भैया, थारे कैसे हालचाल हैं?
2: देखो भाई, बात यो है, आजकल है गर्मियों का टाइम।
0: हाँ,
2: और गर्मी में भैया देखो कोई भी काम हो थोड़ी सी दिक्कत सी तो रह वही है।
0: बिल्कुल भैया। हाँ। क्योंकि देखो गर्मी के मौसम में भाई यूं कह रहे हैं कि अगर हमें खेती बाड़ी सही करनी, अपने पशु को सही रखना, तो भैया सबसे पहले हमें खुद का ध्यान रखना।
2: बिल्कुल सही बात आपने की। देखो भाई, बात यू है, जब भी आप अपने खेतों पर जावा तो भैया सिर को ढक कर जावा।
0: बिल्कुल।
2: कोई भी कपड़ा होना चाहिए, पैर पर भैया मजबूत आपका जूता या चप्पल होना चाहिए। और भाई सबसे जरूरी यो है कि आप पानी की बोतल ले जाना।
0: बिल्कुल भैया।
2: और हाथ में भैया एक थोड़ा सा बचाव के लिए डंडा हो, क्योंकि आजकल ऐसे में क्या होता है कि खेत जो है हमारे, ऐसे गन्ना भी हमारा कट गया, कोई बड़ी फसल खड़ी नहीं है। और भाई हमारे किसान भाई ने जो चरी बाजरा बो रखा वो भी उतनी बड़े ऊंचा नहीं है।
0: बिल्कुल।
2: तो जंगली जानवरों का भी भय रहता।
0: बिल्कुल भैया, जंगली जानवरों के भय से हमें भैया ठीक ठाक रहना, अपने साथ भैया डंडा रखना, तम कह ही रहे हो, और अपने साथ भैया पानी की बोतल अगर रखेंगे तो भैया देखो गर्मी के मौसम में हमारा तो बचाव हो जाएगा।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी ये भाई खेती किसानी की जहां तक बात चल रही है, तो भाई मुख्य बात तो ये हो कि सिंचाई की जरूरत पड़ा आजकल।
0: बिल्कुल भैया, देखो जब हम पानी, हमें बहुत ज्यादा प्यास लगे तो भैया ऐसी हमारी फसलों को लगे, क्योंकि भैया देखो नमी हमारे पौधों के लिए जरूरी है।
2: बिल्कुल।
0: क्योंकि जो पोषक तत्व हैं भैया वो नमी के माध्यम से ही पौधे के हर अंग में पहुंचते हैं।
2: हाँ सही बात कह रहे हो। देखो भाई ये प्रकृति जो है, यो हमने तो बनाई नहीं है, ये भैया प्रकृति इसको तैयार करा।
0: हाँ।
2: तो वही भैया गर्मी भी करती है, सर्दी भी करती है, बरसात भी करती है, जाड़े भी करती है। तो भैया ये सब चीज जरूरी भी है।
0: बिल्कुल।
2: जब इन सब चीजों से तपन हो जाती है तभी कोई चीज बलिष्ठ होती है।

0: बिल्कुल, यानी
1: इस टाइम जो गर्मी हो रही है ना, यो फसल के लिए ठीक भी भैया?
0: बिल्कुल, क्योंकि भैया देखो यूं कह रहे हैं कि देखो जब तक हमें हर मौसम का पता नहीं लगने का, यानी कि गर्मी का, सर्दी का, बरसात का, तो भैया तब तक यो कैसे पता लगेगा कि हमारी फसल ठीक होगी या ना होने की।
1: बिल्कुल सही बात की। और आजकल भैया जो गर्मी है उसमें जो हमने गेहूं खाली हुई थी ना जमीन,
0: बिल्कुल
1: वो अगर जोत दी ना तो गर्मी की जुताई उसके लिए जबरदस्त काम करती है।
0: बिल्कुल भैया सही कह रहे हो। और भैया देखो ये समय भी वही चल रहा है कि इस समय अगर हमारे किसान भाई गहरी जुताई करेंगे गर्मियों की, तो भैया उसमें जो खरपतवारों के बीज हैं, जो उसमें कीटों के अंडे हैं, भैया वो सीधे धूप में के संपर्क में आने से भैया नष्ट हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी मिट्टी उखड़ जाती है ना नीचे से गहरी जुताई करने के बाद, तो वो जिस टाइम गर्मी से तपती है तो उसमें पानी के सोखने की क्षमता बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो भैया हमारी भूमि में जितनी पानी को सोखने की ताकत होगी उतनी ही चीज वो बलिष्ठ होकर निकलेगी, उतनी ही जो है उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ेगी। तो ये इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल। और भैया देखो आर्थिक दृष्टिकोण देखें तो भैया आने वाली जो हमारे किसान भाई फसल लगावेंगे उसमें कम खरपतवार होंगे, कम उन्हें कीटनाशक डालना पड़ेगा और भैया पानी भी कम लगेगा हमारी भूमि में।
1: ये सब बात तो ठीक है, लेकिन आप एक बात भूल रहे हो।
0: वो क्या भैया?
1: वो यो कि आज बुधवार है।
0: तो भैया आज कुछ खास बात है क्या? बुधवार तो है ही
1: भाई। देखो बुधवार को फसल अवशेष प्रबंधन की रेडियो कृषि पाठशाला होती है। और भाई इस पाठशाला के जरिए हमारी कोशिश ये रही है कि भाई हमारे किसान भाई फसल के अवशेष जो भी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर जलामना।
0: ठीक कह रहे हैं भैया तुम, क्योंकि देखो भैया फसल के अवशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। मैं
1: बिल्कुल, जिन्हें हम भैया बेकार की चीज समझ लेते हैं, और मुख्य बात ये निकल के आई कि वे ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनमें भैया कार्बनिक तत्व होते हैं, उनमें ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, तो वो हमारी जमीन में मिलने चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भाई फसल अवशेष प्रबंधन की हमारी श्रृंखला जो लंबे समय से चली आ रही थी उसके हम आखिरी पड़ाव की तरफ आ गए।
0: ठीक है भैया।
1: तो भैया आज जो पाठ आप सुनेंगे वो भैया फसल अवशेष प्रबंधन का ये आखिरी पाठ सुनेंगे।
0: ठीक है भैया। और भैया इसके प्रायोजक हमारे किसान भाई जान नहीं है, कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर के सौजन्य से हमारे किसान भाई सुनेंगे इसे।
1: बिल्कुल। तो भैया आइए सुनते हैं इसकी ये आखिरी कड़ी।
0: ठीक।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
3: कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर चित्तौड़ा,
2: जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ द्वारा संचालित है।

0: स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला में, जो कि हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर के सौजन्य से सुन रहे हैं। और आज हमारे किसान भाई सुन रहे हैं इसका भाग नंबर 15। और इस रेडियो कृषि पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया हिमांशु रंजन।
1: और मैं हूं आपका भैया अंकित कुमार।
0: हम दोनों की आप सभी को राम
1: राम राम।
0: राम। तो किसान भाइयों, देखो आप जानते ही हैं कि आप बुधवार को सुनते हैं यो प्रायोजित कार्यक्रम फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला।
1: हाँ भैया,
0: और इस प्रायोजित कार्यक्रम के माध्यम से हम किसान भाइयों को जानकारी दिलाते रहते हैं कि किस प्रकार से फसल अवशेष का प्रबंधन करना है।
1: बिल्कुल भैया।
0: और देखो अंकित भैया,
1: हाँ
0: जहां
1: भैया।
0: तक बात फसल अवशेष की आती है, तो भैया फसल का अवशेष प्रबंधन हमें अच्छे से करना है।
1: हाँ
0: और किसान भाई निरंतर इस पाठशाला के माध्यम से सुन रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार से फसल के अवशेषों का प्रबंधन करना है,
1: बिल्कुल भैया।
0: क्योंकि भैया जब हम फसल के अवशेषों को खेत में जलाते हैं तो जो भूमि की ऊपरी सतह है ना
1: हाँ
0: भैया,
1: हाँ
0: भैया वो जल के नष्ट हो जाती है।
1: बिल्कुल भैया।
0: और भैया जब फसल के अवशेषों को खेत में जलाएंगे और जो ऊपरी चमड़ी फसल की या ऊपरी परत है वो जल के नष्ट हो जाएगी, तो भैया यो समझ लो जो हमारी भूमि है ना भैया वो बंजर होती चली जाएगी।
1: हाँ भैया, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक बताते हैं ना, जो ऊपरी सतह है हमारी वो 400 डिग्री सेल्सियस तक जल जाती है।
0: अच्छा भैया, और भाई एक बात और, जो उसमें लाभदायक जीवाणु ना भैया, भैया वो भी जल के नष्ट हो जाएं।
1: हाँ भैया।
0: और भाई देखो किसान भाई अच्छे से समझ गए होंगे कि जो फसल के अवशेष हैं उनका प्रबंधन करना कितना जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: भैया।
0: भैया देखो अब आगे को जब हमारे खेत खाली हो रहे हैं,
1: हाँ
0: आगे को हम दूसरी फसल बोएंगे, तो भैया हम यूं ना सोचे कि हम जल्दी से भैया खेत में जो फसल के अवशेष में आग लगा दें
1: हाँ
0: और जल्दी से अपनी फसल बो दें। भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना हमें, क्योंकि भैया जब तक हम फसल के अवशेषों का प्रबंधन नहीं करने गए तब तक जो हम आगे को फसल बोएंगे ना,
1: हाँ
0: तो भैया उसमें जो उर्वरक की मात्रा ना भैया वो बढ़ती चली जाएगी,
1: बिल्कुल भैया।
0: क्योंकि भैया जो जीवांश पदार्थ की मात्रा है वो खेत में कम होते जा रही है।
1: हाँ
0: और भैया उन्हें बढ़ाने का क्या उपाय है भला, उन्हें बढ़ाने का ये उपाय है कि जो फसल के अवशेष है ना भैया उन्हें मिट्टी में मिला दो काट छाट के।
1: बिल्कुल भैया। और फायदा एक,
0: हाँ
1: हमारा पर्यावरण भी बचेगा।
0: अच्छा भैया, बिल्कुल भैया ये तो बात तुमने बिल्कुल पते की कह दी। तो भाई देखो हम तो अपने किसान भाइयों से यही कहेंगे कि भैया फसल के अवशेषों का प्रबंधन कर लो।
1: बिल्कुल।
0: तो भला भैया आज जिस विषय पर हम किसान भाइयों को जानकारी दिला रहे हैं उसका जरा विषय तो किसान भाइयों को बता दो।
1: बिल्कुल भैया, हम जानकारी दिलवा रहे हैं आज फसल अवशेष प्रबंधन में बायो पेस्टिसाइड का महत्व।
0: अच्छा भैया, और
1: हाँ,
0: भला इस विषय पर जानकारी कौन दे रहे हैं?
1: इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नवीन चंद्रा
0: अच्छा भैया,
1: जी।
0: और उनसे बातचीत कौन कर रहे हैं भला?
1: उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया प्रमोद सिंह।
0: तो अंकित भैया सुन लेते हैं उनसे की गई हो बातचीत।
1: बिल्कुल भैया।
2: किसान भाइयों नमस्कार, फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए इस कार्यक्रम में एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हो गए हैं। और आज जो हम आपको जानकारी दिलाने वाले हैं उस जानकारी का विषय रहेगा फसल अवशेष प्रबंधन में बायो पेस्टिसाइड का महत्व। ये बहुत ही बढ़िया ऐसा विषय है जिसको सुनकर आप अपनी खेतीबाड़ी में बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर के डॉक्टर नवीन चंद्र जी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन की, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो फसल अवशेष प्रबंधन है ये है क्या?
3: जी, फसल अवशेष प्रबंधन ये है जो भी हम किसान भाई ये करते हैं, अब मशीनरी युग है, इसमें जो फसल के अवशेष हैं, जैसे मैंने गेहूं बोया, गेहूं बोने के बाद में गेहूं को तो थ्रेसिंग करके निकाल लिया, या कंबाइन मशीन चल रही हैं जिसके द्वारा हम केवल गेहूं को लेते हैं, बाद बाकी जो हमारा ठूट एक्स्ट्रा जो बच जाता है उसको किसान भाई ऐसे ही छोड़ देते हैं या तो उसको जला देते हैं, जिससे बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ती जा रही है और इससे बहुत से रोग और बहुत से समस्याएं पैदा हो रही हैं। इससे फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे ठूट या खरपतवार जो भी हैं उनको खेत में इस तरीके से मिलाएं कि वो डिकम्पोज हो जाएं और अगली फसल के लिए वो न्यूट्रिएंट दें और जिससे हमारे वातावरण पर कोई दूषित प्रभाव ना पड़े।
2: जी, बहुत अच्छी आपने ये बात बताई है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो फसल अवशेष का प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं। आपने बहुत कम शब्दों में ये जानकारी दी है। और देखिए, जो हमारा आज का विषय है वो है फसल अवशेष प्रबंधन में बायो पेस्टिसाइड का महत्व। अब हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो खेतों में अंधाधुंध तरीके से रसायनों का इस्तेमाल करते चले जाते हैं, इससे वातावरण भी प्रदूषित होता है, हमारी जो खेतीबाड़ी की जो जमीन है जिस पर हम अपनी फसलें उगाते हैं वो जमीन भी हमारी खराब होती चली जा रही है। तो इस बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप?
3: इस बारे में ये कहेंगे कि जो फसल अवशेष प्रबंधन है, जो अभी तक हम केमिकल रसायन थे उनका प्रयोग करते थे, तो इसके बाद में जिससे हमारे जमीन का वातावरण दूषित हो रहा था और उनसे जो है हमारे जो ह्यूमन बीइंग है और जो जानवर हैं इनमें सब में विपरीत असर पड़ता था, क्योंकि उनके अवशेष जाते थे वो हमारे किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर में किसी डिपॉजिट होते थे जिसका मूल कारण था कैंसर, डायबिटीज और बहुत से रोग पैदा करते थे। तो इन सब से बचने के लिए, क्योंकि जब हम फसल अवशेष प्रबंधन करते हैं तो कुछ जमीन जनित कीट हैं और भी रोग हैं, तो उनके कुछ बायो पेस्टिसाइड हैं जो कि जीवित तरीके से होते हैं, उनको मित्र फफूंदी या मित्र कीट कहते हैं। अच्छा। उनके तरीके से हम उनको रोकथाम करते हैं।
2: देखिए डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर अभी बात की है जमीन जनित कीट की, तो ये जो जमीन जनित कीट की हम बात करते हैं ये हैं क्या, कौन कौन से हैं?
3: ये जमीन जनित कीट मुख्यतः दीमक, ये एक परिवार बना के रहता है और वो क्या करता है कि हमारे जो जहाँ पे जुताई नहीं होती है वहाँ पे अपना बिल बना के रहते हैं। और ये जैसे ही इनको रात में खेत में जाते हैं, जैसे हमारा सड़ा जो बिना कच्चा गोबर पड़ा रहता है या खरपतवार या गेहूं के ठूंठ या गन्ने की पत्तियाँ, इनमें जाके अपना अंडे देते हैं, उनको खाते हैं और इनको नष्ट करते हैं।
2: अच्छा।
3: इसके अलावा एक कीट होता है जिसको हम कहते हैं व्हाइट ग्रब, सफेद गिडार, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को बहुतायत मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। कहीं कहीं तो पूरे पूरे खेत इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ये मुख्यतः दो कीट हैं, दीमक और सफेद गिडार।
2: तो जो हम फसल के अवशेष की बात करते हैं, उसके प्रबंधन की बात करते हैं, तो इन कीटों पर किस तरीके से हम अपनी फसलों को बचाने के लिए इनका प्रबंधन कर सकते हैं?
3: जी, सबसे पहले तो हम इसकी जो है जो भी हमारा फसल अवशेष है इसको बहुत से यंत्र चले हुए हैं उनके माध्यम से हम इनको बिल्कुल काट के मिट्टी में मिला देते हैं। इसके बाद में पानी लगा के उसको जो है हम पूरा सड़ा देते हैं तो उससे कुछ हद तक नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड जैसे ब्यूवेरिया वेसियाना पाउडर होता है उसको जो है उसकी मदद से हम खेत में डाल के और ये जो है जमीन उसमें कीड़े के अंदर जाके उसके अंदर फफूंदी जनित रोग पैदा करता है और उससे जो है नेचुरली कीड़े की मृत्यु हो जाती है। इससे कोई भी हमारा जो है वातावरण में दूषित प्रभाव नहीं पड़ता है और ना तो हमारा कोई हमारे मनुष्य के जीवन में कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता इससे और इनकी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं।
2: अच्छा, तो देखिए हम इस तरीके से अगर थोड़ा सा ध्यान रखें और बायो पेस्टिसाइड की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी बायो एजेंट की बात भी आपने करी है, तो इनको किस तरीके से, जिन कीटों की हम बात कर रहे हैं या फसल अवशेष के प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है डॉक्टर साहब, इस बारे में क्या कहेंगे आप?
3: इससे नियंत्रण बहुत अच्छा तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम केवल दीमक या सफेद गिडार की बात करें तो हमारे पास दो तरीके की फफूंदी होती हैं। एक तो हमारी सत्र फफूंदी, तो इनकी मात्रा लगभग 75% ऐसी फफूंदी हैं फंजाई जो कि हमारे रोगों को पैदा करती हैं। ठीक है, उन्हीं में से कुछ हमने मित्र फफूंदी कलेक्ट की हैं तो वो जाके कीड़े के अंदर जाने पे जब वो किसी भी चीज को ट्रीटेड चीज को खाते हैं तो उनके अंदर वो फफूंदी के तंतु जिसको माइसिलियम कहते हैं उनके अंदर ग्रो होता है और उसके बाद में धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है।
2: जी,
3: तो इसमें तो कुछ तो कीड़ों के लिए हो गया। इसके अलावा जो हमारे लगभग जो फसलों में 50-65% बीमारियां हैं उनका मुख्य कारण है फफूंदी जनित।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: तो उन फफूंदी जनित रोगों के

0: रख देते हैं, जो हमारी मित्र फफूंदी है वो गोबर की खाद में उसका संख्या और बढ़ जाती है, फिर उसको हम खेत में डाल देते हैं तो उस जिसमें हमारी मिट्टी में जो भी हमारे फफूंदी हैं, सत्र फफूंदी, उनको वो ऑटोमेटिक नष्ट कर देता है।
1: अच्छा,
0: ठीक है। इसके अलावा यदि कहीं वायु द्वारा यदि रोग आ गए हैं, जैसे आलू में झुलसा रोग है या हमारा गन्ने में पोका बोइंग रोग है, तो इनको हम स्प्रे के माध्यम से हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं।
1: जैसे आपने भी इसके नियंत्रण की बात बताई है और आपने बताया कि हमें चाहे वो जमीन जनित रोग हो या कीट हो या कुछ भी अगर बीमारी हमारी फसलों को आ रही है और इन बायोपेस्टिसाइड्स का हमें इस्तेमाल करना है, तो क्या कुछ सावधानियां भी हमें इसमें बरतनी होंगी डॉक्टर साहब?
0: इसमें ऐसी कोई सावधानियां नहीं है, क्योंकि ये मित्र फफूंदी है, इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग पे या कोई हमारे पशुओं पे किसी तरीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पूर्णतः सुरक्षित हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉक्सिन उत्पन्न करें, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या हमारी फफूंदी जनित जो भी है।
1: जी जी जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर हमारे किसान भाई अपनी फसलों के अवशेषों का ध्यान रखें और उसको अपने खेतों में ही अगर वो इस्तेमाल करने लगे तो देखिए इससे हमारी फसलों को तो लाभ होगा ही होगा, खेतों को भी लाभ होगा और जो हमारा वातावरण है उसको भी लाभ होगा। अब हम बात कर रहे हैं बायोपेस्टिसाइड की। अब देखिए डॉक्टर साहब, इस्तेमाल तो हमारे किसान भाई करते ही हैं और ज्यादातर वो रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो रसायनों का इस्तेमाल भी कम करने ही लगे हैं क्योंकि जो वैज्ञानिक जानकारियां हैं, जो हमारे कृषि के वैज्ञानिक हैं जो जानकारी देते हैं, उनका लाभ हमारे किसान भाई उठाते ही हैं। बात अगर की जाए अच्छी तरीके से जुताई करने की, तो क्या इससे भी कीट और रोग के प्रबंधन पर कुछ असर पड़ता है?
0: हाँ जी, जुताई का सबसे, जैसे हम किसानों को बताते हैं कि गर्मी की जुताई यदि हम कर दें 15 दिन के अंतराल पर, दो जुताइयां कर दें, तो क्या होता है सूर्य की रोशनी से ये एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे कीट हैं, कीट में लगभग चार अवस्थाएं, 3 से 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो ये कहीं न कहीं हमारे फसल के अवशेष में रहेंगे या जमीन में रहेंगे या वातावरण में कहीं पे भी रहेंगे। तो यदि हमारी जमीन में है, क्योंकि अंडे, तो इनमें जो जुताई करने से कुछ तो सूर्य की रोशनी से मरते हैं और कुछ जो है पीछे जो हमारी नेचुरल जो बर्ड्स हैं, चिड़ियां हैं, चिड़ियां चलने से उनको दिखाई देता है कि कहाँ पे अंडा है, कहाँ पे लार्वा है, कहाँ उनका प्यूपा है, तो वो उनको चुक चुक के वो उनको लगभग हमारी 50% समस्या केवल जुताई से ही खत्म हो जाती है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो जुताई करने का कोई समय होगा गर्मी की जुताई जैसे कि विशेष रूप से मानी जाती है, या हमारे किसान भाई जब अपने खेतों में जुताई करने के लिए जाएंगे तो वो किस समय करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी वो अपनाएंगे, इस बारे में कुछ जानकारी देंगे किसान भाइयों को?
0: जैसे हम 15 मई से 15 जून तक
1: जी
0: ये 2-3 जुताई करते हैं, तो इस समय टेम्परेचर लगभग 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उसके बाद में जुताई करने में है कि जुताई करने से हम जुताई करने के बाद में पाटा नहीं लगाते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने से जो भी धूप लगती है धूप, और उसके बाद में वो पीछे से जो चिड़ियां चलती हैं उनसे कुछ ये सब खत्म होते हैं, केवल कीट और रोग के जो फफूंदी जनित रोग हैं या बैक्टीरिया जनित रोग हैं ये भी उससे खत्म होते हैं। इसके साथ ही साथ जुताई में सबसे बड़ा जो है हमारा हिडन एक चीज है खरपतवार, जिससे हमारा न्यूट्रिएंट खींचते हैं, खरपतवार के बीज लगभग पूरे तरीके से समाप्त हो जाते हैं
1: जी।
0: अगली फसल में खरपतवार के होने के चांस नहीं रहते हैं गर्मी की जुताई करने से।
1: तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कब उनको जुताई करनी है, किस प्रकार से उनको जुताई करनी है और कैसे अपनी फसलों की सुरक्षा उनको करनी है। अब डॉक्टर साहब, जब हम जैव उर्वरकों की आज बात कर ही रहे हैं
0: जी,
1: तो इसमें भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा ये होता है कि ये जैव उर्वरक डालने से जो है हमारी फसल को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है या अच्छा लाभ नहीं होगा, इसमें हमारी लागत ज्यादा आ जाएगी। जैसे कि दलहनी फसलों की अगर हम बात करें या दूसरी किसी फसल की बात करें, तो ये जो भ्रम है हमारे किसान भाइयों का, इसके लिए क्या कहेंगे आप?
0: जी, इसके लिए यही कहेंगे कि किसान को केवल एक विश्वास करना चाहिए, क्योंकि किसान एक बार जैव उर्वरक या जैव पेस्टिसाइड प्रयोग करता है, उसके बाद में 2 बार वो केमिकल डाल देता है, तो जितना फायदा होता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो यदि जैव की तरफ जाएं तो जैव की तरफ से ही फायदा होगा, धीरे धीरे फायदा होगा, लेकिन यदि हम, क्योंकि वो जीवित पदार्थ हैं, इसके बाद में यदि हमने उनकी संख्या को बढ़ाया है, इसके बाद में यदि हम कोई केमिकल पेस्टिसाइड या कुछ भी डालते हैं तो उनकी संख्या को कम कर देता है।
1: जी जी,
0: तो यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि एक बार जो हमारा कोई जो नेचुरल है इनमीज है उसको मारने के लिए हमने एक बार यूज किया है तो उनकी संख्या हम बढ़ा के ले गए वहां तक, ठीक है, उसके बाद अगली बार हमने उसमें कर दिया तो जो जो हमारे मित्र कीट हैं या मित्र फफूंदी

0: वो हमारे मर जाते हैं, तो अगले साल में उनका जो गुणन होता है वो नहीं हो पाता है, इस वजह से हम वहां पे फेल हो जाते हैं।
1: जी। तो कुल मिलाकर बात ये सामने आती है डॉक्टर साहब कि अगर हमारे किसान भाई थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को बदलें और
0: जी
1: अपनी खेती करने के नजरिए को अगर वो बदल दें, तो हम समझते हैं कि उनको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा, हमारा वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा जिससे कि
0: हाँ
1: हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और हम एकदम स्वस्थ भी रहेंगे।
0: जी
1: बस जरूरत है थोड़ा सा अपने आप को जागरूक करने की और ये समझने की कि हमें किस प्रकार से अपने खेतों से अच्छा उत्पादन लेना है, रसायन मुक्त खेती करनी है।
0: जी
1: ये बात अगर हम समझ गए तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। फसल अवशेष के प्रबंधन की बात आती है तो वो भी हम स्वतः ही अगर जागरूक होंगे तो कर ही लेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को दी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो किसान भाइयों, अभी आपने सुनी ये जानकारी जिसका विषय था फसल अवशेष प्रबंधन में बायो पेस्टिसाइड का महत्व, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नवीन चंद्रा। तो देखो अंकित भैया,
1: हाँ
2: डॉक्टर साहब
1: भैया।
2: ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। भाई डॉक्टर साहब ने बताया कि फसल के अवशेषों में जो है ना बायो पेस्टिसाइड का कितना महत्व है,
1: बिल्कुल भैया।
2: और भाई हमारे किसान भाई भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे इस बात को, और भाई हमने तो इस जानकारी से बहुत लाभ लिया
1: हाँ भैया,
2: और हमारे किसान भाई भी ले रहे होंगे।
1: बिल्कुल भैया।
2: भाई जब तक हम फसल के अवशेषों का प्रबंधन सही से नहीं करने गए ना, तो यो मान लो कि हमारी जो भूमि की उपजाऊ क्षमता ना भैया वो नष्ट होती चली जाएगी।
1: बिल्कुल भैया, और लागत भी ज्यादा आवेगी।
2: बिल्कुल भैया, लागत ज्यादा आवेगी, और भैया जब लागत ज्यादा आएगी तो किसानों का नुकसान होगा।
1: हाँ
2: तो भाई हमें फसल के अवशेषों का सही से प्रबंधन करना।
1: बिल्कुल।
2: तो अंकित भैया देखो, कुल मिला के बात यो सामने आई है कि अगर हम फसल के अवशेषों का सही से प्रबंधन कर देंगे तो भैया हो जाएगा हमारी मिट्टी को नमन, और सही मायने में हो जाएगा फसल
1: फसल अवशेष
2: अवशेष प्रबंधन।
1: प्रबंधन।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
1: कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर चित्तौड़ा,
0: जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ द्वारा संचालित है।
2: अभी आपने सुनी फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला, जिसके प्रायोजक थे कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर। और आलोक भैया, देखो कितनी अच्छी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने आज सभी किसान भाइयों को दी।
3: बिल्कुल, देखो भाई, बात यूं निकल के आई, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं कि हमें किसी भी तरीके से फसल के अवशेषों को जलाना नहीं है।
2: बिल्कुल भैया, उन्हें काट छाट कर अगर भैया मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती चली जाएगी।
3: भाई देखो, वैसे तो हमारी ये जो पाठशाला चल रही थी,
2: हाँ हाँ,
3: वो आज समाप्त होती है चित्तौड़ा वाली।
2: जी जी,
3: लेकिन भैया हमारे मन में जो विचार आए वो हमारे सदा बाहर रहने चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: यानी कि हमारे फसल के अवशेष कभी भी हम, चाहे भैया वो गन्ने की सूखी पत्ती हो, जड़ हो, या गेहूं की जड़ हो, उसके नालवा हो
2: जी,
3: या भैया धान की जड़ हो या उसकी पुराल हो, किसी भी दशा में कोई भी अवशेष हो फसल का, उसको हमें जलाना नहीं चाहिए।
2: बिल्कुल भैया, नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि देखो भैया, जब तक हम, जब से बीज को बोए और जब तक भैया फसल पक के तैयार हो, तो भैया उसमें हम कुछ पोषक तत्व देते हैं, तो भैया वो पोषक तत्व फसल के अवशेषों में भी रहते हैं।
3: बिल्कुल,
2: है ना, यो बात हमें भैया जाननी पड़ेगी। और भैया, खेत जल्दी खाली करने चक्कर में अपने फसल को जो अवशेष है उसको आग ना लगा मैं भैया।
3: बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई फसल अवशेष प्रबंधन।

0: अब कहो तो सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: ठीक है भैया।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: AIR at 90.
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
4: तो अभी हमारे किसान भाइयों ने सुने कुछ ये जरूरी संदेश।
5: बिल्कुल। और भाई अब कुछ खेती किसानी की बात हो जाए।
4: ठीक है भैया, बिल्कुल। और देखो आलोक भैया, अभी हमारे किसान भाइयों के खेत खाली हैं।
5: ठीक।
4: और जैसे कि भैया हम कार्यक्रम के शुरुआत में बात कर रहे थे कि किसान भाई इस समय भैया अपनी अगली फसल बोने के लिए भैया खेत की तैयारी करते हैं।
5: बिल्कुल।
4: और भैया जहां तक बात भैया हमें अपनी भूमि की उर्वरा क्षमता बनाए रखने की है, तो भैया अगर हम सनई ढेंचा को अपने खेत में इस्तेमाल करें, यानी कि उसे भैया हम बोमे और बाद में भैया उसे मिट्टी में मिला दे, तो कैसा रहेगा भैया?
5: देखो बात आपने सनई ढेंचा की करी है, तो सबसे पहले तो भैया हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस समय सनई ढेंचा जो है वो भैया अनुदान पे दिया जा रहा।
4: बिल्कुल।
5: तो उसके लिए जिन हमारे किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा, तो वे जो चुनिंदा किसान है उन्हें भैया उचित जो उन्हें जो है लाभ मिल गया है।
4: बिल्कुल।
5: यानी कि छूट मिल रही है दाम में। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि छूट का फायदा उठा के जो है सनई ढेंचा खरीद लें और भैया बो दें।
4: बिल्कुल।
5: अब बात यू आ रही है कि सनई ढेंचा बोने से फायदा क्या होगा, ही मुख्य बात है।
4: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
5: तो भाई देखो जितनी भी हरी खाद वाली फसलें हैं,
4: हाँ,
5: चाहे सनई हो, ढेंचा हो, लोबिया हो, मूंग हो, अन्य चीजें हो, तो भैया देखो इनकी कई खासियतें होती।
4: अच्छा भैया।
5: हाँ, एक तो ये कि कोई भी हरी चीज जब कार्बनिक तत्व वाली चीज मिट्टी में मिलेगी, जैसे इन्हें जो है ये अच्छे बड़े हो जाएंगे,
4: हाँ,
5: और उसे जो काट के और हैरो से या रूटावेटर से जमीन में मिलाएंगे, तो बहुत सारे कार्बनिक तत्व हमारी भूमि में आएंगे।
4: ठीक है भैया।
5: तो भैया हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी।
4: बिल्कुल।
5: दूसरी ये है कि भाई अगर हम दलहनी फसलों को हम हरी फसल के हरे खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की शक्ति बढ़ जाती है।
4: बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि भैया इनकी जड़ों में जो है राइजोबियम जीवाणु नाम का भैया पाया जाता है।
5: ठीक ठीक ठीक।
4: तो भैया ये क्या काम करता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, स्वतंत्र नाइट्रोजन, भैया उसको ग्रहण करता है।
5: बिल्कुल।
4: और जब भैया हमारी फसल बड़ी हो जावे, तो हमारे किसान भाई इसे भैया अपनी मिट्टी में मिला देंगे।
5: ठीक।
4: तो उनकी जो एक तो नाइट्रोजन की भैया पूर्ति हो जाएगी।
5: ठीक
4: है ना। तो एक तो बाहर से जो हमारे किसान भाई उर्वरक डालते हैं तो वो कम हो जाएंगे। दूसरी भैया बात ये होगी कि जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वो तो बढ़ी जाएगी।
5: ठीक।
4: साथ ही

0: उसकी पानी ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी।
1: सही बात आपने की। तो भाई देखो, बात यू है, अब हमारे किसान भाई पशुपालन भी कम कर रहे हैं, तो गोबर ही खाद तो उतनी मिल नहीं रही, दूसरे जब गोबर नहीं मिला तो केचुए खाद में दिक्कत आ रही।
0: बिल्कुल।
1: तो अब हमारे पास हरी खाद ही एकमात्र उपयोग

0: बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन भाई हम एक बात चलते चलते ये भी जरूर कहेंगे कि अगर हमारे किसान भाइयों को ढैंचा सनई भी नहीं बोने का टाइम मिल गया, कुछ सारी परिस्थितियां हो सकती हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो भैया आप अपनी खेत की गहरी जुताई करके जरूर छोड़ दें।
1: बिल्कुल भैया, गहरी जुताई करके छोड़ दें मैं। और भैया अगर आपके पास उपलब्धता है तो भैया देसी जो गोबर का खाद है ना,
0: हाँ,
1: वो अगर डाल देंगे खेतों में तो वैसी भैया खेतों की जान बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो बातें बतेरी हो गई और हमारे किसान भाई इंतजार में होंगे कि भाई हम तो सूख गए कुछ मनोरंजन की बात हो ही नहीं रही।
1: हाँ
0: तो कहो तो सुनवा देते हैं एक बढ़िया सी रागनी।
1: बिल्कुल भैया, ठीक है।

0: तो किसान भाइयों ने भैया ये रागनी सुनी सेठपाल आर्य और साथियों की आवाज में, और हिमांशु भाई हमें उम्मीद है कि भरपूर मनोरंजन इससे होया होगा।
1: बिल्कुल भैया, मारा तो भैया जी, भैया प्रसन्न हो गया और हमारे

0: किसान भाइयों का भी हो गया होगा भैया।
1: बिल्कुल, अब देखो भाई किसान भाई एक चीज के इंतजार में होंगे।
0: वो क्या भैया?
1: और वो ये कि भैया मौसम की क्या जानकारी होगी।
0: बिल्कुल भैया, तो भैया जल्दी से पोटली खोल लो, मौसम की चिट्ठी निकाल लो इसमें से।
1: बिल्कुल, तो भैया जो चिट्ठी हमारे पास है यू आई है ग्रामीण मौसम सेवा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से।
0: अच्छा भैया,
1: तो भैया इनके अनुसार आने वाली 24 तारीख तक मौसम भैया ऐसे ही बना रहेगा, यानी कि तापमान जो है 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
0: अच्छा भैया,
1: और भाई इस गर्मी भरे वाले मौसम में हम क्या क्या काम कर सके, तो भैया ये वैज्ञानिकों ने हमें कुछ सलाह दी है।
0: अच्छा भैया,
1: तो इनके अनुसार भाई हम बात अगर पशुओं से करें तो भैया पशुओं को जो है भैया नहलाते रहें और भैया उनको जो है बार बार पानी पिलाते रहें।
0: बिल्कुल,
1: और इस तरह के चारे का प्रबंधन करें कि उसमें पानी की मात्रा हो,
0: पानी की मात्रा हो, क्योंकि हाँ। भैया देखो अगर हमारा जो चारा है पौष्टिक होगा तो भैया हमारा पशु स्वस्थ बना रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: और उसका दूध उत्पादन भी नहीं घटने का।
1: बिल्कुल, और भैया अगर किसी पशु में आप कोई बीमारी के लक्षण देखते हैं तो उसे कुशल पशु चिकित्सक को दिखाओ। साथ साथ अब भैया जो हमारी फसलें हैं अन्य
0: जी
1: उनकी हम चर्चा कर लें, तो भैया गन्ने में भैया छोटे भेदक आजकल कीट आ रहा है तो उसकी निगरानी कर लें, अगर आप देखते हैं तो भाई उसको देखभाल कर लें।
0: ठीक है भैया,
1: और अन्य फसलों को इसी प्रकार से देखभाल करें।
0: बिल्कुल
1: भाई, देखो यो आपका अपना कार्यक्रम है, इसके जरिए आपकी कोई खेती किसानी पशुपालन या बागवानी आदि संबंधी समस्या हो तो आप हमें खत लिख सकते हैं, और खत लिखने के लिए भैया पता बता दो।
0: ठीक है भैया, खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, और भैया पिन है 2467 63।
1: बिल्कुल, तो इस पते पे हमारा आपकी भैया चिट्ठियों का इंतजार रहेगा, और साथ साथ भैया अगर आप किसी तरीके से भैया चिट्ठी नहीं लिख पा रहे तो सीधे फोन करके भी हमसे बात हो सकती है, और प्रत्येक भैया शुक्रवार पहले शुक्रवार को माह के पहले शुक्रवार को, और भैया हमारा होता है हेलो किसान, और माह के आखिरी शुक्रवार को यानी पांचवें शुक्रवार को भी भैया हेलो किसान होता है, और तीसरे शुक्रवार को हेलो गन्ना किसान होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसके अलावा भैया बासमती संबंधी कोई जानकारी आपको लेनी है तो माह के आखिरी मंगलवार को भैया हेलो बासमती होता है। तो ये कार्यक्रम हमारे ऐसे हैं, इनमें भैया आप फोन के जरिए बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए फोन नंबर बता दो।
0: बिल्कुल भैया, हमारे नंबर है 94-57-07-82-88।
1: तो भैया आप समय ज्यादा बातें करने की इजाजत नहीं दे रहा है, तो इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम
0: और अपने भैया हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति।
1: किसान भाइयों
0: राम राम, राम।

तथा महत्वपूर्ण दृष्टिगत होती है, जिसके फलस्वरूप हमें बाहर से इन विभिन्नताओं का आभास भी नहीं हो पाता। भारतीय संस्कृति के इस रूप का कारण यहाँ की विविध सांस्कृतिक तत्वों की एकता है। संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवहारों, प्रतिमानों, विचारों, मूल्यों, रहन सहन के तौर तरीकों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के ज्ञान को शामिल करते हैं। अपने पिता तथा पितामहों से प्राप्त सामाजिक विरासत के तत्वों को भी हम अपनी संस्कृति में सम्मिलित करते हैं। संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज का सदस्य होकर मनुष्य की अर्जित अन्य योग्यताएं तथा आदतों को शामिल किया जाता है। संस्कृति हमारे जीवन, कर्मों, चिंतन पद्धतियों, दैनिक संपर्कों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, विनोद आदि में हमारी प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। किसी समाज की व्यवस्था, वहाँ के लोगों के बारे में भविष्यवाणी उस समाज की संस्कृति के द्वारा ही की जाती है। संस्कृति के दोनों पक्ष, भौतिक तथा अभौतिक, मिलकर इस विश्व समाज में जितनी भी वस्तुएं तथा तथ्य हैं, उनको व्यक्त करती हैं। यहाँ की भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति स्वभाव में विपरीत होते हुए भी साथ साथ विकास कर सकती है। वाद प्रतिवाद का समन्वय इस संस्कृति की विशेषता है, जिसे प्रत्येक स्थान और काल में देखा जा सकता है। महाभारत काल में धृतराष्ट्र जहां एक और नियतिवादी थे, वहीं पर विदुर प्रज्ञानवादी और अध्यात्मवादी थे। विभिन्न पुरुषार्थों के बारे में जहां विदुर धर्म को सर्वोच्च बतलाते हैं, वहीं पर अर्जुन, नकुल तथा सहदेव अर्थ को सर्वोच्च मानते हैं। इन लोगों के विपरीत भीष्म कामना को सर्वोच्च मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दृष्टिकोणों में अंतर प्रचुर मात्रा में रहा है, लेकिन अंतिम उद्देश्य के बारे में सभी एकमत हैं। वह यह है कि मोक्ष की प्राप्ति उस व्यक्ति की होगी जो उपयुक्त किसी भी एक पुरुषार्थ को स्वीकार करेगा। भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे पंजाब में बैसाखी, हिमाचल में फुल्लैच, हरियाणा में सांझी, उत्तर प्रदेश में लठमार होली, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू आदि काफी उल्लास से मनाए जाते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोग एकता के साथ जीवन यापन करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाना पकाने का ढंग उनकी संस्कृति के मुताबिक अलग अलग है। दक्षिण में जहाँ इडली और डोसा प्रसिद्ध है, वहीं उत्तर में मक्की की रोटी और सरसों का साग प्रसिद्ध है। भारत में हर 15 किलोमीटर की दूरी पर भाषा और बोलने का ढंग बदल जाता है। यदि हम लोगों की पोशाकों पर ध्यान दें तो उसमें भी विविधता दिखाई देती है। भारत में हर प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक परंपरा और लोकाचार है। यह विभिन्नता और विविधता भारत को एक सुंदर पारंपरिक और सांस्कृतिक देश बनाती है। भारत देश में सभी एक दूसरे की परंपरा का आदर करते हैं। यहाँ सभी अपनी जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर के साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत एक वृहद देश है। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनगिनत लोकगीत, संस्कार, संस्कृति और लोक गाथाएं हैं। जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वोपरि राज्य है। यहाँ एक कहावत कही जाती है कि उत्तर प्रदेश में हर दो फलांग पर भाषा और पानी बदल जाते हैं, और ये भी सच है कि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता देखने को बनती है। यहाँ परंपराओं और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यहाँ नदी, पेड़, सूरज, चांद आदि की पूजा का बहुत महत्व है। भारत में पंजाब वीरों और किसानों का प्रदेश है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत में वीरों और किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के लोग खूब मेहनती होते हैं। यहाँ की संस्कृति में मस्ती, सौहार्द और जोश दिखाई देता है। भारत का स्वर्ग कश्मीर भारत के सिर पर ताज की तरह सजा हुआ 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। यहाँ एक और डल झील पर शिकारे हैं तो दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं। यहाँ एक और शिकारों पर कोई कश्मीरी गीत गाता हुआ दिखाई देता है तो वहीं दूसरी ओर मंदिरों की घंटियों की आवाज भी सुनाई देती है। भारत में राजस्थान बलिदानों का प्रदेश कहा जाता है। दूर तक फैला रेगिस्तान तथा वहाँ की कठोर जलवायु यहाँ के निवासियों को जुझारू और परिश्रमी बनाती है।
पानी की अत्यंत कमी के बावजूद ये प्रदेश खूब निखरा और संवरा हुआ है।

0: राजा रजवाड़ों की इस भूमि में आज भी लोक कथाओं का विशाल भंडार है। यहाँ के जीवन को देखकर ये कहा जा सकता है कि जीवन की विषमताएं जीवन को और भी सुंदर रूप दे देती हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास में मध्य प्रदेश बहुत चर्चित है। भारत की पृष्ठभूमि पर उज्जैन नगरी प्राचीनतम स्थानों में से एक है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ काल भैरव के आशीर्वाद से प्रगति और खुशहाली है। मध्य प्रदेश को मंदिरों का प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ अनोखे अनूठे और पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए मंदिरों की अपनी परंपरा और संस्कृति है। भारत की कर्म भूमि कहे जाने वाले गुजरात राज्य के लोग कर्मठ और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। यहाँ प्रगतिवादी विचारधारा प्रवाहित होती है और एक सुनिश्चित ढांचे में परंपरा और संस्कृति निभाई जाती है। यहाँ कई मंदिर हैं जिनमें द्वारिका और सोमनाथ प्रमुख हैं। दक्षिण भारत अलंकृत मंदिरों से सजा हुआ है। यहाँ की संस्कृति भी अलंकृत और वैभवशाली है। यहाँ संस्कृति खुद सुसंस्कृत होने आती है। भारत में समय समय पर अलग अलग राज्यों में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में साल की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है, फिर बसंत पंचमी, बरगदई अमावस्या, हलछठ, तीज, जन्माष्टमी, ईद, दीपावली, क्रिसमस आदि त्योहार वर्ष भर चलते रहते हैं। यहाँ हर राज्य के भोजन में भी विविधता पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में दाल चावल रोटी मुख्य भोजन है, पंजाब का मुख्य भोजन सरसों का साग मक्के की रोटी है, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बाजरे की रोटी आदि प्रसिद्ध हैं, मध्य प्रदेश में मालपुआ, गुजरात का ढोकला, दक्षिण भारत में इडली डोसा सांभर उत्पम आदि मुख्य भोजन हैं। यहाँ परिधान में भी विविधता पाई जाती है। जैसे पंजाब के लोग सलवार कमीज कुर्ता पजामा पहनते हैं, कश्मीर के लोग रंगीन वेशभूषा पहनते हैं, राजस्थान में जयपुरी लहरिया चुंदरी आदि पहनी जाती है। राष्ट्र के विकास में देश की विभिन्न संस्कृतियों का अपना भी योगदान है। हमारे देश भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई। पिछली 5 सहस्राब्दियों से अधिक समय से भारत के रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं और परंपराएं इसके एक दूसरे से परस्पर संबंधों में महान विविधताओं का एक अद्वितीय उदाहरण देती हैं। भारत की इसी संस्कृति को देखने के लिए लाखों सैलानी हर वर्ष यहां आते हैं। इससे हमारे देश का आर्थिक विकास भी होता है। भारत की विभिन्न वस्तुएं विदेशों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। हमारे देश के मैत्रीपूर्ण व्यवहार से विभिन्न देशों के साथ राजनीतिक संबंध भी अच्छे हुए हैं। राष्ट्र के विकास में भाषा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था। संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा जा सकता है। अनेकता में एकता सिर्फ कुछ शब्द ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जो भारत जैसे सांस्कृतिक और विरासत में समृद्ध देश पर पूरी तरह लागू होती है। संस्कृति के माध्यम से ही मानव प्रगति की ओर उन्मुख होता है। संस्कृति ही किसी समाज विशेष या देश विशेष की परिचायक होती है। संस्कृति की अभिव्यक्ति किसी देश के अर्थ, दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान, भाषा, सामाजिक आचार विचार जैसी संस्थाओं से होती है। सभ्य और संस्कारी व्यक्तियों के समाज और राष्ट्र भी संस्कारी होते हैं। इस प्रकार विशुद्धि, निर्मलता एवं परिष्कृत संस्कृति एक मानव से चलकर समाज और फिर राष्ट्र की संपत्ति बन जाती है। भारतवर्ष की संस्कृति यद्यपि अधिक विविध रही है, इसका कारण भारत की पवित्र भूमि पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का आगमन, क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न प्रकार के रहन सहन के तौर तरीके, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग है।
1: विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्र के विकास में विभिन्न संस्कृतियों की भूमिका विषय पर ये वार्ता, वार्ताकार थी नेहा बंसल। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर।

0: भारतवर्ष की संस्कृति यद्यपि
1: लीजिए प्रस्तुत है छाया गीत।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया। गीत लिखा था असद भोपाली और देव कोहली ने और संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने।

आशिताओं लीजिए, अब सुनिए फिल्म सन्यासी में लता मंगेशकर और प्रेमनाथ को। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: कोयल फड़क के मस्त करे जब अलाप से दिल के वलवले दब जाएंगे तबले की था।
1: शामी पुर का

आकाशवाणी के नशीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत छाया गीत, और कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से। आवाज है मुकेश की, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत छाया गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, कानून की बात कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से आप सुनेंगे आज संध्या 7:32 पर। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और आज रात्रि 10:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। आकाशवाणी से रिटायर्ड वरिष्ठ उद्घोषक सुलेंद्र कुमार नौटियाल की रेडियो प्रसारण से जुड़ी यादें। प्रस्तुति सहयोग यशोदर डबराल का, प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा।

और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया हमारे श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे। और श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और भेज सकते हैं अपना मैसेज। गीत संध्या कार्यक्रम होगा आज शाम 8 बजे। साथ ही 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। भाई हरजिंदर सिंह की गाई शब्द पेश की जाएंगी सुगम संगीत में आज संध्या 7:45 पर।

अपनी एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। जिले की हलचल कल सवेरे 9:15 पर आकाशवाणी लखनऊ से, कल शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और कल रात्रि 9:30 पर होगा प्रोग्राम कंट्री वाइड इनसाइट। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कल रात्रि 10 बजे सुनिएगा पूर्व प्रसारित नाटक कड़ी धूप घनी छांव, लेखक आफाक अहमद, निर्देशक मनोहर परोथी, प्रस्तुति सहायक मोतीलाल कुचरू, प्रतिभागी कलाकार होंगे विजय सूरी, जेसी भारती, महेश शर्मा, वीना गैण, रीता जितेंद्र, कुमारी कंचन केसरी, कुमारी डिंपल भासीन और मनोहर परोथी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम कल सवेरे 6:05 पर और श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय रहेगा कल सवेरे 6:30 पर। चिंतन सुनिएगा कल सवेरे 6:40 पर। डॉक्टर राम गोपाल भारतीय से काव्य पाठ आप सुनेंगे काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत कल सवेरे 6:45 पर। शास्त्र चर्चा प्रातः 7:05 पर, जानकारी का विषय रहेगा आंखों के यौगिक उपचार। मृदुला निगम के गाय रोहिलखंडी लोकगीत श्रोता सुनेंगे कल सुबह 9:25 पर, लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत। बात आसपास की, ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 9:50 पर, वाचन स्वर एवं संकलन निशिका कौशिक का। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:18 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक, गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि

हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त, शहरी और ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक

0: गर्मी और लू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। श्री प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 6:15 बजे लखनऊ से चलकर 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इनहाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
2: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा।

0: होगा जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने आज सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
1: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
0: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
2: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है, और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: मीडे वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:31 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं जेल में कैदियों के अधिकार, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रत्युष गौरव और भेंट करता है अतिश कुमार श्रीवास्तव।
5: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है, मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति कुछ अपराध ऐसे करते हैं जिनमें जेल जाने के कानून हैं। तो हमने अपना विषय इसी पे चुना है, जेल में कैदी जो गया है उसको क्या सुविधाएं हैं, क्या अधिकार हैं और कैसी परिस्थिति होती है। तो हमने इसी पर बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में बुला रखा है प्रत्युष गौरव को। आप एडवोकेट हैं लखनऊ हाई कोर्ट में। प्रत्युष जी, आपका स्वागत है।
6: जी नमस्कार।
5: हमारे श्रोताओं को, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बताएं कि जेल एक बंदा कैसे और क्यों पहुंचता है।
6: जी, जेल आप तब पहुंचते हैं जब आप कोई अपराध कर देते हैं। कई अपराध हमारे BNS में और एवं अन्य एक्ट्स में दे रखे हैं जिसके उल्लंघन करने से आप जेल जा सकते हैं। और सबसे पहले आपकी तहकीकात की जाती है अगर आपने कोई अपराध किया हो, और उसके बाद फिर आपका ट्रायल शुरू होता है। तहकीकात करने के बाद जो रिपोर्ट है पुलिस वो सीधे मजिस्ट्रेट साहब को पहुंचाती है कि आपने ऐसा अपराध किया है, और उसके हिसाब से आपका ट्रायल शुरू होता है। अब ट्रायल शुरू होने के बाद जब आप कन्विक्ट हो जाते हैं, मतलब जब आप दोषी हो जाते हैं, तो आप जेल में फिर जाते हैं जैसा आपने अपराध किया हो वैसा। तो अगर आपने चोरी की है तो चोरी करने पे मान लीजिए अगर आपको एक साल की सजा सुनाई गई है तो एक साल की सजा सुनाई जाने के बाद आपको जेल भेजा जाएगा जहां पे आपको जेल के नियमानुसार रहना पड़ता है।
5: अच्छा प्रत्युष जी, ये बताइए कि कभी कभी केसेस डिसाइड होने में कि कितनी सजा मिलेगी, इसमें कभी कभी समय लग जाता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, कभी कभी साल साल, तो क्या जिस पर केस चल रहा है तो क्या उसको जेल में रहना है या बाहर रहेगा, या अगर है तो उसकी सजा काउंट होगी जिस दिन से जेल में है वो?
6: जी, अगर किसी ने पहली बार अपने अपराध किया है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने पहली बार अपनी जिंदगी में चोरी करी है और उसको उसके लिए सजा हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर उसका ट्रायल चल रहा है और वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, मतलब पहली बार अगर उसने कोई जुर्म किया है, तो उसको केवल 33%, मतलब एक तिहाई जो उसका पनिशमेंट है वो सहना पड़ता है अगर उसको जेल हो जाती है, और उसके बाद फिर वो नियमानुसार वहाँ पे बेल के लिए गुहार कर सकता है कि मुझे बेल दे दी जाए। और अगर मान लीजिए आप पहले भी जुर्म कर चुके हैं तो वही चीज़ आपकी हाफ हो जाती है, मतलब 50% आपको सेंटेंस सर्व करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आपको अपराध के लिए सजा मिली है आपको पूरे टाइम उसमें रहना पड़ेगा, आपको नियमानुसार अगर आपने किया है तो उसके हिसाब से आपको बेल मिल जाता है।
5: हाँ प्रत्युष जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर एक कोई व्यक्ति है, उसका केस चल रहा है, उसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है, तो और उसका केस डिसाइड होने में टाइम लग जाता है, जो पीरियड उसने 2 महीना 4 महीना जेल में काटा है, तो वो सजा में काउंट हो जाएगा?
6: जी बिल्कुल काउंट हो जाएगा, लेकिन ये है कि अगर आपको गलत अपराध के लिए पकड़ा गया और आपके साथ बदसलूकी की गई या फिर आपको जेल में ज़्यादा समय के लिए रखा गया, तो उसके लिए आप स्टेट से कॉम्पनसेशन, मतलब कि पैसा आप उनसे डिमांड कर सकते हैं, इससे कि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो सेंटेंस आपको दिया जा रहा है और जो पुलिस आपके साथ बदसलूकी कर रही है, वो आपको सहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप उसके लिए बिल्कुल इस गुहार लगा सकते हैं कोर्ट में कि हमारे साथ यहाँ पे वसूली की जा रही है, या फिर पुलिस अगर आपसे जबरदस्ती करके आपको जेल के अंदर बंद रखती है जो सूचित समय है उससे ज्यादा टाइम के लिए, तो उसके लिए आप जरूर कंप्लेन दायर कर सकते हैं।
5: हम समझते हैं कि पुलिस का काम उसको जेल तक पहुँचाना हुआ, तो जो अंदर जो कार्य प्रणाली है वो जेल के एम्प्लॉइज किया जो उनके जिम्मेदार आ जाता है?
6: जी बिल्कुल, वहाँ पे जो जेल के कर्मचारी हैं और उसके बाद फिर जो जेल की कानून व्यवस्था है, जो प्रिजन एक्ट है हमारा, उससे ये सारी चीज़ें गवर्न होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई अपराधी जेल हो गई है तो जेल के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की, रहने सहने की, और आपकी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, वो सब आपकी जो जेल की व्यवस्था है वो आपको उपलब्ध कराती है। यदि किसी भी व्यवस्था में वो कमी रखते हैं या आपके साथ बदसलूकी करते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास भरपूर रूप से रेमेडीज उपलब्ध हैं और आप इनको आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं।
5: रेमेडीज का माने क्या हुआ कि कैसे वो शिकायत कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं?
6: जी, सबसे पहला तो आप वहाँ पे जो इंटरनल कंप्लेंट सिस्टम वहाँ जेल के अंदर जो बना रहता है, वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, और वो कंप्लेन हमेशा जज साहब हैं उनके द्वारा एग्जामिन की जाती है। और यदि मान लीजिए आपके साथ पुलिस बदसलूकी करती है या फिर वहाँ पे जो अंदर का जो जेल सिस्टम है वो आपके साथ बदसलूकी करता है, तो आप सीधे उनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी जिस हिसाब से उन्होंने आपके साथ अपराध किया। जैसे मान लीजिए अगर आपके साथ टॉर्चर किया जा रहा है या फिर आपको खाने पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं दी जा रही है, तो उसके हिसाब से आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और उसकी कार्यवाही फिर जज साहब भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधे जाके हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 और 226 के ऊपर।
5: आपने बता दिया मेडिकल की व्यवस्था है, फूड की व्यवस्था, तो हाइजीन की भी कोई व्यवस्था है?
6: जी हाइजीन की भी व्यवस्था है। यहाँ पे जेल को ये सुनिश्चित करना होता है कि जो आपके खाने पीने की सुविधाएं हैं वो आपको ठीक से उपलब्ध की जा रही हैं। ऐसा ना हो कि जो खाने पीने की व्यवस्था है उसमें कीड़े मकोड़े और तमाम बीमारियों का प्रकोप है और उसके बाद आप उसका सेवन कर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं लगातार, तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे अंदर ही अंदर, अगर आप बोर्ड कमेटी बनी है वहाँ पे, और अगर उसमें कोई एक्शन ना लिया जाए तो आप जज साहब या फिर पुलिस में या फिर आप सीधे हाई कोर्ट में कंप्लेन इसकी दर्ज कर सकते हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, और उसके हिसाब से आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी।
5: तो आपने बताया कि आप FIR या कंप्लेन कर सकते हैं, तो अंदर मेरे ख्याल से जो कैदी हैं जेल के अंदर, तो उनके पास ना कागज होगा ना पेन होगी, तो कंप्लेन करेंगे कैसे?
6: जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अंदर कैदी है वहीं जाके कंप्लेन दर्ज करे या फिर कुछ करे, लेकिन जो उसके परिवार वाले लोग हैं वो जाके वहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और उनसे अपनी हेल्प मांग सकते हैं कि जो हमारे कैदी हैं यहाँ पे जो जेल में रह रहे हैं और उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और उनको ठीक तरीके से उनका पालन पोषण नहीं किया जा रहा है जैसे उनको करना चाहिए। और इसके लिए

0: फिर वो रेमेडी अपने हिसाब से ले सकते हैं और उसमें उनको जो कैदी है उनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
1: अच्छा चलिए, जब मिलने वालों की बात आई गई, परिवारजनों की बात आ गई है, तो उसके क्या नियम हैं कि कोई व्यक्ति अपने परिचितों से, अपने रिश्तेदारों से, जेल के जो अंदर हो गए हैं, जो कैदी हैं, उनसे कब कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है?
0: जी, जो जेल के अंदर कैदी है, वैसे अगर आप आमतौर पे देखा जाए तो आप कम से कम 2 बार तो हफ्ते में मिल सकते हैं। अगर जैसे आप अंडर ट्रायल प्रिजनर, अभी आपका केस चल रहा है और अभी कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है, तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तो आप मिल सकते हैं। और अगर आपको कन्विक्शन हो गया, मतलब आप दोषी पाए गए हैं किसी अपराध के लिए, तो अगर आपका जो बिहेवियर है वो आपका सही है और आपसे कोई किसी को आपत्ति नहीं है, तो वो 15 दिन में एक बार तो कम से कम मिलने के लिए दे दिया जाता है। कहने का मतलब कि महीने में आप 2 बार तो मिल ही लेंगे उनसे। और साथ साथ में एक ई मुलाकात सिस्टम का भी यहाँ पे स्थापना की गई है, जिसमें आप वहाँ पे ई मुलाकात की फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जो फैमिली है वो रजिस्टर कर सकती है। और वहाँ पे जो नेशनल प्रिजन इंफॉर्मेशन पोर्टल है, ई प्रिजन पोर्टल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी 15-20 मिनट के लिए आप अपने जो आपके जो कैदी है उनसे मिल सकते हैं। तो इसमें देखा जाए कि 2 तरीके से आप मिलने की सुविधा आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड की गई है, एक तो ई मुलाकात और एक तो जो आप सीधे आप मिल सकते हैं अगर वो कन्विक्ट हैं, तो एक बार 15 दिन में, और अगर उनका अभी केस चल रहा है तो 2 बार आप हफ्ते में मिल सकते हैं उसे।
1: तो प्रत्युष जी, जैसे कि आपने बताया कि कोई परिवारजनी वाले मिल सकते हैं, मान लीजिए किसी ने केस दाखिल कर दिया, तो क्या वकील जो होता है, वकील जिसको रखा गया है, वो भी मिल सकता है केस बनाने के लिए?
0: जी, सबको यहाँ पे अधिकार है, खास तौर पे वकील को, किसी भी एक आम आदमी को वकील से मिलने का अधिकार होता है। और उसको इनफैक्ट जो फ्री लीगल एड की भी सुविधा प्रोवाइड की गई, जैसे मान लीजिए अगर कोई कैदी है उसको अभी ठीक तरीके से कोई वकील नहीं मिल पा रहा, या फिर उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि अपने लिए कोई वकील को अरेंज कर पाए,
1: तो
0: तो
1: सरकार मुहैया
0: सरकार
1: कराएगी?
0: मुहैया कराती है उसको वकील, और उसके हिसाब से उसका ट्रायल जो है शुरू होता है। इसीलिए बात आती है अंडर ट्रायल प्रिजनर की, जो अभी जिनका केस चल रहा है कोर्ट में, तो अगर उनको अंडर ट्रायल प्रिजनर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो हो सकता है किसी कारणवश अपने लिए वकील उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और इसकी वजह से वो जेल में लंबे टाइम के लिए बंद रहे हैं। तो इसलिए जो सरकार है फिर उनको एक सरकारी वकील मुहैया कराती है, और उसकी हेल्प से वो अपने हिसाब से केस अपना देख सकते हैं।
1: तो मैंने ये सुना है कि कुछ लोगों को रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलता है, कुछ को सिंपल है, तो इसकी क्या व्यवस्था है?
0: जी, अगर आपको किसी अपराध के लिए कठोर कारावास मिला है, जहां पे आपको हार्ड लेबर करना पड़ रहा है, तो उसकी व्यवस्था ये है कि आप 9 घंटे से ज्यादा कभी भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए अगर आपको कारपेंट्री का काम है, तो मान लीजिए कारपेंट्री का काम आप कर रहे हैं, तो आपसे कोई भी 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकता। और अगर यदि आप को कठोर कारावास नहीं भी मिला है और आप खुद ही चाहते हैं कि मैं कारपेंट्री का काम या अन्य जो जेल के काम है उसमें हम पार्टिसिपेट करें, तो उस केस में आप पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन वही बात है कि कोई भी आपसे 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले पाएगा।
1: तो इस पे एक बात आती है कि मान लीजिए आप रिगरस इम्प्रिजनमेंट वाले कठोर कारावास के कैदी हैं, और आपने कोई, जैसे कि आपने या कारपेंटरी का काम किया, तो क्या इसमें जो आमदनी होगी जेल को, क्या उसका भी हिस्सा मिलता है?
0: जी, जितना उसकी आमदनी हुई है काम करने पे, उसको एक मिनिमम पे जरूर मिलता है, और उसके लिए वो फाइट भी कर सकता है अगर उसको काम लिया जा रहा है लेकिन उसको प्रॉपर पे नहीं मिल रहा। तो इसके लिए भी कंप्लेन बॉक्स सिस्टम और वहीं सब बनाए गए हैं, उसमें वो शिकायत अपनी दर्ज कर सकता है।
1: जो बात मैंने सुनी है, वो एक रिव्यू कमेटी बनी होती है, जेल रिव्यू कमेटी, तो उसका क्या काम होता है?
0: जी, जेल रिव्यू कमेटी का काम यही है कि ये देखना कि जो वहाँ जेल के अंदर सुविधाएं हैं, चीजें हैं, वो फॉलो की जा रही हैं, किसी का जो मानव अधिकार है वो उसका उल्लंघन कोई नहीं कर रहा है। और साथ साथ में इसके अलावा जो आपके UPHRC हैं और NHRC हैं, जो कहने का मतलब उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाए गए हैं, अगर आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जैसे कि अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, या फिर आपको खाने की सुविधा ठीक से नहीं मिली है, तो आप वहाँ पे भी जाके गुहार कर सकते हैं कि जो आपके मानवीय अधिकार हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, और उसके लिए आपको पर्याप्त रूप से रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जा रही। जैसे कि आपने कंप्लेन डाली और उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, आपने वहाँ पे जेलर को बोला कि हमारे को ऐसा दिक्कत महसूस हो रही है और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इसके लिए आप इन सुविधाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: एक बात ये आती है कि जैसे कुछ कैदी जो आजीवन कारावास के हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, तो क्या उनको भी छोड़ने, पहले छोड़ देने का या सजा कम करने का कोई प्रावधान है?
0: जी बिल्कुल है, अगर कोई अच्छे व्यवहार का व्यक्ति है और उसने अगर ऐसा अपना व्यवहार रखा है जेल में जिस

0: जैसे किसी को कोई तकलीफ ना हुई हो, कोई परेशानी ना हुई हो, और उसको गुड बिहेवियर के टर्म्स में उसको जल्दी भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको उम्र कैद की सज़ा मिली है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जैसे मान लीजिए अगर आपने मर्डर किया है, तो उसके उसके लिए आपको आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। लेकिन अगर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड बिता लेते हैं, तो उसके बाद आप गवर्नर साहब को लिख के आप अपना जो जो आपका जो सेंटेंस है उसको कम करा सकते हैं और जल्दी अपना रिलीज पा सकते हैं।
1: रियली हमने देखा है कि जब स्वतंत्रता दिवस के दिन ही कुछ लोगों को पहले छोड़ दिया जाता है
0: जी, ये उसी के लिए रखा गया है। अगर आप गवर्नर साहब को इस तरह की मतलब गुहार
1: रिक्वेस्ट
0: लगाते हैं,
1: करते
0: रिक्वेस्ट
1: हैं।
0: करते हैं, तो वहाँ पे जो उनका जो सिस्टम है वो इस तरह से रहता है कि जो वहाँ की रिव्यू कमेटी है और वहाँ के जो लीगल अफसर हैं वो इन सब चीज़ों को देखते हैं, और उसके बाद फिर आपको देखा जाता है कि आप पहले भी कितना अपराध करे हैं या फिर आपका व्यवहार कैसा रहा है। ये रिपोर्ट आप जेलर से भी ले सकते हैं, और उसके बाद फिर उसका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उससे भी देखा जाता है। उसके बाद फिर उनको उसके हिसाब से सुनिश्चित किया जाता है कि अब आपको हम जल्दी छोड़ने की कोशिश करेंगे, कि अब आपको हम यहाँ पे जल्दी सेंटेंस आपका खत्म कर दिया जाएगा।
1: तो प्रत्युष जी, बहुत सी बातें हो गई। तो क्या जो जेल का सिस्टम, जो व्यवस्था जो हमारे देश में चल रही है बरसों से, तो उसके लिए भी कभी सुधार की बात सोची जाती है, या कुछ कमेटी बनी है, या केंद्रीय स्तर पर इसके बारे में कोई बदलाव होने की उम्मीद है?
0: इसमें बदलाव तभी हो पाएगा जब इसके बारे में कोई आवाज़ उठाएगा, और ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है, क्योंकि जो जेल में व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि वो कि उन्होंने किसी किसी न किसी के खिलाफ जुल्म किया है, इसीलिए वो जेल में रह रहे हैं। तो इसीलिए कोई उनके लिए आवाज़ उठाने का नहीं है। अगर आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर, जो हमारे विदेशी जैसे नीदरलैंड हो गया, जो यूरोप में यूरोपियन कंट्री है, या फिर डेनमार्क हो गया जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे अगर आप उनकी जेल की व्यवस्था देखेंगे तो वहाँ पे सारी फैसिलिटी और सभी खाना पीना उनसे लेकर, और उनके जो रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन मतलब कि अगर उनका कोई अपराध किसी ने किया भी है तो उसको वापस से हम सोसाइटी के अंदर सिविल रूप में कैसे उनको डाल सकते हैं, तो इस चीज़ पे उनका फोकस ज़्यादा रहता है। और उसी की तुलना की जाए तो इंडिया पे देखा जाए तो हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन को तो जरूर फॉलो किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा सुधार होना उसमें बाकी है।
1: तो प्रत्युष गौरव, आपने इतनी ढेर सारी बातें बताई हमारे श्रोताओं को, आप हमारे स्टूडियो आए, धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: अभी आप सुन रहे थे जेल में कैदियों के अधिकार, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रत्युष गौरव, और भेंटकर्ता थे अतीश कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कानून की बात कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर, यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। समय संध्या के 7:45 और सुगम संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भाई हरजिंदर सिंह के गाए शब्द।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह के गाए शब्द।

सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे भाई हरजिंदर सिंह के गाए शपथ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 8 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत गीत संध्या। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज के गीत संध्या कार्यक्रम में।

जिद्दी फिल्मी श्रोताओं, आपने सुना कार्यक्रम का ये पहला गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत था एसडी बर्मन का। गीत संध्या कार्यक्रम में अगली पेशकश है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में, फिल्म है फिर तेरी कहानी याद आई। गीत लिखा है कातिल शिपाई ने और संगीत है अनु मलिक का।

आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म उत्सव से। गीत लिखा है बसंत देव ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का गीत संध्या कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप बने रहें आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संध्या। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर।

और श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है आईना, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है दिलीप सेन और समीर सेन का।

और श्रोताओं लीजिए, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बिग ब्रदर से एक गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और उस्ताद सुल्तान खान ने। गीत लिखा है अनिल पांडे ने और संगीत है संदेश सांदेलिया का।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संध्या। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय संध्या के 8:30 और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हमारी फिल्म है 31 अक्टूबर 1997 को रिलीज हुई यशराज फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म दिल तो पागल है। श्रोताओ, इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे यश चोपड़ा। फिल्म के उस दौर में बड़े सितारे शामिल थे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार। फिल्म का मधुर और बेहद लोकप्रिय संगीत दिया था उत्तम सिंह ने और इस फिल्म के खूबसूरत गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्मों के गीतों को अपनी यादगार आवाज दी थी लता मंगेशकर, उदित नारायण, हरिहरन और आशा भोसले ने।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है और कार्यक्रम है एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल तो पागल है के चंद गीत। श्रोताओं, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का कम्पेट कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कीजिएगा हमें व्हाट्सएप मैसेज, जिसके लिए नंबर है 9457078288। और श्रोताओं, आज रात्रि 10:30 पर सुनना ना भूलें कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। आकाशवाणी के रिटायर्ड वरिष्ठ उद्घोषक सुलेंद्र कुमार नौटियाल की रेडियो प्रसारण से जुड़ी कुछ यादें, प्रस्तुति सहयोग यशोदर डबराल का और प्रस्तुतकर्ता है शोभित शर्मा। और श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल तो पागल है फिल्म से ये गीत, और इसमें आवाज ही है लता मंगेशकर और उदित नारायण की। श्रोताओं, इस फिल्म में भावनाएं, संगीत, डांस और रोमांस का एक खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। ये फिल्म 1997 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और करिश्मा कपूर को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। फिल्म का संगीत आज भी रोमांटिक फिल्मों की पहचान माना जाता है।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: में द्विपक्षीय बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया।

0: गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बने संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
5: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं.
4: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new

0: parts of northern and central India, with the mercury breaching the 45-degree mark. In national capital, an orange alert has been issued for heatwave conditions for the next 3 to 4 days. More from our correspondent.
1: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
0: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashwani hai. जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खुसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। परिकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तावन को फरोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वजीर आजम ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अकवामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी। इन माहिदों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए। ये माहिदे दो तरफा ताल्लुकात की खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदेही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौर वखौज किया है।
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
2: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाति मंसूबा 2025-2029 दो तरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगु मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
3: दोनों देशों के स्टार्टअप, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
2: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क्स की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
3: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
2: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाजरानी की आज़ादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
4: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our time, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
2: वजीर आजम मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटरेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दो तरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का अपना दौरा मुकम्मल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वजीर आजम ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, जरई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कू डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज़्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।
3: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन

100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई है। नई दिल्ली में तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरियत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया है। सरहद पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वह दरअंदाजों की शनाख्त करें और उन्हें BSF के हवाले करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिका तृणमूल सरकार इन हिदायत को नाफिज करने में नाकाम रही। जनाब अधिकारी ने वाजे किया कि CAA के तहत तहफ्फुज फराहम करदा 7 बिरादरियों के अराकीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से कबल भारत में दाखिल हुए हों। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले NEET UG इम्तिहान के महफूज बेहतर तरीके से और शफाफ तौर पर दोबारा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और नकायद से पाक इंतजाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब प्रधान ने यह बात आज नई दिल्ली में मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ एक आला सतह जायजा मीटिंग के सदारत करते हुए कही। अंडर ग्रेजुएट तिबी तालीम में दाखिले के लिए NEET UG का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनाकिद किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में 5 मुलजिमीन को अगले महीने की 2 तारीख तक अदालती तहवील में भेज दिया है। इन मुलजिमीन में मांगीलाल खाटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे शामिल हैं। अदालत ने एक दिगर मुलजिम शुभम खैरनार की CBI तहवील में तोसी कर दी है। CBI ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि खैरनार की मजीद तफ्तीश की जरूरत है ताकि उन दिगर मुलजिमीन की पहचान की जा सके और पता लगाया जा सके जिन्हें खैरनार ने NEET UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चे बेचे थे। पर्चा लीक होने के इल्जाम के दरमियान पिछले महीने की 3 तारीख को लिया गया NEET UG 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था। इस मामले में हुई बेजाबतगियों की जामे जांच की जिम्मेदारी का काम CBI को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस उजरदारी को खारिज कर दिया जिसमें आने वाली मरदमशुमारी के हिस्से के तौर पर जात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के पॉलिसी के दायरे में आता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जुनूबी कोरिया के दिफाई हसूलियाबी के प्रोग्राम के इंतजामिया के वजीर ली योंग चुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरका फरोग, मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका बरामदात के लिए बारावर कोशिशों को तेज करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निज़ामों में तावुन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कान को तलाश करने के लिए लाहे अमल वजा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से गैर यकीनी के आलमी सूरतहाल के बावजूद अकवामे मुत्तहदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाजा 6.4% लगाया है जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अकवामे मुत्तहदा के सीनियर माहिर माशियात इंगो पीटरले ने आलमी माशी सूरतहाल और इम्कान से मुतालिक वस्त साला रिपोर्ट से मुतालिक कल सहाफियों से गुफ्तगु करते हुए कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी। अक़वामे मुत्तहदा के इक्तसादी जायजा और पॉलिसी डिवीजन के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्वे मईशत, ढांचा जाती इस्लाहात और बेहतर टैक्स महसूल को भारत की अहम ताकत करार दिया। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर जारी रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। तवक्को है कि इसी तरह की सूरतहाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी रहेगी। मौसमियात की एजेंसी ने गंगाई, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आइंदा 2 दिनों के लिए गर्म और मरतूब मौसम रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी में आइंदा 3 से 4

में गर्मी की लहर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक शहर के किसी किसी मकाम पर दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल रहने की तवक्को है। आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन के तारीखी मैदान में मुंबई इंडियंस और मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकत दारी में बदलने से इत्तेफाक कर लिया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग़ देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरानदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अकवामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में

0: खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था, ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी, तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है, यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
1: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
3: सर, हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
4: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
0: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति। चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
1: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा था।
4: आज पाकिस्तान भी भलीभांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
0: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
1: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
4: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव, वी विल शेयर नॉलेज and exchange best practices, we will cooperate on training एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस वी विल डिस्कस रेगुलेटरी इश्यूज एंड प्रमोट कॉमन स्टैंडर्ड वी विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सोलर सेक्टर एनकरेज ज्वाइंट वेंचर्स एंड डेवलप इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म वी विल पार्टनर विद अदर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी देयर इज ऑलरेडी अ रिवॉल्यूशन इन सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग कॉस्ट आर कमिंग डाउन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी इज इम्प्रूविंग इट इज मेकिंग द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी बिकम मोर रियल.
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं. कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही. जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी. हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी. तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा. और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है. और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है. भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं. ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है. और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है.
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते. भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं. आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
5: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं. अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं. वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है. और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है. यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे. और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है. और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था. इसका इतना व्यापक रूप है. ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे. इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी.
4: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा
6: फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा।

0: मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
0: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन। सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
0: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
1: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों

0: तक मदद पहुंचाने का संकल्प। भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का कम्पीट कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कभी तारों की छाव तो कभी बारिश में कागज की कश्ती चलाया करते थे। बिना वजह ही दोस्तों संग मुस्कुराया करते थे। न मोबाइल की दुनिया थी न दिखावे का दौर, छोटी छोटी खुशियों में भी कितना सुहाना था वो दौर। वक्त बदला दौर बदला, पर दिल के किसी कोने में वो दिन आज भी रोशन है। तो आइए श्रोताओं, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के कार्यक्रम में, और फिर यादों की उसी गली में चलते हैं जहां सपने छोटे थे मगर खुशियां बहुत बड़ी। और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 9457078288। जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी जितनी आगे बढ़ती जाती है उतना ही दिल पीछे छूटे पलों को याद करता है। बचपन की वो अटखेलियां, गर्मियों की छुट्टियां, माँ का आंचल, दादी के किस्से कहानियां, दोस्तों की धमा चौकड़ी और बिना टेंशन के मदमस्त जिंदगी। और श्रोताओं, हमारा आज का खास विषय भी है वो सुनहरी पल। तो आप भी लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़िएगा मैसेजेस के माध्यम से, अपने जीवन के वो सुनहरे पल, कहीं अनकहीं बातें, उन्हीं यादों को कीजिएगा हमसे साझा, और उन्हीं यादों के साथ कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ ऐसे फिल्मी गीत जो दिल को फिर से उसी दौर में ले जाएंगे। तो दोस्तों, बचपन में छोटी छोटी बातों में खुश होना हम जानते थे। कभी स्कूल की छुट्टियां, कभी नया बैग, कभी बारिश, कभी गर्मी में पिघलती आइसक्रीम। और सच कहे ना तो जिंदगी का असली मजा शायद वही था। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही खूबसूरत गीत के साथ जो जिंदगी को मुस्कुराना और जीना सिखा देता है।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: और श्रोताओं, गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आपके साथ कार्यक्रम में हूं मैं श्वेता भट्ट। कार्यक्रम लेकर दिल ने फिर याद किया। श्रोताओं, कार्यक्रम में बहुत सारे मैसेजेस हमें मिले हैं और ये मैसेज हमें भेजा है मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन ने। इसी के साथ एक और मैसेज मिला है हमें अलीगढ़ से, ये है सीमा चौरसिया, जानकी, जागृति, कनिका, आयुष, समर्थ और अनुराग चौरसिया का। ये लिखते हैं, जब भी आकाशवाणी नजीबाबाद और रेडियो पर हम पुराने गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पापा आज भी हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि उनको रेडियो से बड़ा ही लगाव था और हर दिन रेडियो के संग जागना, रेडियो के संग सोना उन्हें खूबसूरत यादों में ले जाता है। आज समय कम मिलता है लेकिन जब भी रेडियो सुनते हैं वही पुराना दौर, वही सुरहानी यादें तरोताजा हो जाती हैं। बिल्कुल सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे से खूबसूरत से मैसेज के लिए। और यही तो यादों की खूबसूरती होती है, कुछ लोग दूर होकर भी दिल के बेहद करीब आ जाते हैं। इनमें आपका और हम सबका आकाशवाणी रेडियो इन यादों के बंधन को बखूबी जोड़े रखता है। और दोस्तों, अब आप भी हमें बताइएगा अपने बचपन की वो किस्से, कहानी, वो कौन सी बात, कौन सी याद है जिसे याद करके आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी नजीबाबाद में। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में आपके साथ है आपके रेडियो साथी श्वेता भट्ट। श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। बचपन हमें यही सिखाता है कि खुश रहने के लिए वजह नहीं एहसास जरूरी है। अगर आज भी आप किसी पुराने किस्से वाकया या किसी दोस्त को याद करके मुस्कुरा देते हैं तो यकीन मानिए आपका दिल अभी भी खूबसूरत है। और इसी बीच एक और मैसेज हमें भेजा है कस्बा उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता के साथ इनके परिवार के सभी सदस्य। और एक और मैसेज है रामपुर जिला मुरादाबाद से नईमा अंसारी, शाजिया, शाइस्ता, महजबी, अयूब, आदिल, महताब और तौफीक अंसारी का। ये लिखते हैं कि बचपन में गर्मियों के मौसम में आम के बाग में सब दोस्त और चचेरे फुफेरे भाई बहन इकट्ठा होकर आम चुराने जाया करते थे। घर पर पता ना चले और मार ना पड़े इसलिए भाई बहनों में से किसी एक को चुनकर बलि का बकरा बना दिया करते थे, यानी डांट खिलवा दिया करते थे। वो पल बेहद खास थे। आज भी जब सब भाई बहन मिलते हैं तो उन्हीं बागों के बीच में बने फार्म हाउस में जाकर उन पलों को जीने की कोशिश करते हैं, मगर जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं उतनी खुशी नहीं दे पाती जितनी वो सुनहरे पल देते थे। वाकई श्रोताओं, बचपन बेमिसाल होता है और वो यादें, वो पल बेहद लाजवाब होते हैं और सबसे यादगार वो पल होते हैं जो बचपन में हमने अपने भाई बहनों के साथ बिताए होते हैं। आज एसी वाली जिंदगी में वो छत वाली ठंडी हवा कहीं खो गई है, वो दौर, वो टाइम अब धुंधला सा हो गया है, लेकिन उन पलों की यादें आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं।

बिल्कुल श्रोताओं, बचपन हर गम से बेगाना होता है। श्रोताओं, पहले लोग कम साधनों में भी ज्यादा खुश रहा करते थे। ना सोशल मीडिया था, ना लाइक्स व्यू फॉलो की चिंता, बस रिश्तों में सच्चाई थी और दिलों में अपनेपन का एहसास। आज तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बातचीत, एक प्यारा सा कन्वर्सेशन जो लोगों के बीच में पुराने समय में रहता था, वो आज मिसिंग है। और श्रोताओं, जरा सोचिए, अगर आपको जिंदगी में 5 मिनट के लिए अपना बचपन फिर से वापस मिल जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या फिर से स्कूल जाएंगे, या पुराने दोस्तों से मिलेंगे, या फिर माँ की गोद में सर रखकर सो जाएंगे? अपने जवाब हमें भेजिएगा मैसेज के माध्यम से आकाशवाणी व्हाट्सएप पर 9457078288 पर। और इसी बीच एक मैसेज हमें मिला है, ये भेजा है शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी ने। ये लिखते हैं, बचपन तो बचपन होता है, खेल कूद में दिन कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। बचपन में अगर बारिश हो रही होती थी तो कब तक हम उस बारिश में नहा रहे होते थे ये पता ही नहीं चलता था। गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ते ही नाना मामू के घर जाकर बहुत प्यारे दिन बिताया करते थे, और जब पढ़ने जाया करते थे तो स्कूल ना जाकर खेल में लग जाया करते थे। कोई फिक्र नहीं थी, ना ही कोई डर। लेकिन आज का बचपन बहुत खतरनाक हो रहा है। बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है जिससे आंखों पर फर्क पड़ता है, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते। बिल्कुल सही और बहुत अच्छा मैसेज आसिफ जी आपने कार्यक्रम में भेजा है। वाकई मोबाइल आजकल बच्चों का बचपन छीन रहा है। खाना बच्चे मोबाइल देखते हुए खाते हैं, कोई भी काम बच्चे, अगर बच्चा रो रहा हो तो मोबाइल उसके हाथ में थमा दो, वो एकदम चुप हो जाएगा। तो वाकई में ये मोबाइल जो है इसने बच्चों का बचपन छीन लिया है। श्रोताओं, करेंगे कार्यक्रम में और भी मैसेजेस को शामिल, सुनते ही प्यारा सा गीत।

हमेशा साथ चलती हैं। इसलिए जिंदगी में जितना हो सके अच्छे पल बनाइए, क्योंकि कल यही पल याद बनकर हमें आगे मुस्कुराने का मौका देंगे। और श्रोताओं, आपके प्यारे प्यारे मैसेजों का जवाब पढ़कर सच में ऐसा लग रहा है जैसे हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा बच्चा आज भी जिंदा है। और इसी बीच ये मैसेज हमें भेजा है अनिल विनोचा जी ने नगीना से। ये लिखते हैं कि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बचपन, और सच में बहुत ही आनंद आता था उन दिनों में जब स्कूल जाते तो थे, वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती और पिटाई भी खाते थे। सच में बहुत मज़ा आता था, क्लास के दोस्तों के साथ मजाक भी होती थी और नोक झोंक का आनंद कुछ और ही था। इंटरवल होता था तो पानी पूरी, समोसा, लंच में मीठी गोलियाँ, सच में बहुत मज़ा आता था। और छुट्टी के बाद घर जाकर बस्ते को दूर फेंकना, सच में वो क्या दिन थे। वाकई अनिल विनोचा जी के बहुत अच्छे विचार, और बचपन को याद करते हुए चंद लाइनें उन्होंने लिखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और मैसेज इस बीच पढ़ेंगे, ये है, ये हमें भेजा है आगरा से, आगरा से रघुवीर सिंह मालिया खान, और इनके साथ हैं रचना द्विवेदी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये लिखते हैं कि मैं फिर से स्कूल की आखिरी बेंच पर बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे लगाना चाहूँगा और बिना मोबाइल के दोस्तों के साथ गांव की गलियों में बेफिक्र सी जिंदगी जीना चाहूँगा। वाकई बहुत खूबसूरत आपने ये लाइनें लिख कर दी हैं। ये आपकी विश है कि अगर आपको 5 मिनट के लिए वही पुराना बचपन मिल जाए तो आप क्या करेंगे। और इसी बीच एक भावुक करने वाला मैसेज हमें भेजा है इरफान सलमान इसरार नरगिस खातून ने, ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से। लिखते हैं कि अगर मुझे 5 मिनट के लिए बचपन वापस मिलता है तो सबसे पहले माँ को गले लगा कर रोऊंगा, क्योंकि तब समझ नहीं आता था कि मम्मी की डांट क्या होती है, उसमें कितनी दुआएं और कितनी भलाई छुपी होती है। वाकई दोस्तों, शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। जब हम छोटे होते हैं तो बड़ा होने की जल्दी हो रही होती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर वही छोटा सा बचपन ढूंढते रहते हैं। और सच कहें, अगर बचपन दोबारा मिले तो शायद हम खिलौनों से नहीं बल्कि उन अपनों से मिलना चाहेंगे जो अब सिर्फ यादों में रह गए हैं। उदासी ये कहती है कि वक्त लौट कर नहीं आता, और खुशी ये कहती है कि यादें कभी साथ नहीं छोड़ती। वाकई श्रोताओं, और इसीलिए दोस्तों, आज अपनों के साथ आप अच्छे पल बिताइए, उन्हें प्यार दीजिए, वक्त दीजिए, ताकि आने वाला कल यादों में खूबसूरत बन सके। और वक्त कहता है कि ऐसे गीत को हम कार्यक्रम में सुनवाएं जो इस भागदौड़ भरी दौड़ से निकलकर फिर से मुस्कुराना सिखाता है।

श्रोताओं, आज हमने महसूस किया कि यादें कभी बूढ़ी नहीं होती, वो हमेशा दिल के किसी कोने में मुस्कुराती रहती हैं। तो जिंदगी चाहे जितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, मुस्कुराती

अपनों को वक्त दीजिए, जिंदगी के छोटे छोटे पलों को संजोते रहिए, क्योंकि आगे चलकर ये सुनहरे पल दिल फिर याद करता है। और फिर मिलेंगे एक सुहानी याद, सुनहरे पलों और सुनहरे गीतों के साथ। फिलहाल श्वेता को दीजिए इजाजत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय रात्रि के 10:30 और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। आकाशवाणी के रिटायर्ड वरिष्ठ उद्घोषक श्री सुलेंद्र कुमार नौटियाल की रेडियो प्रसारण से जुड़ी यादें एपिसोड 32। प्रस्तुति सहयोग यशोदर डबराल का और प्रस्तुत करता है शोभित शर्मा।

0: मुझे याद है जरा जरा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में बहुत सारी यादों से हम आपको रूबरू कराते हैं। यादों का गुच्छा होता है जिसे आपके साथ हम बांटते हैं, और इस फेहरिस्त में इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जिस शख्सियत को, जिस मेहमान को हम अपने स्टूडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, आपसे बात कराने के लिए लेकर आए हैं, वो हैं एसके नौटियाल साहब, यानी सुरेंद्र कुमार नौटियाल। मेरे हिसाब से हमारे सारे जो साथी हैं, सुनने वाले सभी इस नाम को सुनते के साथ ही पहचान गए होंगे कि हम किस शख्सियत की यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारे पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक एसके नौटियाल साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका नौटियाल जी।
1: धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को नमस्कार, आपको भी नमस्कार।
0: नौटियाल जी, आप आकाशवाणी के उस टीम का या उस फेस का हिस्सा हैं जो इस संस्थान की आवाज मानी जाती है। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं उन यादों की तरफ जब ये संस्थान आपके लिए यूं कहें अजनबी था। आप इस संस्थान को वैसे तो सुनते थे, आप आकाशवाणी से परिचित थे, लेकिन इस संस्थान में जब आपकी एंट्री होती है उस दौर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। हमारे श्रोताओं को प्लीज ये बताइए कि आपने जब शुरुआत की तो कैसा था सब कुछ।
1: मैं आपको बताऊं कि मैंने लगभग 35 साल पहले आकाशवाणी में कदम रखा था बतौर एक कैजुअल वर्कर के रूप में। लगभग वो दौर था 1990 का, और 1990 से लेकर 2024 तक ये सिलसिला फिर लगातार चलता रहा। 1994 में मैं फिर लगातार काम करने के बाद एक परमानेंट वर्कर के रूप में मैंने संस्थान को ज्वाइन किया, और 1990 का वो दौर था कि जब मैं राजस्थान का जो एक सबसे अच्छा शहर भी है जोधपुर, वहां से मैंने अपना करियर यानी कि जीवन यात्रा मेरी आरंभ हुई, और आकाशवाणी नजीबाबाद पर ये संपन्न हुई।
0: जी नौटियाल जी, हम अपने श्रोताओं को आपकी इस जर्नी के बारे में, ये जो 1990 से शुरू हुई, 1990 से फिर 1994, बहुत सारे पड़ाव इसमें आए, उससे वाकिफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं।
1: जी,
0: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ही क्यों, आखिर कैसे आप इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े? उससे पहले आप कि जो सोच थी, क्या आप हमेशा से सोचते थे कि मुझे एक उद्घोषक बनना है, या कभी ऐसा सोचा हो कि नहीं मुझे आकाशवाणी का हिस्सा बनना है? थोड़ा सा उसके बारे में एक हल्का सा आइडिया दीजिए।
1: 12वीं क्लास के बाद थोड़ा सा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करते समय सभी, वो दौर ऐसा था क्योंकि उसमें आकाशवाणी के अलावा कोई मनोरंजन का, सूचना का या शिक्षा का कोई साधन ही नहीं था। और उसी पीरियड में जब मैं स्टूडेंट के रूप में था, एक बार मैं दिल्ली आया था, और मैं दिल्ली से जब वापस लौटा तो एक पॉकेट साइज, छोटे साइज का रेडियो था, लाल कलर का, मैं खरीद के लेकर गया था दिल्ली से, और बहुत अच्छी क्वालिटी का वो रेडियो था, काफी समय तक वो मेरे साथ रहा। वहां से वो लगन पैदा हुई, हम लोग सुनते थे, प्रोग्रामों में इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि मेरे घर के पास ही, सहारनपुर जिले के पास ही लगभग 15-20 किलोमीटर दूर मेरा गाँव था। उस गाँव में, मेरे घर के पास ही

0: एक रेडियो के मैकेनिक की दुकान थी, तो वहाँ सुबह से लेकर रात तक जब तक दुकान बंद नहीं होती थी पूरे दिन भर रेडियो चलता रहता था। उसकी दुकान पर जब रेडियो चलता था तो हमारे कानों तक वो आवाज़ पहुँचती थी घर तक। तो वहाँ उस समय तक क्योंकि मुझे रेडियो खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, और मैं जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ और बाहर निकलने लगा तो फिर मुझे रेडियो की आवश्यकता पड़ी, फिर मैंने उसको सुनना आरंभ किया। तो वहाँ से फिर ये लगन पैदा हुई कि रेडियो से जुड़ा जाए, और क्योंकि बहुत अच्छी जो जानकारी, मनोरंजन और सूचनाएं जो हमें मिलती थी वो केवल एक ही जरिया था, वो थी रेडियो।
1: 80 के दशक की ये बातें होंगी।
0: हाँ बिल्कुल, 80 और 90 के बीच का ये 10 साल का पीरियड था। और क्योंकि 1990 में तो मैंने सहारनपुर और अपना घर भी छोड़ दिया था, मैं राजस्थान चला गया था, और वो 10 साल का जो पीरियड रहा वो गोल्डन पीरियड रहा, उसी में ये अचीवमेंट हुआ।
1: आगे चलते हैं नौटियाल साहब, हम बात करते हैं उस दौर की, आपके राजस्थान की जो स्टिंट रही राजस्थान में, जब आपने बताया कि आप एक आकस्मिक उद्घोषक के रूप में वहां पर कुछ समय रहे, फिर उसके बाद में आप रेगुलर भी हुए, तो वो जो दौर था आकस्मिक उद्घोषक के रूप में, एक नए शहर में जाना, एक नए राज्य में जाना, और जाहिर तौर से वहां की कल्चर से भी मुतासिर होता है इंसान, वहां से उसका इनकाउंटर होता है, तो किस तरीके से आपको वो जो दौर है आज, उस पीरियड की कैसी यादें आपके जहन में हैं?
0: सोभित जी, बहुत अच्छी यादें भी हैं, और बड़ा उस समय अटपटा भी लगता था क्योंकि मैं एकदम उत्तर प्रदेश से निकलकर वहां राजस्थान की धरती पर गया था, और वो जोधपुर वाला जो हमारा इलाका है, वो पूरी बेल्ट है, वो एकदम असली हमारी जो मारवाड़ी राजस्थानी भाषा है वो उसका क्षेत्र है, और उससे धीरे धीरे जब इधर आ जाते हैं हम थोड़ा सा पश्चिम की ओर और पूरब की ओर बढ़ते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है, लेकिन वो भाषा वहाँ ऐसी थी कि मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैं उनके मुंह की तरफ देखता था कि आप क्या बोल रहे हैं, और फिर वो धीरे धीरे दौर शुरू हुआ, मैंने कोशिश की समझने की, और वहाँ जोधपुर में मेरे कोई रिलेटिव रहते थे, तो क्योंकि मैं यहाँ स्टूडेंट के रूप में था और जॉब की तलाश थी, पढ़ने के बाद में मेहनत भी की, तैयारी भी की, और क्योंकि माता पिता दोनों अशिक्षित थे और गरीब परिवार था, और गरीबी से बाहर निकलना आसान काम नहीं है,
1: बिल्कुल
0: बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम लोगों की जो पढ़ाई है वो बड़ी मुश्किल से होती थी, कभी कभी दिक्कतें भी बीच में आती थी कि सिलेबस नहीं होता था या फिर स्कूल की फीस टाइम से नहीं हो पाती थी, तो दिक्कतें हमारे सामने आती थी, क्योंकि हम लोगों को काम की जॉब की तलाश थी, और जॉब के उस तलाश में मैं सफर किया, यहाँ से सीधे मैं पहुंच गया राजस्थान। उससे पहले एक साल मैं आपको और बताता चलूं कि मैं एक साल दिल्ली में रहा, और 89 यानी कि 1989 का वो एक साल पूरा मैं दिल्ली में मैंने बिताया, और दिल्ली में मेरे रिलेटिव थे, मेरे मामा जी, उनके साथ मैं वहाँ रहता था, और मेरे जीजा जी यानी कि मेरे मामा जी के दामाद वो रेलवे में जेई थे उस समय, दिल्ली में उनकी पोस्टिंग थी, और उनके सहारे मैंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक साल काम किया, अनुबंध के आधार पर मैंने रेलवे में काम किया, और मैं अपनी पढ़ाई करता रहा, तैयारी करता रहा, क्योंकि मैं पढ़ाई में ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्टेनोग्राफी की, स्टेनोग्राफर हूँ मैं, और मैंने दो बार एसएससी का स्टेनोग्राफी का एग्जाम, रिटन एग्जाम पास किया, लेकिन मैं डिक्टेशन में उसको पास नहीं कर पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है।
1: दुर्भाग्य है नौटियाल जी, ये कहें सौभाग्य है, क्योंकि अगर आप स्टेनोग्राफी का एग्जाम अपना डिक्टेशन का पास कर लेते तो शायद आप उद्घोषक नहीं होते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो ये कहते हैं हम कि परमात्मा ने जो लिखा होता है वो होता वही है, आप कितने भी प्रयास कर ले, और बीच में ही फिर जब मैं राजस्थान में था तो राजस्थान में रहते हुए आकाशवाणी कि जैसे मैंने बात कही कि मैं वहाँ एक कैजुअल के रूप में काम कर रहा था, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक वैकेंसी निकाली थी अपने यहाँ पूरे राजस्थान जोन के लिए, उसमें राजस्थान में जो जोधपुर हाई कोर्ट है उसने वो भर्ती की थी, और एग्जाम लिया था, रिटन एग्जाम और फिर टाइप टेस्ट, उस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया, टाइप टेस्ट को क्वालिफाई किया, और फिर 11 महीने मैंने कोर्ट में नौकरी की।
1: वाह वाह, उसके बाद आपने कोर्ट में भी नौकरी की?
0: जी हाँ,
1: रेलवे, आकाशवाणी और कोर्ट,
0: परमानेंट स्टाफ के रूप में, यानी कि एक बाबू की पोस्ट पर मैंने हाई कोर्ट ने मेरी भर्ती की जोधपुर ने, और हाई कोर्ट जोधपुर से फिर मुझे भर्ती करके भेज दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चूरू, राजस्थान का जो एक जिला है, वहाँ मेरी पोस्टिंग कर दी गई, और मैं डिस्ट्रिक्ट जज के साथ में एक एलडीसी के रूप में मैंने 11 महीने काम किया
1: चूरू में।
0: 1992 में ये आकाशवाणी का एग्जाम हुआ, वो आकाशवाणी जोधपुर ने कंडक्ट किया था, क्योंकि मैं उस समय जोधपुर में निवास करता था और जोधपुर में क्योंकि मैं एक कैजुअल के रूप में काम भी कर रहा था आकाशवाणी में, तो उस समय वो एग्जाम हुआ। एग्जाम में फिर उसको मैंने पास किया। क्लियर होने के बाद में मैं फिर 94 में हाई कोर्ट की नौकरी छोड़ के सीधे आकाशवाणी में परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में, यानी कि एक उद्घोषक के रूप में मैंने ज्वाइन कर लिया।
1: तो जो आपकी ज्वाइनिंग हुई वो कहाँ पर हुई?
0: वो मेरी ज्वाइनिंग चूरू से है। FM उस समय वो स्टेशन था, 6 किलोवाट का स्टेशन था, और 1992 में सूचना प्रसारण मंत्री थी श्रीमती गिरजा व्यास, डॉक्टर गिरजा व्यास
1: जी,
0: उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। नवंबर में वो उसका उद्घाटन हुआ था 1992 में, और 94 में फिर वहाँ 6 लोगों यानी कि 6 उद्घोषकों की भर्ती हुई, जिनमें मैं भी शामिल था।
1: चुरू की बात करें, आकाशवाणी चुरू की नौटियाल जी, तो उस वक्त आपके साथ में 5 अनाउंसर्स और थे आपने बताया
0: जी,
1: तो ओवरऑल लगभग कितना स्टाफ वहाँ पर रहा होगा प्रोग्राम का, अगर हम बात करें कार्यक्रम का?
0: उस समय वहाँ डायरेक्टर यानी कि स्टेशन डायरेक्टर भी थे और 3 पैक्स थे और 2 ट्रैक्स थे।
1: तो आकाशवाणी चुरू में जब आपने ज्वाइन किया नौटियाल जी, तो उस वक्त कोई वहाँ का कोई इंसिडेंट आपको याद आता हो, या कोई वहाँ के जो आपके साथी लोग थे जिनके साथ आपने काम शुरू किया, उनकी कोई उनसे जुड़ी हुई कोई बात कोई याद आप हमारे साथ साझा करना चाहें?
0: चुरू के सब लोग बाहर के ही थे, लोग थे कुछ जोधपुर के लोग थे, कुछ बाड़मेर के लोग थे, कुछ दूसरे शहर के लोग थे, तो वो थोड़े से पहले से परिचित थे तो ज्यादा वहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वहाँ जो डायरेक्टर थे शंकर लाल, उस समय उन्होंने ही मुझे वहाँ ज्वाइन कराया था। और उस समय जो हमारे एक कार्यक्रम अधिशासी थे मिस्टर धूम सिंह चौहान, जिसको DS चौहान के नाम से भी जानते हैं
1: जी, बेशक DS चौहान साहब से हम भी परिचित हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा उन लोगों के साथ में समय बीता, बहुत अच्छा हम लोगों ने काम किया।
1: तो कब तक आप आकाशवाणी चुरू में रहे नौटियाल साहब?
0: मैं आकाशवाणी चुरू में 1994 से लेकर 2006 तक रहा
1: जी,
0: और 2006 के बाद में सीधे फिर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आ गया, आकाशवाणी रामपुर
1: जी। आकाशवाणी रामपुर की आपकी जो जर्नी है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब चूंकि आप एक उद्घोषक रहे, बहुत सारे गीत आपने श्रोताओं को सुनवाए हैं, एक गीत आपकी पसंद का हम आपको सुनवाना चाहेंगे, कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: मैं उस गीत को बहुत ही पसंद करता था और मुझे आज भी पसंद है, यादगार फिल्म का वो गीत है जिस पथ पर चला, लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत है।
1: बिल्कुल, तो चलिए ये गीत आपको हम सुनवाते हैं
0: जी।

0: तो आकाशवाणी रामपुर में आपका तबादला हुआ आकाशवाणी चुरू के बाद, आकाशवाणी रामपुर का जो आपका अनुभव है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
1: रामपुर के अनुभव के बारे में एक जो अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा है, जो मुझे लगता है कि आपको भी और हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको भी पसंद आएगा, क्योंकि मैं जब सीधे जोधपुर से चुरू आ गया था और चुरू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया, फिर आकाशवाणी से जुड़ा, लगभग 12-13 साल का मेरा वो पीरियड रहा वहाँ चुरू का, तो राजस्थानी भाषा मैंने पूरी तरह सीख ली थी और राजस्थानी भाषा में मैं फिर प्रोग्राम प्रेजेंट करता था।
0: अच्छा,
1: राजस्थानी भाषा के जो प्रोग्राम होते थे लोग बड़े चाव से सुनते थे और वहाँ के जो लोग थे यानी कि नागरिक थे वो जब मिलते थे परिचय पूछते थे आप कहाँ के रहने वाले हैं, और मैं उनको अपना ओरिजिनल यानी कि
0: सहारनपुर
1: का, ये उत्तर प्रदेश का, जो मैं उनको अपना परिचय बताता था वो ये कहते, क्योंकि मैं राजस्थानी में ही बात करता था वो भी राजस्थानी में बात करते थे, तो फिर वो मुझे कहते थे कि आप झूठ बोल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आप सही बताइए कहाँ के रहने वाले।
0: आपकी भाषा से ऐसा लगता नहीं है कि आप राजस्थानी नहीं हैं,
1: कि आप राजस्थान के नहीं हैं। एक बार का एक किस्सा है, चुरू से तारानगर एक जगह है लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है, एक लाल सिंह नाम का एक लिसनर एक बार मिलने आया मुझसे, और क्योंकि आकाशवाणी चुरू में और आकाशवाणी का जो आवासीय कॉलोनी हमारी जो है वो दोनों एक साथ लगे हुए थे
0: जी।
1: तो वहीं मैं सरकारी का आवास में रहता था, मैं दोपहर में खाना खाकर कॉलोनी से बाहर ऑफिस के लिए निकला ही था, तो जो हमारा आवासीय कॉलोनी का मेन गेट था वहाँ पर जैसे ही मैं पहुँचा तो एक व्यक्ति आया दोपहर में, और उसने पहले कहा राम राम सा, और मैंने भी जवाब दिया राम राम सा, पूछने लगा कि ये आकाशवाणी है, मैंने कहा बिल्कुल आकाशवाणी है, कि मुझे नोटियाल जी से मिलना है।
0: अच्छा,
1: तो मैंने उस समय बताया नहीं कि मैं ही नोटियाल नहीं, क्योंकि वो तो मुझे पहचानता नहीं था, तो मैंने कहा कि मन के ऑफिस आगे है, वो अगला गेट ऑफिस का है, वहां मिलेंगे, और हम दोनों साथ साथ ऑफिस आ गए पैदल पैदल। मैंने उनको ड्यूटी रूम में बैठाया, बैठाने के बाद मैं अंदर चला गया स्टूडियो, एक मिनट स्टूडियो में बिताने के बाद मैं फिर वापस आया और मैं ड्यूटी रूम में बैठ गया, और फिर मैंने उसको कहा जी, मैंने कहा बताइए क्या बात है, कहने लगे आप ही नोटियाल जी हैं, मैंने कहा जी मैं ही नोटियाल जी हूँ।
0: अच्छा,
1: तो इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं जब लोग सुनते थे, एक आवाज थी, एक लैंग्वेज भी थी, क्योंकि मैं उनकी भाषा में बात करता था, तो लोग आते थे, और एक प्रोग्राम होता था राजस्थानी लोकगीतों का उस समय वहाँ गीतारो गजरो, और एक राजस्थानी लोकगीतों का प्रोग्राम होता था धरती गाती है, तो दो प्रोग्राम वहाँ होते थे, इसके अलावा और भी राजस्थानी के प्रोग्राम होते थे जो कम्पेयर्ड प्रोग्राम होते थे, तो उनमें हम लोग बैठते थे, पार्टिसिपेट करते थे, प्रेजेंट करते थे, कभी कभी ये होता था कि कोई जो राजस्थान का वहीं का नागरिक जो हमारे साथ कम्पेयर होता था उसके साथ भी बैठ जाते थे, अच्छा लगता था उस समय बात करना, प्रेजेंट करना, प्रोग्राम, बोलचाल, भाषा, उन लोगों में हम लोग रम गए थे
0: जी।
1: तो इस तरह का हमारा एक वो सिलसिला वहाँ का रहा, फिर मैं 2006 में रामपुर आ गया
0: जी। हम रामपुर की बात कर रहे थे नौटियाल जी, तो रामपुर के बारे में थोड़ा बताइए, 2006 में आप रामपुर आए तो उस वक्त कौन कौन लोग आपको वहां पर मिले, कैसा आपका उस वक्त का जो उन लोग

0: के साथ इंटरेक्शन था, ओवरऑल प्रोग्रामिंग किस तरीके से थी, क्या चेंजेस आपने वहाँ पर पाए या खुद आपने किए?
1: रामपुर क्योंकि एक अलग तरह का स्टेशन था, बहुत पुराना स्टेशन भी है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली के बाद शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर उसका नंबर आता है रामपुर का। उसके बाद जितने भी स्टेशन बने हैं वो सब उसके बाद बने हैं, क्योंकि लखनऊ के बाद रामपुर ही स्टेशन बना है
0: 1965
1: का बना हुआ है। और वहाँ की क्योंकि थोड़ी सी उर्दू भाषा का प्रभाव है रामपुर में, तो वहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आई है लेकिन इतनी नहीं आई है, क्योंकि वहाँ जो स्टाफ था उनसे हम लोग परिचित हुए और परिचित होने के बाद में वहाँ हमारे साथ में मनसाराम यदुवंशी, रामसूप गंगवार एंड उसके अलावा और भी एक सहायक जिसको हम कहेंगे सहायक केंद्र निदेशक थे, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा कौन थे। और आने के बाद में क्योंकि वहाँ की वर्किंग को देखा समझा और काम करना आरंभ किया, और आरंभ करने के बाद में वहाँ का जो सिलसिला था वो आगे बढ़ता रहा, और आगे बढ़ने के बाद में हम लोग जो प्रोग्राम थे उनसे जुड़ते रहे। रामपुर में आने के बाद में मेरे ऊपर कार्यभार बढ़ गया और बढ़ने के बाद में क्योंकि हमारा जो सिस्टम था वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया,
0: कंप्यूटराइज होने लगा,
1: टेक्नोलॉजी बदलने शुरू हो गई और हम उस तरफ ढलना शुरू हो गए। क्योंकि मेरे साथ वहाँ उस समय जब मैं आया था तो एक लाइब्रेरियन थे जो टेप लाइब्रेरी और बुक लाइब्रेरी को संभालते थे, एक दो साल के बाद में उनका वहाँ से स्थानांतरण हो गया बरेली, तो वह जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मुझे अपने काम के साथ साथ लाइब्रेरी का काम भी संभालना पड़ा, जितनी प्रसारण सामग्री है वो कंप्यूटराइज करनी पड़ी, अपलोड करनी पड़ी, उसके साथ दो तीन प्रोग्रामों की जिम्मेदारी मुझे दी गई। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो एक प्रोग्राम था स्वास्थ्य सलाह, और इसके अलावा फिर एक कानून से संबंधित जो कार्यक्रम था उसकी जिम्मेदारी दी गई। बीच में एक जिम्मेदारी और आ गई थी कुछ एक दो साल के लिए, जो बच्चों का प्रोग्राम होता है उस समय रामपुर में होता था कलियां करके, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी आ गई थी। तो ये इतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन मैंने अपने कैपेसिटी के अनुसार किया और अभी भी कर ही रहा हूँ
0: जी,
1: आगे भी चलते हुए करता ही रहा।
0: बिल्कुल, रामपुर में आपके टेन्योर की एक और खास बात रही कि आपकी और हमारी मुलाकात वहाँ हुई।
1: बिल्कुल, क्योंकि मैं वहाँ आ ही रहा था कि आपने जब 2015 में लगभग वहाँ एक बतौर आकाशवाणी कर्मचारी के रूप में ज्वाइन किया, आपकी और हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात का जो सिलसिला वो फिर
0: अभी तक
1: आप क्योंकि अभी तक वो जुड़ा हुआ है, चलता आ रहा है। आप रामपुर रह गए और मैं नजीबाबाद वहाँ से,
0: हम भी पीछे पीछे नजीबाबाद आए।
1: जी जी, रामपुर में मैं 2006 से लेकर 2018 तक रहा, लगभग 12 साल का पीरियड मेरा वहाँ रहा और लगभग 3 साल का पीरियड आपके साथ वहाँ जो समय था वो गुजरा, हम लोगों ने मिलकर काम किया
0: जी।
1: उसके बाद फिर मैं नजीबाबाद यहाँ 2018 में आ गया और उसके कुछ समय के बाद में फिर आप भी नजीबाबाद पहुंच गए।
0: बेशक, हम नजीबाबाद वाले पीरियड की तरफ रुख करते हैं नौटियाल जी,
1: जी।
0: कि जब नजीबाबाद आपका आना हुआ उस वक्त, चूंकि नजीबाबाद एक जब हम रामपुर में काम कर रहे थे तो या फिर और भी जो अन्य केंद्रों पे लोग काम करते हैं वो सब नजीबाबाद को एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि 200 किलोवाट की क्षमता का ये स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। तो जब आप नजीबाबाद आए तो आपने क्या डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिला?
1: नजीबाबाद क्योंकि एक छोटी जगह पर एक ऐसा स्टेशन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ केंद्र की स्थापना हुई हुई है और यहाँ के जो ग्रामीण जनता है उसके लाभ के लिए इस केंद्र की स्थापना की सरकार ने, और ये केंद्र क्योंकि जब तक उत्तराखंड नहीं बना था उस समय इस केंद्र की स्थापना हुई थी, और पूरा उत्तराखंड यानी कि पहाड़ी जो क्षेत्र है वो नजीबाबाद से जुड़ा हुआ था। यहाँ की जो भाषा है जितनी पहाड़ की भाषा है, चाहे वो जौनसारी हो, गढ़वाली हो या फिर कुमाऊनी हो, वो क्योंकि अधिकतर उसका प्रभाव यहाँ रहा है नजीबाबाद में, और पहाड़ी क्षेत्र के जो हमारे साथी थे कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे काफ़ी लोग थे, उन लोगों ने उसको काफ़ी बढ़ावा भी दिया है, इस केंद्र को आगे बुलंदियों तक पहुँचाया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया स्टाफ कम होता गया, और स्टाफ की कमी आज भी इतनी है, काम करना बड़ा मुश्किल है और उस मुश्किल दौर में हम लोग गुजर रहे हैं। काम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यहाँ इतने प्रोग्राम बनते थे, प्रसारित होते थे कि लोगों की जो जिज्ञासाएं थी वो पूरी होती थी
0: जी।
1: और लोग अभी भी जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लोगों के पास बहुत सारी अल्टरनेट सुविधाएं हो गई हैं, मोबाइल है और दूसरे चैनल हैं। हमारा ये कहेंगे कि आजकल जो सोशल मीडिया है उससे आज की जो युवा पीढ़ी है वो जुड़ी हुई है, वो रेडियो को कम लाइक करती है, लेकिन फिर भी रेडियो का अपना स्थान है, उसको हम कम नहीं आंक सकते
0: जी। जैसे आपने कहा कि जो स्टाफ है उसकी कमी है, लेकिन इस संस्थान ने शायद अपने हर एक कर्मचारी को, अपने हर एक जो पार्ट है उसको इतना सशक्त किया है, इतना ट्रेन किया है कि हम सभी लोग, जैसे जो काम हम पहले 50 लोग मिलकर करते थे, आज भी वो कुव्वत है, आज भी वो हम लोगों को स्किल्स दी है, इस डिपार्टमेंट ने दिए, इस संस्थान ने दिए कि हम आज भी उस काम को बदस्तूर किए जा रहे हैं। तो नौटियाल साहब, एक चीज और आपसे जानेंगे कि नजीबाबाद के आपके कार्यकाल के दौरान बहुत सारे लोगों से आपका मिलना हुआ, बहुत सारे लिसनर्स के साथ, चूंकि आप एक उद्घोषक रहे हैं, इंटरेक्शन होता है, तो कोई ऐसी याद आपको हो जो आपको गुदगुदा देती हो आज भी?
1: नजीबाबाद क्योंकि कम पीरियड मेरा यहाँ रहा है, 2018 से लेकर 2024 तक का लगभग 6 साल का पीरियड रहा है, और इस 6 साल के पीरियड में मैंने अपनी पहचान भी बनाई है। और ये कैसा क्षेत्र है आकाशवाणी का, क्योंकि उद्घोषक सीधे या जो भी रेडियो पर जो जिसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है वो सीधे लोगों तक पहुंचती है, उनके दिलों तक पहुंचती है, दिमाग तक पहुंचती है, और फिर उस उनकी आवाज़ को सुनकर धीरे धीरे उसमें मैच्योर भी हो जाते हैं। लोगों से जो आत्मीयता यहाँ मिली है वो याद करने लायक है। लोग जुड़ते गए, मिलते गए, आते गए, और बस मुलाकात आगे बढ़ती गई, हम लोग काम करते गए।
0: नौटियाल जी, 2024 में आपकी सेवानिवृत्ति इस केंद्र से हुई, हम तो ये उम्मीद करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ बनी रहे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। रेडियो से आपने बहुत कुछ सीखा, रेडियो ने आपको बहुत कुछ दिया। इस पूरे सफर को, जब इस पूरी जर्नी को आप देखते हैं, जब हम 1990 से 2024 जब आपने रिटायरमेंट लिया, तो ये जो 34 साल का पीरियड रहा है नौटियाल जी, इस पे अगर आप रिफ्लेक्शन करते हैं, इस संस्थान ने आपको क्या दिया?
1: मैं सोबित जी आपको यही कहूँगा कि आज वैसे तो बीच में बहुत पड़ाव आए मेरे साथ में, और वो पड़ाव पीछे छोड़ते गए और मैं आगे बढ़ता गया। मैं आज जो भी कुछ हूँ वो इस आकाशवाणी की देन है, जो भी कुछ है मेरे पास वो आकाशवाणी की देन है, क्योंकि लगभग 30 साल का जो पीरियड मेरा रहा है बतौर ये रेगुलर एम्प्लॉई, रेगुलर कर्मचारी के रूप में काम करने का, बहुत अच्छा रहा है, और बहुत कुछ इस संस्थान ने मुझे दिया भी है। और आज जो पहचान मेरी बाहर है, यानी कि पब्लिक में है, जनता में है, आम आदमी जो मुझे पहचानता है, वो इसी संस्थान की वजह से मुझे पहचानता है
0: जी। नौटियाल जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं
1: जी।
0: आपने अपने माइक्रोफोन के माध्यम से बहुत सारी बातें अपने श्रोताओं के साथ साझा की है, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई संदेश आप देना चाहें, कोई बात अपने दिल की आप अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहें, तो बेशक आप इस वक्त वो साझा कर सकते हैं।
1: बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं जवानी लेकर आया था और बुढ़ापा लेकर लौटा हूँ, और आज जो भी कुछ हूँ मैं केवल इस संस्थान की वजह से हूँ। अच्छा हूँ, बुरा हूँ, या जैसा भी हूँ, इस संस्थान की देन है, और मेरा जो परिवार है, क्योंकि वो इस संस्थान की ही बदौलत सुखी, संपन्न, समृद्ध है। और बस इतना कहूँगा कि रेडियो से अपने जितने भी श्रोता हैं उनसे कि रेडियो से जुड़े रहें और सुनते रहें आकाशवाणी के प्रोग्राम, और हम लोगों को याद करते रहें।
0: जी बिल्कुल, हम भी यही कहेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं वो हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, रेडियो सुनते रहें, और लेकिन एक बात जरूर आपकी बात में से निकालेंगे कि आप जवानी लेकर आए, तो आज भी आप जवान ही दिखाई देते हैं, और साथ में आप बुढ़ापा तो लेकर गए नहीं नौटियाल जी, आप अनुभव लेकर गए हैं, आप आज भी ऐसे ही हैं। हमने 1990 में तो आपको नहीं देखा, लेकिन जब से देखा तब से आज तक आप ऐसे ही हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही दिखें, ऐसे ही बने रहें।
1: लोगों को जब जानकारी मिलती थी कि मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ, तो लोग आश्चर्य से बोलते थे कि नहीं, आपकी सेवानिवृत्ति अभी हो ही नहीं सकती, आप या जो भी जानकारी या जो भी सूचना मिली है, हमें लगता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। लगभग 10 साल का लोग या 5-7-8 साल का लोग अंतर समझते थे उस पीरियड में भी, लेकिन समय है, सब कुछ निर्धारित होता है और वो अपने समय से ही चलता है।
0: बिल्कुल, समय सब कुछ है, समय हमसे भी कह रहा है कि इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने का समय हो चला है। चलिए, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, उन यादों में आपने डुबकी लगाई, हमारे श्रोताओं को भी डुबकी लगवाई, साथ में मुझे भी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार नौटियाल जी।
1: रवि जी, आपको भी धन्यवाद कि आपने बुलाया और श्रोताओं से दोबारा रूबरू करवाने का मौका दिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आप सबको नमस्कार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को फतेह बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को